FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि। तदनुसार 21 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना, प्रभु को निवेदित आज की वंदना।

मेरे तो मन में बहती है गंगा, कल कल निर्मल शीतल जल वाली गंगा, जो त्रिविध तापों से हमें शीतलता प्रदान करती है। कहने का आशय ये कि जब जब हम

के समीप जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो लगता है इस अलौकिक जगत में वो जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो केवल प्रभु की लीला, उनका गुण और नाम है। उनकी लीला, उनका गुण और उनका नाम, उसका सुमिरन करते ही हम त्रिवेणी में, उस संगम में स्नान कर लेते हैं।

साधो मन का मान त्यागो। जब जीव पर गुरु की कृपा होती है तो सारे संशय सारे प्रश्न स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं या उनका समाधान मिलने लगता है। श्री राम भी लक्ष्मण के संशय को

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने चित्रा राव, राजेश डेविड और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में कुछ भक्तिपरक रचनाएं सुनी। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए, चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में आज का चिंतन धर्म, आलेख डॉक्टर जे आर यादव का, वाचन राखी कटारा का।
1: ईश्वर एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं विभिन्न मार्गों से। समस्त मार्गों द्वारा एक ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। एक ही सत्ता को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। नाम विभेद के कारण उस सत्ता को अनेक समझने की भूल लोग प्रायः कर ही लेते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों है। वे केवल निराकार ही नहीं, साकार भी हैं। उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं, भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दर्शन देती है। ईश्वर साकार निराकार तो है ही, साथ ही वे इन दोनों से परे भी है। परम सत्ता की इति नहीं मानी जा सकती है। ब्रह्म के साकार और निराकार दोनों रूप, उसके क्षर एवं अक्षर, चल अचल, सक्रिय निष्क्रिय दोनों के द्योतक हैं। जब वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं, तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत परम ब्रह्म कहा जाता है। जिनका रूप है वे अरूप भी हैं। जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म शक्ति हैं और शक्ति ही ब्रह्म। साधक जब तक परम सत्ता से दूर रहता है, तब तक उसे रूप का मान होता है। ज्यों ज्यों समीप पहुंचता है, तब उसे कोई भी रूप नहीं दिखलाई पड़ता। जो अखंड सच्चिदानंद है वे ही कृष्ण हैं। दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है, पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं। जो सगुण है वे ही निर्गुण हैं। जिसका नित्य है उसी की लीला भी है। वस्तुतः तर्क बुद्धि से ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण विरोधी ज्ञात होते हैं। दो पूर्ण विरोधी बातें एक आधार में सत्य नहीं हो सकती हैं। यही हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, परंतु इस समस्या का हल तर्क बुद्धि से नहीं, बल्कि स्वानुभूति एवं अतींद्रिय ज्ञान से संभव है। जहां तक ईश्वर दर्शन का प्रश्न है, इसका उत्तर भी भावात्मक है। एकांतवास, नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर को गोपन धन कहा है। गोपनीय रूप से एकांत में साधना करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक आवश्यक है। व्याकुलता होने पर ईश्वर दर्शन होता है। बच्चे के आर्तनाद को सुनकर मां रुक नहीं सकती। जब तक संसार में धन जन पुत्र कन्या आदि में मनुष्य का मन लिप्त रहता है, तब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती। जब संसार से अरुचि हो जाती है और व्याकुल होकर करुण क्रंदन करता है, तब ईश्वर रुक नहीं पाते और आकर दर्शन देते हैं। जहां तक धर्म मार्गों का प्रश्न है, सभी का गंतव्य स्थल एक है। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न धर्मों का अवलंबन करके साधना करते हैं। सभी धर्मों से वही एक ईश्वर मिलता है, किंतु इसके लिए आंतरिक होकर साधना करनी होगी। उसी सत्ता की अनुभूति आंतरिक होने पर वैष्णव शाक्त वेदांती मुसलमान ईसाई सभी को प्राप्त होती है। इसलिए हठधर्मी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी मत एक पथ हैं। आज के संसार में धर्म कलह और धर्म विरोध की संभावना नहीं है। यूं हर एक व्यक्ति अपने धर्म को सबसे अच्छा समझता है, परंतु आज की दुनिया में हठधर्मी वृत्ति मनुष्य के सह अस्तित्व के साथ चल नहीं सकती। यदि धर्म जीवन में शांति और प्रेम के मिलने की कोई संभावना हो,

0: तभी धर्म बना रह सकता है, ईश्वर का अस्तित्व भी बना रह सकता है।
1: आज का चिंतन धर्म आलेख इस विषय पर था डॉक्टर जे आर यादव का, वाचन राखी कटारा का था। इसी के साथ आज का चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर अनुराधा पौडवाल का है, संगीतकार है सतीश भाटिया।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण स्वर अनुराधा पौडवाल का था। संगीतकार थे सतीश भाटिया। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आपसे थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय रहेगा धान की नर्सरी। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7 बजे। प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप प्रातः 7:18 पर। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी प्रातः 7:31 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी से ब्रजवार्ता, वर्तमान युग में गीता की प्रासंगिकता, साथ ही चर्चा रहेगी ब्रज में बढ़ते तापमान से कैसे करें बचाव व्यवस्था पर। गीतांजलि क्रम में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत प्रातः 8:30 पर। साथ ही दिन में 9 बजे आप सुनेंगे काव्यलोक क्रम में। आज के कवि रहेंगे उमाशंकर पाराशरी, आप सुनेंगे इनसे काव्य पाठ दिन में 9 बजे। कार्यक्रम आबोहवा का समय रहेगा प्रातः 9:25। इसके अंतर्गत आज का विषय जल की बर्बादी, आलेख वाचन रहेगा इस विषय पर मोनिका विजय का। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम याद है जरा जरा, ये कार्यक्रम सुनेंगे आप। इसमें बातचीत करेंगे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर जी राकेश शर्मा से, बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दिन में 10 बजे। श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन में 11 बजे। प्रस्तुति संजय सारस्वत की रहेगी।

दिन में 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय रहेगा नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलम प्रजापति, ईएनटी विभाग नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार रवि जोशी, आप इन सुनेंगे इनसे चंद ब्रज लोकगीत। दिन में बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम वनिता लोक, दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे हेमलता उपाध्याय से काव्य पाठ। चर्चा रहेगी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर, विश्व सांस्कृति विविधता दिवस पर। सैनी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण दिन में 2:30 पर रहेगा। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर सुनेंगे आप दिन में 4:00।

युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी संध्या 5:30 पर, संध्या 6:15 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय पर चर्चा रहेगी। साथ ही सुनेंगे आप कृषि क्षेत्र में जीआई

0: महत्व इस विषय पर ये भेंट वार्ता विशेषज्ञ होंगे सुधीर अग्रवाल, आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम संध्या 6:45 पर सुना जा सकेगा। संध्या 7:05 पर साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे देश समारोह क्रम में तीर्थ स्थल नैमिषारण्य पर वार्ता, वार्ताकार होंगी मुक्ता चतुर्वेदी। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रूपक अष्ट सखाओं द्वारा गोवर्धन लीला वर्णन, लेखक होंगे रमेश चंद्र राजा चौबे, प्रस्तुति दिनेश गोस्वामी की रहेगी। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, आप सुनेंगे इनसे ठुमरी दादरा गायन। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर इनसाइट्स, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय धान की नर्सरी, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे धान की नर्सरी तैयारी करने के संदर्भ में। पिछले दिनों हमने आपको धान की जो प्रमुख प्रजातियां थी उसके बारे में जानकारी दी। एक हेक्टेयर रोपाई के लिए महीन धान का बीज 30 किलोग्राम और मध्यम धान का बीज 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और मोटे धान का बीज 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पौध तैयार करने के लिए होता है। ऊसर में यह मात्रा सवा गुनी कर दी जाती है और एक हेक्टेयर नर्सरी से लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है। समय से नर्सरी में बीज डालें और फिर उसको तैयार करके इसकी रोपाई समय से ही की जानी चाहिए। 10 से 14 दिन के पश्चात एक सुरक्षात्मक नर्सरी पर छिड़काव रोग और कीटों का करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से आप जोत करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। जहाँ पर भी आप नर्सरी डाल रहे हैं, नर्सरी डालने का जो स्थान है वो एकदम वहाँ की मिट्टी जो है अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें ऊसरपन हो, ऊसरपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए नर्सरी वाली भूमि में। और उसको अच्छी तरह से जोत करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, समतल करके क्यारियों में बाँट लें। क्यारियाँ अमूमन सवा मीटर चौड़ी और 8 मीटर तक इसको आप लंबी कर सकते हैं और दो क्यारियों के बीच में एक मजबूत मेड़ भी आपको बनानी होगी। हर क्यारी में 5 से 6 टोकरी गोबर की सड़ी खाद डालें। एक हेक्टेयर के 1/10 भाग यानी के करीब आपको 8 हिस्सा में नर्सरी डालनी है तो आपको 5 किलोग्राम यूरिया 22 किलोग्राम DAP उसमें डालना होगा। अब क्यारियों में पानी आपको भर दें। पानी भरने के बाद उसमें नंगे पैर से चहलकदमी करते हैं, कदवा करने की स्थिति अपनाते हैं जिससे कि जो पानी है वो अच्छी तरह से गदला हो जाए और इसके बाद बीज की बुवाई छिटक करके की जाती है। बीज की मात्रा तो हमने आपको बताई दी है, वो आपके धान की किस्म के आधार पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है और विशेष रूप से रोपाई जो बुवाई इसकी की जाए धान की नर्सरी की वो शाम के समय ही करनी चाहिए और जब करीब 3rd दिन जाकर के आप 55 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से भी उसमें बिखेर दें। 15 दिन पर 8 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर दें और 3rd-4th दिन शाम के समय लगातार उसमें हल्की सिंचाई करते रहें। जहाँ तक सुरक्षात्मक सवाल है रोग और कीटों से तो उसके लिए भी आपको सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए रोग और कीटों से बचने के लिए। और ये सुरक्षात्मक उपाय नर्सरी को बीज बोने के करीब 14 से 15 दिन के बाद अपना सकते हैं और 21 से 25 दिन बाद नर्सरी की में से पौध को उखाड़ करके इसकी रोपाई की जाती है। अगर ऊसर क्षेत्र में आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए 30 से 35 दिन पुरानी नर्सरी होनी चाहिए।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में आज का विषय था धान की नर्सरी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार जिसे आकाशवाणी के दिल्ली

0: क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियन्स दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत, कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म जिंदगी जिंदगी से। आवाज इस गीत में सचिन देव वर्मन की।

फिल्म जिंदगी जिंदगी में अभी आपने सुना सचिन देव वर्मन को, FM 102.2 MHz।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुने कार्यक्रम में शमशाद बेगम, जगजीत कौर और नूर जहां को फिल्म हीर रांझा में, शब्द कैफी याज़मी के, संगीत मदन मोहन का।

नूरजहाँ, जगजीत कौर और शमशाद बेगम को। अभी आपने सुना फिल्म हीर रांझा में, और आइए सुनते हैं फिल्म महल से ये अगला गीत। आवाज़ इस गीत में राजकुमारी की, गीत जय नक्ष पर और संगीत खेमचंद प्रकाश का।

फिल्म महल में अभी आपने सुना राजकुमारी को, बोल जे नश्मी और संगीत खेमचंद्र प्रकाश का, और अगला गीत फिल्म बूट पॉलिश से, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ तलत महमूद और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद आशा भोसले को फिल्म बूट पॉलिश में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से

0: हैं सब परेशान। शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: मोदी, कहा ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों, परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की

0: 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 7 फ्लाइटों का आना जाना है और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का आज अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुनवे बारे सबै भैया बहनन को अनुराग पांडे की जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओ ब्रज में बढ़तो यो तापमान और बातें कैसे करें बचाओ, कहाँ का ऐसी व्यवस्था है सकें जिनके माध्यम से जिनको करके हम अपनों अपने परिवार को स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें बेहतर बना सकें। तो भैयाओ ब्रज में बढ़ते तापमान से कैसे करें बचाव, कहाँ कहाँ प्रबंध करें। तो भैया हम सब जाने हैं कि यह समय विशेष सावधानी को समय है, कारण ये कि यह समय गर्मी है, तापमान में विशेष वृद्धि है, या इसो हम सबन को घर ते तभी निकसनो चाहिए जब को आवश्यक काम होए, और निकले घर ते तो गमछा लेके निकले, अमिया को पन्हा सत्तू जो चना को और गुड़ थोड़ो सो लें और सलाद को प्रयोग करें भैयाओ, कारण ये कि हम शीतल पेय पदार्थन को प्रयोग करेंगे, नींबू की शिकंजी है सके है, अमिया को पन्हा है सके है, और घामते बचबे के ताई हम अंगोछा गमछा ऐसो प्रयोग करें। हमारे ब्रज में तो कहे हैं कि भोर भये नित ग्रीष्म की ऋतु भूतल तबासो तब जाए, भोर भये नित ग्रीष्म

0: कीर्तु भूतल तबासो तप जाए, बटोही चल बिछरन की छैया सुहाए, बटोही चल बिछरन की छैया सुहाए, साए साए सुनसान दुपहरिया, साए साए सुनसान दुपहरिया, सुनी सुनी लागे सारी डगरिया, पौन रुके तन ते जल टपके, पौन रुके ते जल टपके, जिया उमस अकुलाए, बटोही चल बिरछन की छैया सुहाए। सूखन लागे बन बन उपवन, सूखन लागे बन बन उपवन, बारहीन बारहीन सरबरी को जीवन, सींचत सींचत बेल सुखानी, कलियां गई मुरझाए, बटोही चल बिरछन की छैया सुहाए। नबसों झरन लगी चिंगारी, नबसों झरन लगी चिंगारी, कनकन आग अगारन झारी, नबसों झरन लगी चिंगारी, कनकन आग अगारन झारी, पूरव पश्चिम ज्वाल मान भई, पूरव पश्चिम ज्वाल मान भई, अग्नि ही अग्नि दिखाए, बटोही चल बिरछन की छैया सुहाए। भैयाओ, ऐसे ऐसे ब्रज के हमारे मूर्धन्य कवि भये हैं बिन्ने ऐसो ऐसो साहित्य रचो है ब्रज की सब ऋतुअन पे, के बाको तो कहवो ही कहा। तो भैयाओ, विशेष सावधानी को समय हमें हमारे हम ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ामे हैं, विनकू हूँ हम ऐसो ऐसो सुगंधित इत्र दें जिनते विनकू शीतलता को अनुभव होए, और हम जाने हैं, हम देखे हैं दर्शन के माध्यम से हम ठाकुर जी को फूलन को बंगला ऐसो धरे हैं जिनते विनकू आनंद को अनुभव होए। हम अपने लाड़ली लाल को जब ने लड़ाए तो ऋतुअन के माध्यम से भोग धराए हैं, दर्शन और झांकी धराए हैं जिनको आनंद हमारे ठाकुर जी को मिले, हम ठाकुर जी को आनंदित देखवे को चाहे हैं, ऐसो ही आनंद ब्रज में है। भैयाओ, आज हम आपको या ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में अब सुनवा में योगीराज श्री कृष्ण को हम जाने हैं, बिनको संदेश हम जाने हैं। तो आज भैयाओ आप सुनो ब्रजवार्ता में वर्तमान युग में गीता की प्रासंगिकता। वार्ताकार डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी, आप सुनो जिन पे थे जी ब्रजवार्ता वर्तमान युग में गीता की प्रासंगिकता।
1: श्रीमद् भगवत गीता स्वयं महायोगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित महान जीवन दर्शन है। एक अनुपम जीवन दर्शन है वे के कारण ही गीता सार्वभौम है और सार्वकालिक है। यह अद्भुत और महान उपदेश अपने वायु की ही तरह वर्तमान में भी प्रासंगिक है और भविष्य में हूं रहेगा। कुरुक्षेत्र के रणांगन में महाभारत के भीषण संग्राम के प्रारंभ को अवसर कौरव और पांडवन के महारथीन की उत्साह में भरी सेना, रथ घोड़े हाथीन के मध्य इन महारथीन की शंकर ध्वनि को तुमुल नाद जब रोमांच की पराकाष्ठा पे हो, ऐसे समय अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा गीता को उपदेश, या अद्भुत अनुपम और अपूर्व ज्ञान को कारण हो अर्जुन को मोह। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने अर्जुन के ही कहवे पे जब दोनों सेनान के मध्य अपनो रथ ले जाए के ठाड़ो कर दियो, तब अपने सगे संबंधिन अपने बड़े बूढ़े पिता में भीष्म गुरु द्रोण आदि को देखो तो वह भाव विह्वल है गयो और मोह में भर के युद्ध न करवे के कह के रथ के पिछले भाग में जाए के बैठ गयो। बस यही पूर्व पीठिका है गीता की। मोहग्रस्त पार्थ को युद्ध हेतु उत्साह में भर देनो कि वह अपनो गांडी उठाए के वह धर्म युद्ध में डट गयो। गीता वस्तुतः 18 अध्यायन में विभाजित उपदेश ग्रंथ है जाको प्रत्येक अध्याय एक अलग योग से संबंधित है, अर्थात कुल 18 योग हैं और सबन की अपनी विशेषता है। श्री कृष्ण व निराशा ते अर्जुन को बाहर निकालवे के लिए अमर आत्मा को रहस्य बतावे कि यह शरीर तो नश्वर है किंतु या में जो आत्मा है वह अमर है और यह आत्मा ही परमात्मा को अंश है, या को पहचानना आवश्यक है। यह आत्मा ही मनुष्य की मित्र और शत्रु दोनों है। जब यह अमर है तो मरवे को दुख क्यों? गीता के सब योगन में मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग माने जाए हैं। एक और योग की प्रधानता है और वह है समत्व।

यू, बस इन्हीं आधारंते समूची गीता को ज्ञान समाहित है। गीता में श्री कृष्ण ने मानव धर्म की विशद व्याख्या करी है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो ज्ञान सदैव सार्वकालिक हुए है, वाको को काल विशेष सो संबंध ना होवे, और गीता को कर्मयोग होए, ज्ञान योग होए अथवा भक्ति योग या समत्व और अन्य सभी योग, इन सबन में मानव जीवन की सार्थकता के सूत्र पिरोए भए हैं, जिनको अनुशीलन करके एक मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाए सके है। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गीता विशेष रूप से कर्मयोग की अद्भुत व्याख्या के कारण लोकप्रिय है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात हे पार्थ, तुम्हारो कर्म करवे पे तो अधिकार है किंतु कर्म फल पे नाए, कर्म के फल की तो मत सोचो, क्योंकि कर्म के अनुसार फल मिलना तो अनिवार्य है, चाहे वह कबहू मिले। या के अतिरिक्त कर्म की बड़ी गंभीर व्याख्या श्री कृष्ण कर रहे हैं। वे कहें कि कर्म करना तो एक मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव मात्र की बाध्यता है। को जीव बिना कर्म के कबहू नहे रह सके। यदि वह कर्म न करे तो प्रकृति वापस स्वयं कर्म करवाए लिए है। यहां तक कि मैं स्वयं अर्थात श्री कृष्ण समूचे जगत को अधिपति है वे पे हूं कर्म करूं हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगो तो पूरा संसार कर्म नहीं करेगो। कारण यह कि श्रेष्ठ जन जैसो करें वैसो ही संसार उनको अनुकरण करे। यद्यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्त्व देवे तरु जन। गीता आज जीवन के समस्त क्षेत्र में सार्थक है। शिक्षा, सैन्य, सुरक्षा, योग और विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत लोग, निराशा से पीड़ित रोगी अथवा सामान्य जीवन यापन करवे में आयवे बारी समस्यान के विविध रूपन के समाधान के सूत्र गीता में निहित हैं। गीता वस्तुतः अर्जुन की भ्रम युक्त हताशा के फलस्वरूप वाके द्वारा श्री कृष्ण शरणागति और श्री कृष्ण सो बार बार अपनी जिज्ञासा करवे की प्रतिक्रिया है, जो या गीता उपदेश के रूप में सामने आई। श्री कृष्ण अर्जुन को मानव सुलभ विभिन्न माया, मोह, अहंकार, स्वार्थ, हिंसा आदि अवगुणन को त्याग के निरपेक्ष भाव से समत्व योग में स्थित है वे की बात करें हैं। वे कहें सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। या कि अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानन पहु या संभाव की बात गीता में करी गई है। सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, लाभ हानि, शत्रु मित्र, मिट्टी स्वर्ण आदि सब में संभाव रखो और हिंसा से दूर रहो। तब अर्जुन व्याकुल है कि उनते बिना झिझक के पूछ ले कि हे प्रभु, यह मन बहुत चंचल है और या को नियंत्रण करना आसान ना है। यह तो वायु को बस में करवे ते ही अधिक कठिन है। चंचल है मना कृष्ण प्रमादि बल दृढ़ तस्माहम निग्रह मन्ये वायु रिव दुषु सुदुष्करम। तब श्री कृष्ण अर्जुन ते सहमत है ते भाई याकू वश में करवे को उपाय बतामे हैं। यह सही है कि निसंदेह मन को वश में करनो अत्यंत कठिन है। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास ते धीरे धीरे पूर्ण निष्ठा और अभ्यास ते या जिद्दी मन को वश में करके एकाग्र किया जा सके है। निर्विवाद रूप ते यह सिद्धांत एक विद्यार्थी के लिए अगर देखो जाए तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए अभ्यास को बहुत महत्व है। और विद्यार्थी क्यों, विद्यार्थी के अतिरिक्त एक सैनिक, एक वैज्ञानिक, एक किसान, एक योगी, गृहिणी और परिस्थितिन ते टूटे भय निराश व्यक्ति आदि सभी के निमित्त मन में आशा को संचार करने को एक सशक्त साधन है मन की एकाग्रता। और वाकई लिए अभ्यास अर्थात अभ्यास ते मन को निग्रह, क्योंकि काऊ काम के करवे में एकाग्रता आवश्यक है और एकाग्रता के लिए मन को निग्रह और मन के निग्रह के लिए अभ्यास, अभ्यास के लिए निष्ठा, विश्वास और सकारात्मक चिंतन। अपने देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध सैनिक को उत्साह बढ़ाएवे और जोश भरवे को याते उत्तम और का उपदेश होगो। जब वे कहें के देशद्रोही आतताइन को वध करनो और वाके निमित्त युद्ध करनो एक क्षत्रिय को परम धर्म है, परम कर्तव्य है।
तुम मन को एकाग्र करके युद्ध

करो। हे पार्थ, तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे। फिर हु अगर या युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त है हु गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और विजय मिली तो पृथ्वी को राज्य तो भोगोगे ही। और वास्तव में एक सैनिक को अपने देश की ओर से युद्ध जीतनो जितनो गर्व ते भर दे है, वाते अधिक प्रतिष्ठा वीर गति प्राप्त करबे में हूं है। या के अतिरिक्त श्री कृष्ण गीता में तीन अवस्थान को मृत्यु तुल्य बता में है। या में पहली अवस्था है अपयश या अपकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्तेर मरणादति रुच्यते। अर्थात यदि काहू सम्मानित व्यक्ति को अपयश है जाए, सम्मान समाप्त है जाए, तो वह मृत्यु तुल्य है। उनने अर्जुन ते कही कि यदि तुम या युद्ध भूमि में बिना लड़े लौट जाओगे तो सब जने तुम्हें अपयश देंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति को अपयश मृत्यु ते हू बढ़ के हुए है। दूसरी बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धिहीन है बेपेहू मनुष्य मृत प्राय है जाए है। सही है, बुद्धि ही तो एक मनुष्य को मनुष्य बनावे है, बुद्धिहीन तो एक पशु के समान है जाए है। और तीसरी है संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जीवन में संशय अथवा शक को कोई इलाज ना है। संशय और भ्रम की स्थिति आदि मनुष्य को हु कोई काम नहीं करन दे, और वह जीवन जीते भये हु मृत समान है जाए है, मृत प्राय है जाए है। ये सब अवस्था अज्ञान अथवा अविवेक के कारण उत्पन्न हुए हैं। या कारण गीता में ज्ञान को प्रधानता दी गई है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति ते ही मनुष्य जन्म सार्थक है, क्योंकि तभी वह मानव सुलभ जो कर्म क्षेत्र हैं उनमें प्रवृत्त है सके है। बिना ज्ञान अथवा विवेक के मानव जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण के अनुसार गीता के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में चार प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। किंतु इन सब यज्ञंते ज्ञान यज्ञ उत्कृष्ट है। श्रेयान द्रव्य मया त्यज्यात ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान प्राप्त ते ही जीवन में उन्नति के द्वार खुले हैं। जा क्षेत्र में मनुष्य कार्य करना चाहे अथवा रोजगार प्राप्त करना चाहे, वह क्षेत्र की सूक्ष्मते सूक्ष्म बातन को ज्ञान होना आवश्यक है, जो संबंधित शिक्षा से प्राप्त हुए है। शिक्षा प्राप्त करवे को हूं अपने गुरु के पास जाएंगे, उन्हें पूरा सम्मान देते भये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गीता एक कर्मयोगी को, वह कर्मयोगी विद्यार्थी, सैनिक, किसान, वैज्ञानिक, चिकित्सक, उद्यमी, मजदूर, कलाकार, संत, भक्त, सामान्य मानव आदि सबन को जीवन में काम आएवे वाले सूत्र बतावे है। जैसे एक कर्मयोगी को भोजन और शयन न अधिक करना चाहिए न कम, ये कार्य आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वे बतावे कि भोजन, दान, यज्ञ आदि तीन प्रकार के होमे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें सात्विक भोजन श्रेष्ठ है, जो भोजन शुद्ध, पवित्र, ताजा होए और मन को शुद्ध रखे वह सात्विक है। अधिक भोजन आलस्य और रोग उत्पन्न करे, जो कर्म करवे में बाधक है। सात्विक दान वह है जो बिना को कामना के सम्मान पूर्वक, बिना आत्म प्रशंसा के, बिना भेदभाव के पात्र व्यक्ति को विनम्र भाव से दियो जाए। और सात्विक यज्ञ वह है जो बिना यश आदि की कामना के पवित्र मन ते विधि विधान के संग पुरोहित को यथाशक्ति दक्षिणा देते भये समर्पण भाव से प्रभु के प्रति श्रद्धा से कियो जाए। या के विपरीत प्रतिदान अथवा फल की कामना से प्रेरित है के अभिमान के वशीभूत अपनो प्रचार करवे के लिए जो कार्य हैं वे राजसिक हैं, और हिंसा और स्वार्थ की प्रवृत्ति ते दूसरे को हानि पहुंचाएवे के निमित्त डराए धमकाए के करे जाए बारे कार्य तामसिक कहे जाए हैं। आज मनुष्य किंचित मात्र को परोपकार को कार्य करे तो वह को प्रचार प्रसार इतनो कर दे कि वह कार्य की महत्ता ही समाप्त है जाए, तभी तो कहें कि नेकी कर और दरिया में डार। दान कर पर जा हाथ ते करे दूसरे हाथ को हूं खबर नाए लगे, परंतु आज तो करते भाई की फोटो पहले छप जाए, ये आत्म प्रशंसा है और गीता में निषिद्ध करी गई है। बिना श्रद्धा के केवल कामना पूर्ति के निमित्त करे गए यज्ञ, दान, तप आदि सब व्यर्थ है। अशत दया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनु इह। या के संग ही

0: स्वार्थ और हिंसा की प्रवृत्ति को सदा शमन करना परम आवश्यक है। गीता में सुख हु तीन प्रकार के बताए गए हैं। सात्विक सुख वह है जो पहले विष के समान कष्टकर प्रतीत हुए है, किंतु वाको परिणाम शहद के समान मीठो अर्थात सुखद हुए है। याको अर्थात अर्थ यह है कि यदि आप पहले खूब परिश्रम करोगे तो बाद में वाको परिणाम सुखकर होएगो, यह सात्विक सुख है। राजसिक सुख वाको कहे हैं जा में पहले तो शरीर को खूब सुख और आराम दो, वह पहले शहद के समान मधुर हो, अर्थात को परिश्रम को काम न करो तो पहले सुख है, पर या को पाद में परिणाम विष के समान दुखद ही होएगो जो हानिकारक है। और तामसिक सुख वह है जो मोह और माया जनित है अथवा जो दूसरे को कष्ट देके प्राप्त कियो जाए, वास्तव में वह सुख को भ्रम है, सुख है ही नहीं। ये जीवन सूत्र मानव धर्म को समझाए बे बारे हैं। ये कछु वे विशेषता हैं जो गीता को आज के युग में हु वैश्विक स्तर पर सार्थक सिद्ध करे हैं। इनके अतिरिक्त हु गीता में तो मानव जीवन के न जाने कितने आदर्श संदेश और ज्ञान सूत्र भरे पड़े हैं, जिनको लाभ तभी मिल सके जब या को डूब के अध्ययन और अनुशीलन किया जाए, तब ही सागर मंथन की तरह अनगिनत जीवन दर्शन रूपी रत्न यामेते प्राप्त है सके। वास्तव में यही वर्तमान युग में गीता की प्रासंगिकता है। जय श्री कृष्ण।
1: वर्तमान युग में गीता की प्रासंगिकता। भैयाओ, अभी आपने सुनी डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी पैते जे ब्रजवार्ता। और भैयाओ, आओ ले आनंद या लोकगीत को। आशु रावत पैते सुनो आप जे लोकगीत।

भैयाओ अभी आपने सुनो ये मधुर सो लोकगीत आशु रावत पेते। गर्मी में पड़ रहे हो, धूप पड़ रही है भैयाओ, तो सावधानी को समय है। गरते निकते निकसते समय गमछा को प्रयोग करें, यही भैया सावधानी है। यही के साथ आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा ओके आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का

0: अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as यह

और लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि में आइए सुनते हैं ये गजल फिल्म तुम बिन से। आवाज दे रहे हैं इसको जगजीत सिंह।

फैज़ अनवर के शब्दों को संगीत दिया निखिल विनय ने, आवाज़ से सजा रहे थे इस जगजीत सिंह फिल्म तुम बिन के लिए। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अली जी सुनिए, फिल्म तमाशा में अलका याग्निक अरिजीत सिंह को

इरशाद कामिल के इस गीत को संगीत दिया ए आर रहमान ने। अलका याग्निक अरिजीत सिंह फिल्म तमाशा के इस गीत को आवाज़ दे रहे थे। और इस गीत के बाद आज के गीतांजलि कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म रोज़ा से ये गीत। मिनमिनी के स्वर में संगीत ए आर रहमान का।

फिल्म रोज़ा में अभी आपने सुना मिनमिनी को, और संगीत ए आर रहमान का था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ए हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म बॉम्बे में।

0: ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के बॉम्बे फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम काव्यलोक हिंदी क्रम में आज के कवि उमाशंकर पाराशरी, आप सुनेंगे इनसे काव्य पाठ।
1: काव्य पाठ माँ से और मातृभूमि तक का सफर करेगा। अभी मातृदिवस बीता है। माँ होठों की मुस्कान है, दिल की धड़कन है। माँ तुतलाती बोली है, लड़खड़ाता बचपन है। माँ तीज है, त्योहार है, खुशियों का गांव है। माँ तपती दोपहरी में आंचल की छांव है। माँ सर्दी की ठिठुरन है,

गर्मी का एहसास है, दुनिया की सारी दौलत है यदि माँ तेरे पास है, दुनिया की सारी दौलत है यदि माँ तेरे पास है। एक माँ पर रचना दे रहा हूँ और ये रचना एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चे को साथ लेकर के एक मजदूरी करती है, लेकिन बच्चे के प्रति उसका भाव वही रहता है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को माँ करती मजदूरी और बच्चे सदा साथ रखती है चाहे जो मजबूरी। जो बच्चे अपना बचपन मिट्टी के साथ बिताते, वे बच्चे एक दिन भारत का नव इतिहास रचाते। बच्चों की खुशियों की खातिर माँ बोझा ढोती है और बच्चे चाहें जैसे भी हों माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहें जैसे भी हों माँ तो माँ होती है। तो अच्छी हो परवरिश कभी ना बच्चे कष्ट उठाएं, शिक्षित हों विद्वान बने पढ़ने विद्यालय जाएं, अपना पेट काट बच्चों को सुविधाएं सब देती, कभी कोई संकट आया तो अपने ऊपर लेती, माँ बच्चों की उन्नति के नित नव सपने बोती है, बच्चे चाहें जैसे भी हों माँ तो माँ होती है। पढ़ लिख कर कुछ बनते बच्चे अपना मान बढ़ाते, माँ के सारे त्याग भूलकर खुलकर ऐस उड़ाते, मनमर्जी शादी करते हैं बिल्कुल नहीं लजाते, और पत्नी के आते ही माँ को साथ नहीं रख पाते। तो दुख तो माँ ने काट लिए, दुख तो माँ ने काट लिए, पर सुख में माँ रोती है, बच्चे चाहें जैसे भी हों माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहें जैसे भी हों माँ तो माँ होती है। अभी हमारे देश ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है और अब थोड़ा विराम लिया है, आइए हम उसको याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर देश की नारी का सम्मान है, ऑपरेशन सिंदूर देश की नारी का सम्मान है, ऑपरेशन सिंदूर देश की नारी का अभिमान है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीज फायर तो मानवता का मान है, सीज फायर तो मानवता का मान है। और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जो सैनिकों ने सहभागिता की वो सैनिक हमारे गांव से आते हैं अधिकांशता, और गांव जो अब हम उनको भूलते चले जा रहे हैं, हम सब शहरों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो गांव क्या है जिसकी हमें स्मरण आता है कि आमों की बगिया वो पीपल की छांव, वो पुराने गांव आज भी याद आते हैं कि आमों की बगिया वो पीपल की छांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, कच्ची दीवारों पर रखा वो छप्पर, मिट्टी के खाने पे अम्मा का थप्पर, घर की मुडेरी पे कौए की काँव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, चौपाल कच्ची पे कंडों का दहरा, रहो जागते वाला रातों का वो कागज की नाव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, जाकर कुएं पर मलमल कर नहाना, मक्के की रोटी को मट्ठे से खाना, झुक कर के छूना वो दादी के पांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, कीचड़ की फिसलन वो गिरना और उठना, कबड्डी कबड्डी की पकड़न से छुटना, देते पटकनी जब लगता था दांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, बाहर निकलने पे हौवे से डरना, गिरने पे अक्सर वो चीटी का मरना, नंगे बदन का वो मिट्टी सनाव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, पकड़ एक दूजे को छुक छुक बनाना, ये हमारे खेल हुआ करते थे कि पकड़ एक दूजे को छुक छुक बनाना, चिगने लगाकर फिर उसको गिनाना, मैया के रूठन पर उसका मनाओ, बहुत याद आता है अपना वो गांव, कि रद्दी के कागज की फिरकी बनाना, उसे छेद कर उसमें सिर की लगाना, लिए घूमते थे उसे ठाव ठाव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, और रोते सिसकते वो स्कूल जाना, बफ्फा में घर आकर रोटी को खाना, तख्ती का पोतन वो गिनती गिनाओ, बहुत याद आता है अपना वो गांव, कि दो बैलों की जोड़ी वो लेड़ू और रब्बा, भोक्का की गुड़गड़ मोतीराम बब्बा, ठंडी चिलम पर वो अग्नि धराओ, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और कुछ चीजें गांव में बड़ा प्रसिद्ध होती थी कि गोला की चुस्की वे बुढ़िया का काता, गोला की चुस्की वे बुढ़िया का काता, इमली का चूरन वे पट्टी का छाता, मुनिया के हाथों से कुल्फी छिनाओ, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और देखें कि बाबा के कंधों पर मेलों में जाना, कागज पे धर के जलेबी का खाना, छूते गुजरिया का करना नचाओ, बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। आज हम गांव को भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे
अंतस में गांव बसा रहे।

रहता है। आइए एक नमन करने के बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम सीज फायर हुआ है, उसको हम उन दो विभूतियों को नहीं भूल सकते। एक छंद देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, एस 400 बना कि एस 400 बना है कृष्ण का सुदर्शन, एस 400 बना है कृष्ण का सुदर्शन, मटका सा फोड़ दिया बैर बैरियों को ड्रोन है। एस 400 बना है कृष्ण का सुदर्शन, मटका सा फोड़ दिया बैरियों का ड्रोन है, और 3 दिन में ही पाक घुटनों पर ला दिया है, जगह जगह घूम रहा मांग रहा लोन है। शिखर सुभाष ने दिए बलिदान, रोशन भगत हुए जब कुरुबान, तब जाके देसी है आजाद हुआ है, तब जाके देसी है आजाद हुआ है, धीरे धीरे अब ये आबाद हुआ है, धीरे धीरे अब ये आबाद हुआ है। सौर इतिहास में पढ़ना होगा, देशद्रोही शक्तियों से लड़ना होगा। और देखें कि भारत में जो भी रहे प्यार से रहे, सबू का है देश अधिकार से रहे, हिंदू इस्लाम का कोई विधान हो, गीता बाई बोलो हो चाहे कुरान हो, दंगे भड़काना कौन से खिलाता है, हिंसा आग जनी कौन करवाता है, हिंसा आग जनी कौन करवाता है। गीता और कुरान साथ पढ़ना होगा, देशद्रोही शक्तियों से लड़ना होगा, एक साथ मिल आगे लड़ना होगा, देशद्रोही शक्तियों से लड़ना होगा। और इस देशद्रोही शक्तियों को लड़ने के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए हमको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। और कहना चाहता हूं कि संकल्प के साथ में कि एक बार रावण ने छलकर सीता जी का हरण किया था हमारे देश में, जब चाहे जो भी चाहे आकर के यहां उत्पात मचा के चला जाता है, और कोई भी आतंकवादी आता है हमारे से हमारी जनता का मार करके चला जाता है। तब एक रचना दे रहा हूं कि एक बार रावण ने छलकर सीता जी का हरण किया था, सीता को लंका ले जाकर स्वयं मृत्यु का वर्ण किया था, श्री राम ने समझाने को भेजा अंगद हनुमान को, हर धर्मी रावण ना माना छोड़ सका ना दुराभिमान को, अरे बलशाली दम्भी रावण की, बलशाली दम्भी रावण की सारी शक्ति खाक मिला दी, और रामा दल के एक वीर ने पूरी लंका राग बना दी, रामा दल के एक वीर ने पूरी लंका राग बना दी, अरे जागो जामवंत सुग्रीवो हनुमान की शक्त जगा दो, और इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो, इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो। और हम कहना चाहते हैं कि हमने जब जब किसी से समझौते किए हैं, क्या परिणाम रहा है कि परखे को जो परखाता है महामूर्खी कहलाता है, परखे को जो परखाता है महामूर्खी कहलाता है, कब सर्पों से हुई दोस्ती कौआ कम मीठा गाता है, अरे तुम हिंसक पशु के समक्ष यदि मानवता दिखलाओगे, उसको दाना पानी दोगे, उसकी दुम सहलाओगे, किंतु मिला जब मौका उसको तुम पर हमला कर देगा, किंतु मिला जब मौका उसको तुम पर हमला कर देगा, और तुम्हारे अरमानों को चीड़ फाड़ कर धड़ देगा, इन दुष्टों के नाती पोते इष्ट मित्र सबको दफना दो, और इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो, इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो। हिंसा की धरती पर हमने जब जब बीज प्यार के बोए, हिंसा की धरती पर हमने जब जब बीज प्यार के बोए, मातृभूमि ने गांधी जैसे जाने कितने बेटे खोए, और कपटी कुटिल कुनीतिज्ञों से जब जब हमने हाथ मिलाया, तब तब लाल बहादुर जैसा भारत माने लाल गमाया, तब तब लाल बहादुर जैसा भारत माने लाल गमाया। सोच समझ कर निर्णय लेना सुनो देश के ठेकेदारों, जो भी माँ पर आंख उठाए उसका धड़ से शीश उतारो, शेष बचे कश्मीर, शेष बचे भी कश्मीर की फिर से तुम खुशियां लौटा दो, शेष बचे भी कश्मीर की फिर से तुम खुशियां लौटा दो, और इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो। और कहना चाहता हूं कि भारत का बढ़ता वैभव कब पश्चिम वाले देखेंगे, पहले ये आग लगाएंगे फिर हाथ दूर से सेकेंगे। एक बार सारी दुनिया को शक्ति का एहसास करा दो, और इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो, इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो। और देखें कि देश हमारा राणा का है जिसने हार कभी ना मानी, घासों की रोटी का जिसने पिला दिया दुश्मन को पानी, देश हमारा अशफाकुल्ला रोशन बिस्मिल और हमीद का, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शमशेर से अमर शहीद का, अरे सबके सबते हिंद केसरी कभी न भाया इनको कायर, और भरी सभा में मार दिया था ऊधम सिंह ने जनरल डायर, तो खंड खंड भारत अखंड कर,
खंड खंड भारत अखंड।

0: खंड खंड भारत अखंड कर एक नया इतिहास रचा दो, और इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो, इस पाजी आतंकवाद की लंका में तुम आग लगा दो। और बंधुओं, हम उन वीरों को नमन करें जिन वीरों ने इस शौर्य दिखाया है, उनकी जय बोलें। आइए एक रचना देता हूँ कि आजादी के बदले जिसने दिया स्वयं का जीवन तोल, आजादी के बदले जिसने दिया स्वयं का जीवन तोल, भारत वीरों की जय बोल, भारत वीरों की जय बोल। मातृभूमि की सेवा का व्रत जिसमें मन में ठाना है, जिसने सीखा नहीं कभी भी पीछे कदम हटाना है, देशद्रोहियों गद्दारों की जो देते हैं, देशद्रोहियों गद्दारों की जो देते हैं परतें खोल, भारत वीरों की जय बोल, भारत वीरों की जय बोल, भारत वीरों की जय बोल। जिसका हर त्योहार सदा ही सीमाओं पर बीता है, तब जा करके देश हमारा खुशियों के पल जीता है, वैभव में जीने वाले क्या जानेंगे सैनिक का मोल, भारत वीरों की जय बोल, भारत वीरों की जय बोल, भारत वीरों की जय बोल। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यलोक्रम में कवि उमाशंकर पाराशरी से ये काव्य पाठ। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412255 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के नाक कान एवं गला रोग से, जैसे नाक से खून आना, धूल मिट्टी या मौसम बदलने के कारण बार बार छींक आना, या नाक से पानी बहना, शुष्क हवा या चोट के कारण नाक से अचानक खून बहना, टॉन्सिल्स में सूजन, संक्रमण, गले की सूजन, संक्रमण, कान का सूजन, कान में लगातार घंटियां बजने या शोर महसूस होने की समस्या आदि के समाधान के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 17000 प्रतिमा किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक

0: तरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को जनप्रतिनिधि अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्यमी, निवेशक, किसान और गोपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी, गोपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टाड मैकल की मौजूदगी में व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का अन्वेषण करना और उन्हें बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए बिजनेस मीट में भारत और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और नीति निर्माताओं ने सहभागिता कर दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिससे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे और इसी के तहत आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। आगरा में उद्योग बढ़ने से बेरोजगारी दूर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ताजमहल के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी आगरा पहचाना जाएगा।
1: बहुत ही विस्तार से बड़ी सार्थक चर्चा आगरा के उद्योग जगत के साथ आज करने का सौभाग्य मिला। जो बेहतरीन काम आगरा में हो रहा है अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, कि हम कैसे आगरा के उद्योग के लिए क्या नई योजनाएं, क्या नए प्लान्स कर सकते हैं।
0: धर्मवीर छत्रपति सामाजी महाराज की 369वीं जयंती पर छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा राष्ट्रीय जन्मोत्सव समारोह 2026 के तहत महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा के विगत दिनों आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा किला के सामने हनुमान मंदिर पर आयोजित संभाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिलास पंगारकर ने बताया कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर 10 मई को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा संभाजी नगर, इंदौर, चित्तौड़गढ़, भीड़भाड़ा होते हुए जयपुर से आगरा पहुंचे और यहां से जयपुर होते हुए नर्मदा के खलघाट पहुंचकर संपन्न होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है।
2: जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की चूलें हिला दी थी और औरंगजेब का दक्कन जीतने के सपने को कभी महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ने दिया था और हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और उनकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन संरक्षित रहा था। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं आगरा की तरफ से प्रणाम करता
3: हूँ। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
4: जिले में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले एक सप्ताह से पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक से जिले के अस्पतालों के ओपीडी कक्ष में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। जनपद में नवागत जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम के कार्यभार संभालने के बाद जन सुनवाई के मामलों में दिखाई गई गंभीरता के बाद जन शिकायतों का कुशलता पूर्वक निस्तारण कर रहे हैं। जिले की तस्वीर को बदलने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि

0: ये सारे जो हमारे कोर इश्यूज हैं, एक डे टू डे है, एक लंबे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है डिपार्टमेंट वाइज उस पर वर्क करेगी। हर डिपार्टमेंट से हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं 50% हम लोगों से, और बाकियों की भी ले रहे हैं। फाइनल करके हम पब्लिक भी शेयर करेंगे, हमने साइट्स पे भी डालेंगे कि ये चीजें जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता से खाली खेत

0: 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि
1: फार्मर रजिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है और ये 31 मई तक चलेगा। इसमें लगातार निराकरण चल रहा है और आगे के दिनों में इन किसान भाइयों का जिसका किसी कारण से वंचित रहे हैं इनको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का जो कैंप चल रहा है उसमें अपना फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
0: शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक विद्यासागर ने बताया कि कुड़वार के रवनिया गांव के निकट गाटा संख्या 198 की नीलामी होगी। 11 जिलों में शत्रु संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। शहर के लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइन व गभड़िया में भी कीमती संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वे, मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जनगणना प्रक्रिया को मीडिया कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्डों में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित कर घर घर सर्वे की रूपरेखा बनाई गई है। जनगणना कर्मियों को डिजिटल एंट्री और मोबाइल आधारित डाटा फीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन QR कोड आधारित पहचान प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 16 मई 2026 से घर घर सर्वे और स्वगणना अभियान शुरू हो चुका है। रेलवे, बैंक और सरकारी संस्थानों में सेल्फ एलुमिनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जनगणना 2027 को प्रमुख अभियान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी लगातार हो रही है। प्रथम चरण में 22 मई से 20 जून तक जनगणना का कार्य कर्मी घर घर पहुंचकर मकानों की गणना करेंगे। सुल्तानपुर जिले में आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने इस वर्ष व्यापक जनभागीदारी के साथ विशेष पौधरोपण अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी, घटते भूजल स्तर और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबोहवा। आबोहवा में आज का विषय जल की बर्बादी। आलेख वाचन इस विषय पर मोनिका विजय का।
5: हमारे शरीर में 70% पानी होता है। यहाँ तक कि धरती भी 70% पानी से ढकी हुई है। जल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है पर हमारी अच्छी सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। बहुत पुराने समय से हमने पानी को कई तरीकों से इस्तेमाल किया है, जैसे कि यातायात, खेती और बिजली के उत्पादन में भी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की ही जरूरत होती है। पानी पेड़ पौधों को जीवित रखते हैं और हमारे जंगल को हरा भरा रखते हैं। इस वजह से वातावरण का तापमान संतुलित रहता है। जीने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के बिना किसी भी जीव जंतु का रहना मुश्किल है। इसीलिए हमें पानी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम पानी को कभी भी बेकार न करें। एक एक बूंद पानी किसी को भी जीवन दे सकती है। इसीलिए शायद ठीक ही कहा गया है कि जल प्रकृति का है एक वरदान, जल प्रकृति का है एक वरदान, जल बिन जीवन है सुनसान। इसी से हम खाते पीते हैं, जल से सब प्राणी जीते हैं। पानी पानी पानी पानी जीवन का आधार है। पानी गर्मी से राहत दिलवाता, हर प्राणी की प्यास बुझाता, अकुला हट को दूर भगाता, सबको निर्मल स्वच्छ बनाता। पानी पानी पानी पानी धरती का श्रृंगार है। पानी बादल।

वन अमृत बरसाता, वन झरना यह सबको भाता, नदियां बन यह कल कल गाता, सीप का यह मोती बन जाता, पानी पानी पानी पानी, सबका पालन हार है पानी, पेड़ों को हरियाली देता, जीवों को नव जीवन, धरती को खुशहाली देता, करता सबको पावन, पानी पानी पानी पानी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौसम के तापमान में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी वैसे ही पानी की जो मांग है और भी बढ़ती चली जाएगी, और पानी की समस्या की परेशानी हमें ना झेलनी पड़े इसके लिए यह कोशिश होनी चाहिए कि घर में पानी का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए। चलिए आज इसी बात को जानते हैं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए और कैसे पानी की बचत को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे बचाएं पानी। सबसे पहला है व्यर्थ ना बहाएं। जब भी आप ब्रश करती हैं तो उस समय व्यर्थ ही आपके नल में पानी बहता रहता है और बेकार होता रहता है। पानी बहुत कीमती है, इसीलिए जब भी इस्तेमाल ना करना हो तो उसे बंद ही रखें। दूसरे स्थान पर है पानी कहीं लीक ना हो। ज्यादातर लोग पानी का अपनी जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि उनके नल से या पाइप से पानी लीक हो रहा होता है। अगर नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत बनवाइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नल के नीचे बड़ी बाल्टी या कटोरा लगा दीजिए और बाद में उस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। और समय पर लीक हुए पाइप की और नल की मरम्मत भी करवा लेनी चाहिए जिससे पानी व्यर्थ ना बह सके। अब है शावर से नहीं बाल्टी से नहाए, क्योंकि शावर से पानी ज्यादा खर्च होता है, अतः नहाते वक्त हो सके तो शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करें क्योंकि शावर से बाल्टी के अपेक्षा पानी ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो लोगों की आदत होती है कि नल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम एकजुट होकर सही तरीकों से इस पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो निश्चय ही इसकी समस्या से हमें निजात मिल सकती है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय था जल की बर्बादी। आलेख वाचन इस विषय पर था मोनिका विजय का, और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए विशेष श्रृंखला कार्यक्रम याद है जरा जरा। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। राकेश शर्मा से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जिसको एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में हम सब जानते हैं, सूचना मनोरंजन और जानकारी का एक साधन जो कभी समाज में अपनी पहचान रखता था, आज भी हम सबके बीच उसी रूप में कार्यरत है। लेकिन एक बहुत लंबा समय आकाशवाणी ने जिया है, जिसमें एक वृक्ष जैसे पौधे से वृक्ष बनता है, बड़ा होता है, इसी तरीके से आकाशवाणी संस्था भी अपने उस कार्यकाल को जीते हुए आज लगभग 90 साल का वट वृक्ष हम सबके रूप में समाज में उपस्थित है। इन 90 साल में बहुत सारे दौर से आकाशवाणी गुजरी। उन यादों को उन लोगों ने जिन्होंने आकाशवाणी को जिया, आकाशवाणी को आगे तक ले जाने में अपना योगदान दिया, इस संस्था से जुड़े रहे ऐसे लोगों की एक श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार शर्मा जी, जो डायरेक्टर रहे इंजीनियरिंग से और सेवानिवृत्ति के बाद हम सब के बीच में आज दो चार हो रहे हैं, रूबरू हैं। तो सर, आपका मैं अपने इस कार्यक्रम में जो कुछ चीज़ें याद हैं जरा जरा सी आकाशवाणी के इस 90 साल के सफ़र में, आपने भी एक लंबा समय जिया है, तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं और अपने श्रोताओं की तरफ से ये जानना भी चाहता हूं कि वो जो स्मृतियां आपने अपने कार्यकाल में संजोई थी
2: जी
1: कार्य करके।

0: जी
1: जी
0: करके,
1: जी
0: समाज से जुड़ करके, एक संस्था में आपने, ऐसी संस्था जिसको लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे आकाशवाणी का नाम लेकर के, लोगों की सेवा भी की, लोगों तक जानकारी पहुंचाई, मनोरंजन भी किया। और एक समय ऐसा था जब आकाशवाणी ही इस सबके लिए जाना जाता था, आज तो बहुत
1: जी
0: साधन है। तो उन स्मृतियों से मैं शुरू करना चाहूँगा कि वो कैसे हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप।
1: जी आकाशवाणी में नौकरी में आने से पहले मैं दिल्ली में एक डेसू संस्था है बिजली की,
0: जी
1: उसमें काम करता था, पावर हाउस में।
0: जी
1: वहाँ भी पक्की नौकरी थी मेरे पास, लेकिन आकाशवाणी का इतना क्रेज था कि वो देखना था कैसे काम होता, आवाज़ कैसे आती है क्या। तो एक मन में एक भावना थी जानने वाली कि ये काम कैसे करते सोचता, ये आवाज़ कैसे आती है रेडियो वाली
0: जी,
1: अलग हमने थ्योरी में
0: पढ़ा था।
1: पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकली जानकारी नहीं थी। तो मेरी पहली पोस्टिंग जलंधर में हुई सन 1978 में, और वहाँ पर मुझे हाई पावर ट्रांसमीटर गोराया एक जगह है, वहाँ पर मुझे पोस्टिंग मिली। तो वहाँ मैं 3 साल रहा पहली पोस्टिंग में। तो शुरुआत मेरे जीवन में वहीं से हुई, और शुरू में सीखने की प्रवृत्ति बहुत होती है, मेरे अंदर भी थी। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो वाल्व टाइप थी, एनालॉग वाल्व टाइप। तो उसके कुछ फायदे थे जो अब आज के उसमें नहीं है। एक तो वो रिपेयरेबल थे काफ़ी इक्विपमेंट, जो मशीनरी जो होती थी उसको रिपेयर करना काफ़ी आसान था। आप पढ़ लें उसका लिटरेचर, ड्राइंग को देख लें तो एक आसानी से उसका फॉल्ट पकड़ में आता था। तो एक पहला दौर था वो। और जलंधर के बाद मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई, जहाँ पर दिल्ली ए और बी के ट्रांसमीटर हैं, उसको हम HPT नांगली कहते हैं। वहाँ लगभग मैं 4 साल रहा। तो वहाँ भी वही टेक्नोलॉजी थी, और एक बात जरूर है कि उस समय क्रेज़ बहुत था आकाशवाणी का। यहाँ तक था कि जो हमारे अधिकारी होते थे वो VIP की गिनतियों में आते थे। जिले में कोई बैठक होती थी तो हमारे डायरेक्टर वगैरह बैठकों में हिस्सा लिया करते थे।
0: जी
1: और उस समय कोई और माध्यम था ही नहीं, उस समय दूरदर्शन भी नहीं
0: नहीं
1: था, बहुत
0: था।
1: कम थे केंद्र, वो भी खाली मेट्रो स्टेशंस में थे। तो पूरा जो कम्युनिकेशन था गवर्नमेंट का वो रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ही था। और जिसके घर में रेडियो होता था उस समय वो आदमी VIP माना
0: जी,
1: जाता
0: मतलब रेडियो होना भी एक
1: था जी,
0: बड़े आदमी
1: एक
0: के लिए
1: बड़ी बात थी
0: बड़ी बात थी
1: जी
0: उसमें। तो आपने बताया कि उस समय से 78 से शुरू किया, कि जब बड़ी बड़ी मशीनें थी, अलग थी,
1: जी
0: फिर समय बदला, मशीनों में भी बदलाव आया, समय भी बदलाव आया, और आज तो फिर हम जब देखते हैं कि FM का युग है। जब
1: जी
0: आप सेवानिवृत्ति लेके गए
1: बिल्कुल,
0: 18
1: FM आ
0: में,
1: गया
0: तो तब FM आ चुका था। तो एक बदलाव का दौर भी आपने देखा, कि बड़ी मशीनों से फिर छोटी मशीन, छोटी मशीनों से और छोटी मशीन, और अब तो सब कुछ मोबाइल में भी रेडियो
1: जी।
0: है।
1: हाँ, एक समय था जबकि रिकॉर्डर काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, और फील्ड में रिकॉर्डिंग के लिए जब जाते थे तो भारी भरकम डिब्बों को ले आना पड़ता था, बॉक्सेस होते थे उस समय असल में। बाद में इतना मामला कॉम्पैक्ट हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन आया चीज़ों में, रिकॉर्डर छोटे छोटे आने लगे, कैसेट्स आ गए थे बाद में। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हार्ड बेस सिस्टम में आना शुरू हुआ, यानी पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो वाल्व टाइप थी, एनालॉग थी। फिर आए ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर ने क्या किया कि स्पेस कम कर दिया, यानी जो बड़ा मशीन थी वो छोटी होने
0: छोटी
1: लगी
0: में आ गई।
1: पूरा,
0: जी
1: और वो भी काफ़ी आसान थी। उसके बाद ICs आना शुरू हो गए। IC में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे डायोड वगैरह एक छोटी चिप में आते हैं। तो वो एक दौर आया, लेकिन उसके बाद फाइनल जो स्टेज आई है वो आई है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। और हमारी रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड उस पर इक्विपमेंट हो रही है
0: जी
1: जी। कंप्यूटर क्या एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम है और उसी पे सारा काम होता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं, डबिंग एडिटिंग काफ़ी आसान हो गई,
0: आसान हो गई
1: पहले
0: है।
1: थोड़ा मुश्किल हुआ करती थी। तो ये दौर हमने देखा
0: मतलब
1: है
0: आज जब हम देख रहे हैं कि डिजिटली चीजें इतनी आसान और इतनी जल्दी हो जा रही हैं,
1: जी
0: वो इससे सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही
1: जी
0: हुआ
1: जी जी
0: उसमें।
1: जी
0: और अब तो हम देखते हैं कि हर चीज मोबाइल में हम लेके घूम रहे हैं,
1: जी
0: तो ये चिप वाला सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर वाला सिस्टम, उसमें जीवन को थोड़ा आसान बनाया
1: जी
0: जीवन को।
1: आसान इतना हो गया कि आज सुबह जब पार्क में घूम रहा था, आज सुबह की बात है, तो एक सज्जन बोले, गांव के रहने वाले हैं वो, कि भाई पहले हम आला ढोला ये सुनते थे, अब तो नहीं आते। मैंने कहा वो तो अब भी आते हैं, अब सुनते कहाँ हो, कैसे सुने, रेडियो तो मिलता नहीं है। मैंने कहा मोबाइल में आता है भाई, मोबाइल पे आप ईयर प्लग लगाओ वो काम करेगा, 102.2 पे हमारी फ्रिक्वेंसी है, आप सुन के देखिए।
0: आकाशवाणी
1: तो
0: मथुरा
1: मैंने
0: सुन
1: बताया
0: लो।
1: उनको कि हमारा केंद्र

0: जो आकाशवाणी मथुरा का है उसकी फ्रिक्वेंसी 102.2 MHz है, आप ट्यून करिए आपको वो मिलेगा। तो लोगों में क्रेज तो अभी भी है,
1: हाँ,
0: सुनने
1: लेकिन
0: की
1: वो
0: इच्छा तो
1: एक
0: अभी भी है,
1: टेक्नोलॉजी का गैप हो गया है, लोगों को
0: गैप हो गया,
1: जानकारी
0: गैप हो,
1: नहीं है।
0: गैप हो गया। हाँ
1: हाँ, जो पुराना जो रेडियो पे ही आता है ऐसा मान
0: जी,
1: करके, रेडियो अब रहे नहीं, तो चीज़ें बदल गई हैं उसमें।
0: पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो एएम वाली थी, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेस्ड। उसके लिए बड़ा होता था ट्रांसमीटर, एंटीना सिस्टम बहुत बड़ा करना पड़ता था, उसके लिए एरिया बहुत चाहिए होता। अब ऐसा नहीं है, अब एक टावर पे आप कई एंटीना टांग सकते हैं,
1: टांग
0: तो एक लाभ
1: सकते
0: भी
1: हैं।
0: हुआ उसका।
1: अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आ गया है,
0: जी
1: क्वालिटी भी बस हो गई है।
0: हाँ
1: अब देखिए कार में, उसमें चलते हुए कहीं भी साफ आप सुन सकते हैं उसमें।
0: क्वालिटी में तो थ्योरिटिकल भी हमें पढ़ाया गया था हमको कि एएम और एफएम में मेन अंतर यह है कि एफएम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें नॉइज अपने आप रिड्यूस हो जाती है, जबकि एएम में ऐसा फीचर नहीं होता। हालांकि जब हम आए थे तो एएम की क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रिकल नॉइज बहुत कम थी। अब इतना नॉइज बढ़ गई इलेक्ट्रिकल की कि उसमें क्लैरिटी इतनी अच्छी आ नहीं सकती।
1: अब FM ही सर्वत्र
0: एफएम
1: है।
0: में क्या है कि बिल्ट इन फीचर होता है कि अपने आप वो इलेक्ट्रिकल नॉइज को कम कर देता है, इसलिए क्वालिटी अच्छी मानी जाती है।
1: जी, तो आपने तो इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया। आप आकाशवाणी में जिन लोगों को नहीं पता है कि एक टीम वर्क है, यहाँ कुछ प्रोग्राम के लोग हैं, कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ उन दोनों को सहूलियत देने के लिए कुछ लोग हैं, तो टेक्निकली आपने तो लोगों तक इन सब चीज़ों को पहुंचाया। जब ये सब हम करते रहे होंगे तो कैसा लगता था कि हम समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा रहे हैं जो वहाँ तक जानी चाहिए,
0: जी
1: चाहे शिक्षा की हो, चाहे
0: जी जी
1: मनोरंजन की
0: जी
1: हो,
0: जी
1: चाहे
0: जी
1: उनको जानकारी देना हो। न्यूज़ एक बहुत बड़ा माध्यम है जो रेडियो के माध्यम से आज भी रूट लेवल तक और रिमोट लेवल तक जा रहा है उसमें, कि बहुत सारी चीज़ें आज भी संभव नहीं है रिमोट में, तो रेडियो ने ये सेवा बहुत लोगों तक पहुंचाई और आपने उसमें सहयोग दिया, तो आपको निश्चित तौर पे अच्छा तो लगता होगा कि हम एक ऐसे साधन
0: हाँ निश्चित
1: के
0: अच्छा लगता
1: जुड़े।
0: है। और जब मैं छोटा था तो हमें ध्यान है एक समाचार वाचक थे देवकीनंदन पांडे,
1: पांडे जी
0: तो उनकी आवाज़ जब आती थी हमें ध्यान है, बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, होते
1: जी
0: किसी किसी के यहाँ थे, सबके यहाँ नहीं होते
1: हाँ
0: थे, तो लोग समय से पहले आके वो न्यूज़ सुनते थे,
1: हाँ
0: रात्रि की न्यूज़ जो होती है, मुख्य समाचार जो होते
1: जी
0: हैं, पौने
1: जी
0: नौ बजे वाले
1: पौने
0: जो
1: नौ बजे
0: आते
1: वाले
0: हैं। और उस समय रेडियो एक होता था, सुनने वाले बहुत लोग हुआ
1: बहुत
0: करते थे,
1: लोग
0: तो एक वो समय था, क्रेज था, क्योंकि और कोई साधन था ही नहीं हमारे पास। दूरदर्शन भी बहुत बाद में आया है, और उसमें यह है कि आपको सामने बैठना पड़ेगा। रेडियो में यह है कि आप अपना काम भी करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। और जहाँ तक विश्वसनीयता की स्थिति है वो यह है कि अभी भी आपको सही न्यूज़ सुननी है, सही समाचार सुनने हैं
1: और सही समय
0: सही समय पर, तो आपको रेडियो सुनना पड़ेगा।
1: जी।
0: और समाचार भी वो होते हैं जिनकी पुष्टि पहले कर ली जाती है, ऐसे नहीं है कि चाहे जो क्या कह दिया और बाद में विवाद पैदा हो गया।
1: मतलब
0: तो
1: रेडियो से कोई बात आ रही है तो जनसामान्य उसको ये मानता था कि
0: ये
1: ये
0: सच
1: सत्य
0: है,
1: ही
0: सच है,
1: है,
0: सच है।
1: इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है
0: अभी
1: उसमें।
0: भी कुछ लोग कहते हैं कि जो वार्ताएं जो आती थी आकाशवाणी की, उनका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा वो तो अब भी आती हैं। आकाशवाणी में क्या है कि हम विद्वान लोगों को बुलाते हैं, उनकी चर्चा होती है और उसको हम आगे भेज देते हैं। तो ऐसी चर्चाएं देखो, आप टीवी पे देखिए, चर्चाएं कम होती हैं, शोर ज़्यादा
1: शोर
0: ज़्यादा
1: ज्यादा
0: मिलेगा आपको।
1: होता है
0: तो
1: जी।
0: चर्चाएं जो आकाशवाणी की हैं वो एक बड़े स्तर की, अच्छे स्तर की होती हैं, तो उनका तो अभी लोग याद करते हैं उस चीज़ को।
1: अब जो समय आपका सेवानिवृत्ति के बाद जा रहा है, तो अब कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ, अलग तरह के कार्यक्रम, इसमें रेडियो तो है लेकिन समाज की और सारी चीज़ों को भी समय आप दे रहे हैं इसमें।
0: हाँ मैं घर में नहीं बैठा और सोशल कार्य में लग गया। जैसे यहाँ वृंदावन में एक संस्था है, केशव धाम संस्था है, तो वहाँ कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो उनको पढ़ाने का काम मैंने शुरू किया। एक संस्थान और यहाँ बन रहा है परखम में, दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वहाँ सेवाएं देता हूँ। इसके अलावा पार्क में चले जाना, वहाँ की समस्याओं को देखना। मंदिर में गए तो हमने क्या शुरू किया कि भाई कुछ लोग इतने इकट्ठे हों, एक दिन पाठ किया करें, लोग सामूहिक तौर पे मिलना शुरू करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के काम में आएं, तो इस तरह का काम मैं करता रहता हूँ।
1: मतलब समाज ने हमको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो निश्चित तौर पे जब हमारे पास समय हो, हमारे पास साधन हो, हमारे पास सामर्थ्य हो, तो समाज को भी कुछ देते रहना चाहिए, चाहे
0: जी
1: किसी भी रूप में हम
0: जी जी
1: दें।
0: जी जिस प्रकार से माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, वैसे ही समाज का ऋण भी होता है। कोई व्यक्ति स्वयं से

0: बड़ा आदमी नहीं बन सकता, जैसे आज कोई आईपीएस अधिकारी है
1: जी
0: तो स्वयं से नहीं बन गया वो,
1: जी समाज
0: समाज का
1: का
0: उसके प्रति पूरा रोल रहता है, पूरा व्यवस्था काम करती है, तो समाज का ऋण भी आदमी पे रहता है और जहाँ तक संभव हो चुकाना चाहिए, मैं वही काम
1: जी
0: करता हूँ।
1: तो अब जो स्मृतियां आपको एक कैसा लगता है कि भाई रेडियो ने हमको दिया, रेडियो ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, तो एक संस्था के रूप में जो स्मृतियां आपके साथ हैं उनको कैसे, मतलब वो आज भी आपको कैसे स्पंदित करती हैं, कैसे ऊर्जा देती हैं, कैसे प्रेरणा देती हैं, इसमें कुछ
0: हाँ,
1: समय
0: मैं ये
1: छोटा।
0: बात बताता हूँ लोगों को, जब मैं भर्ती हुआ तो जेई लेवल पर भर्ती, हमारे यहाँ जेई का नाम नहीं है, ईए का नाम है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट बोलते हैं, और मुझे 5 प्रमोशंस मिली जो एक अच्छी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ, कम लोगों को मिलती है, तो ये ऐसे नहीं मिलती, आपको लगातार काम करना होगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्टर्स पढ़ते रहते हैं वैसे इंजीनियरिंग लाइन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लगातार अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो वो करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो वो मैंने किया है, सभी लोग करते हैं, जनरली सभी लोग
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: और जो
1: जी
0: अच्छा करते हैं ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, ये तो होता ही है। मेरे
1: जी
0: लिए बड़े एक उसकी गौरव की बात है स्वयं के लिए कि मैं एक जेई लेवल से और
1: एक
0: डायरेक्टर
1: डायरेक्टर
0: लेवल
1: लेवल
0: तक पहुंचा, तो
1: जी,
0: ये मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि
1: संस्था का बहुत
0: है
1: बड़ा
0: जी,
1: योगदान
0: बड़ा
1: है।
0: एहसान मेरे ऊपर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को।
1: जी, तो संस्था का भी एहसान, समाज का भी एहसान, स्वयं का एक विजन, स्वयं की मेहनत भी काम आती है। इसमें बातें तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन चलते चलते ये दौर तो यही था कि हम रेडियो को याद करें, संस्था को याद करें,
0: जी
1: रेडियो के उस उसको याद करें। तो कुछ और कहना चाहें चलते चलते?
0: बस यही है कि मैं जब तक सर्विस में रहा तो ये था कि भी जिस पोजीशन में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करें, उसके प्रति न्याय करें, तो आपका यही अच्छी सेवा होगी, और आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जो आपके जूनियर हैं उनको आप प्रेरित करते रहें अच्छे कार्य के लिए, बड़ों का सम्मान करें, यही बातें सबको करनी चाहिए।
1: जी, तो श्रोता बंधु, आप थे श्री राकेश कुमार शर्मा जी, जो डायरेक्टर इंजीनियरिंग सेवानिवृत्ति आकाशवाणी से ली, और हम याद कर रहे थे आकाशवाणी के उस 90 साल के सफ़र को, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ावों के बाद ये संस्था समाज के एक अभिन्न अंग के तौर पे, समाज के साथ चलते हुए, जिसमें सूचना, मनोरंजन और जानकारी जो इसका परम ध्येय था उसको निभाते हुए बहुत सारे बदलावों को खुद भी जिया, और समाज में भी बहुत सारे बदलावों को लेकर के हम रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से गए। उन्होंने भी एक समय को जिया जिसकी वो चर्चा आपके साथ कर रहे थे। शर्मा जी, ये दौर चलता रहेगा, आप
0: जी,
1: हमारे श्रोताओं से जुड़े, हमसे जुड़े, और कुछ पुरानी यादों को उनके साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गज़ल। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं?

सुझाव टेलीफोन नंबर 2530-135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत आप करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड 281003। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225557 पर, जी हाँ, मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के नाक कान गला रोग जैसे नाक से खून आना, धूल मिट्टी या मौसम बदलने के कारण बार बार छींक आना और नाक से पानी बहना, शुष्क हवा या चोट के कारण नाक से अचानक खून बहना, टॉन्सिल्स में सूजन या संक्रमण, गले की सूजन या संक्रमण, कान का संक्रमण या सूजन, कान में लगातार घंटियां बजना, शोर महसूस होने की समस्या आदि के समाधान के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन यानी कि आज समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।

0: जी ने सुविचार भेजा है, आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
1: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
1: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
1: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी,
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है, यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है, यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें

0: बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींग।

0: भाई एक हिरन, लंबी लंबी सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आगे

बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले यशोदास को फिल्म छोटी सी बात में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं फिल्म संगीत में फिल्म संबंध से ये गीत। गीत प्रदीप का, संगीत OP नैयर का, आवाज़ इस गीत में आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार आशा भोसले को फिल्म संबंध में, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत एक दूजे के लिए, जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा। आवाज़ इस गीत में लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा और लता मंगेशकर को फिल्म एक दूजे के लिए में, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का, और आइए सुनते हैं फिल्म बॉबी से ये गीत। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का, आवाज नरेंद्र चंचल की।

अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल को फिल्म बॉबी में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और आइए सुनते हैं इस गीत में जिसे लिया फिल्म नगीना से, मोहम्मद अजीज के स्वर में ये गीत, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अज़ीज़ को फिल्म नगीना में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। जी हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।

हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी सर,
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: अरे आदरणीय सारस्वत साहब को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहते हैं।
0: सर मैं आपका जाना पहचाना रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से सर।
1: बहुत स्वागत है यादराम जी कार्यक्रम में।
0: और सर आप कैसे हो, हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: बहुत अच्छे हैं सर,
0: आपकी दुआ से सब कुशल मंगल है सर। हम भी प्रार्थना करते भगवान से आप लोगों की ऐसा हमारे सब लोग अपना स्वस्थ रहे मस्त रहे, ऐसी हमें आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनवाते रहे सर।
1: जी जी आपकी दुआओं का असर है, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ।
0: और सर जो है आप जो अपना कार्यक्रम करते हैं सर, आपके कार्यक्रम की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं सर। जो इतनी मेहनत करके आप हम लोगों को प्रोग्राम सुनवाते हैं और हम लोगों को पहुंचाते हैं प्रोग्राम।
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका यादराम जी।
0: गर्मी बहुत पड़ी है सर, और मैं इस माध्यम से सर सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया घर से सुबह शाम अपना काम करने के लिए कहीं निकलें और टोपी गमछा लगा करके नहीं जाएं सर, और पानी साथ में ले जाएं, पानी पीते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो तबीयत बिगड़ने का अंदेशा रहता है फिर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर हमारी पसंद रहेगी, फिल्म का नाम है शिकारी और गाने के बोल हैं, तुम तो पिया दिल दिया इतनी नाज से, नैना लड़के भोले वाले कैसे दगाबाज हैं।
1: ठीक है यादराम जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार सर, मेरा कॉल शामिल करने के लिए सर नमस्कार। राधे राधे जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा।

0: हेलो,
1: आदरणीय महोदय शरद सुप्रीम, प्यार से नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मानवर मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के बात कर रहा हूँ आदरणीय संजय सारस्वत साहब से। जी
0: बहुत स्वागत करते हैं प्रजापति जी कार्यक्रम में।
1: हृदय से धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: निसंदेह ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का आनंद हमें लेना ही चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक है। थोड़ी सी
0: हाँ
1: सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लोग की चपेट में नहीं आना चाहिए। बस घर में रहते हुए आनंद पूर्वक रेडियो सुनते रहें और ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते रहें। जी
0: बहुत आवश्यक काम हो तभी घर से निकलें।
1: जी और पूरी तैयारी के साथ निकलें, पानी पी के निकलें और सिर को ढक के रखें।
0: जी, आज क्या पसंद रहेगी प्रजापति जी कार्यक्रम में?
1: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। सुरेश
0: जी
1: वाडेकर साहब ने गीत को गाया है, गंगा जमुना सरस्वती प्यार पैगाम है, जहाँ ये तीनों मिल जाएं संगम उसका नाम है। जी
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हृदय धन्यवाद, आभार। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं करता हूँ। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: कौन बोल रहे हैं?
0: सर, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी। मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ
1: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
0: जी। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप बताइए, आपके घर परिवार में आप सब ठीक हैं?
0: जी बहुत ही अच्छे हैं। आपका कार्यक्रम सुनते हैं मोबाइल एप्स पर
1: जी,
0: जी।
1: ऐसे
0: उसमें
1: ही
0: हमें, आपको बताऊं, आपको फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं
1: बिल्कुल।
0: जी। हाँ सर, अभी तो काफी हमारे यहाँ पे गर्मी है। अभी आपको बताओ, 45 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है।
1: यहाँ भी बहुत गर्मी है सर इन दिनों, 44-45 पे चल रहा है टेम्परेचर।
0: तो उसके लिए सर, जैसे हमारे आसपास में बड़े बड़े, मतलब दो बरगद के पेड़ हैं, तो यहाँ पर काफी पशु पक्षी आते हैं, बंदर भी आते हैं, तो हमने उनके लिए मतलब 2-3 टब में पानी भर के रखा हुआ है। कुछ मोर भी आते हैं, कुछ टिटहरी है, कुछ चिड़िया है, ऐसे मतलब काफी पंखे जानवर भी यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए। तो उनके लिए मतलब हमने चावल या ऐसे गेहूं के दाने भी उसमें डाल रखे हैं आसपास, तो मतलब पानी भी पीते हैं और वहाँ पे अपना खाना भी खाते हैं
1: बिल्कुल अच्छा काम किया सर आपने। मूक
0: जी।
1: पशु पक्षियों की सेवा करना इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में सिसोदिया जी?
0: जी सर, फिल्म का नाम है विरासत और गाने के बोले, तारे हैं बाराती, चांदनी है बारात।
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं, बहुत बहुत आभार आपका।
0: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा
1: नमस्कार।
0: जी। नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर से प्रेम का भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सर, आपका नियमित श्रोता खंदौली से ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ। सर,
0: स्वागत है लवानिया जी कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी है हमारी हेलो आकाशवाणी टीम?
0: बहुत अच्छी है आपकी टीम सर। आप बताइए, गर्मी में बचाव रखे हुए हैं?
1: सर, गर्मी में बचाव रखे हैं और आपके कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो उन बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और वो बीमार रहते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो ऐसी गर्मी में उनके खान पान का, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सर
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जी,
0: आज क्या फरमाइश रहेगी लबानिया जी?
1: सर क्योंकि अब आजकल अधिक मास शुरू हो गया है तो जिधर देखो ब्रज में तो 84 कोस की परिक्रमा की धूम मची है,
0: जी,
1: तो आपसे गुजारिश है आप अपनी तरफ से कोई भी अच्छा सा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ऐसा कोई भी गीत।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत जी हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर। नमस्कार, राधे राधे।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: मैं मथुरा मंडी चौराहे से लाल किशन बोल रहा हूँ सर जी।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: जी सर।
1: क्या हालचाल है आपका?
0: हाँ सर, बढ़िया है। आपकी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: हम लोग भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप लाल किशन जी?
0: मैं सर बच्चों को पढ़ाता हूँ सर। जी
1: अच्छा,
0: सर।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: जी सर, आजकल सर गर्मी बहुत तेज चरम सीमा पे है सर।
1: बिल्कुल
0: एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है एक-एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे जो है टेम्परेचर जो है गर्मी का जो ज्यादा प्रकोप है वो कम हो, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एनवायरनमेंट पर्यावरण सही मिले। तो मैं सभी
1: बिल्कुल
0: से अपील करता हूँ कि एक-एक पेड़ अपने खेतों पर, खाली जगहों पर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, पानी भी दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह है सर आपकी।
0: जी
1: ये सलाह आपकी सभी लोगों को माननी चाहिए। हर व्यक्ति
0: सर।
1: को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी सर। एक्चुअली में क्या सर, कल मैं गर्मी से परेशान था तो मैं एक ऐसी जगह पे गया, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो
1: जी
0: सर जहाँ मैं गया वहाँ बहुत डिफरेंट था,
1: जी
0: बिल्कुल ठंडक थी सर पेड़ पौधों के पास। बड़ा आनंद लगा सर वहाँ जाके। जी,
1: वातावरण बहुत ठंडा और शांत हो जाता है।
0: मन को बड़ा सुकून लगा सर।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: जी,
1: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
0: मेरी फरमाइश है सर, फरोश फिल्म का गाना है, हुस्न वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। जी
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं सर। बहुत बहुत
0: सर,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: आपका।
0: थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।
0: राधे राधे सर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी संजय सारस्वत की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फ़ोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फ़ोन द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि, मथुरा, पिन कोड नंबर 281003। सूचना समाप्त हुई। एक अन्य कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 21 मई 2026 को दोपहर 12:00 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फ़ोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 94-12-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएँ एवं

समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के नाक कान गला रोग जैसे नाक से खून आना, धूल मिट्टी या मौसम बदलने के कारण बार बार छींक आना और नाक से पानी बहना, शुष्क हवा

पानी बहना, शुष्क हवा या चोट के कारण नाक से अचानक खून बहना, टॉन्सिल में सूजन या संक्रमण, गले में सूजन या संक्रमण, कान का संक्रमण या सूजन, कान में लगातार घंटियां बजने या शोर महसूस होने की समस्या आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ईएनटी विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कि आज 21 मई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, फिल्म संगीत के इस सफर में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, आज यानी 21 मई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। यह केवल एक नेता को याद करने का दिन नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सपनों, तकनीकी विकास और युवा शक्ति पर उनके विश्वास को स्मरण करने का अवसर भी है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। राजीव गांधी उन नेताओं में थे जिन्होंने भारत के भविष्य को नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। शांत स्वभाव, आधुनिक सोच और युवा दृष्टि रखने वाले राजीव गांधी जी ने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा था। साल 1984 में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उस समय देश अनेक चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन राजीव गांधी जी ने विकास, तकनीक और शिक्षा को देश की प्रगति का आधार माना। आईटी और तकनीक के क्षेत्र में योगदान दिया। यदि आज भारत दुनिया में सूचना तकनीक यानी आईटी के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है, तो उसके पीछे राजीव गांधी जी की दूरदर्शी सोच का बहुत बड़ा योगदान है।

जो भविष्य की राह बनाते हैं वे समय के साथ अमर हो जाते हैं। राजीव गांधी एक ऐसा नाम है जो भारत के आधुनिक सपनों में आज भी जीवित है। तकनीक से जो देश जोड़ा, युवाओं को जिसने आगे मोड़ा, उस नेता को शस्त्र नमन जिसने आधुनिक भारत का सपना छोड़ा। साथियों, उन्होंने देश में कंप्यूटर और दूर संचार क्रांति की शुरुआत को बढ़ावा दिया। उस दौर में जब लोग कंप्यूटर से लेकर आशंकित थे, तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि तकनीक रोजगार छीनने नहीं बल्कि नए अवसर पैदा करने का माध्यम बनेगी। उनके प्रयासों से देश में कंप्यूटर शिक्षा, टेलीकॉम नेटवर्क और आधुनिक संचार व्यवस्था को नई गति मिली। आगे चलकर यही प्रयास भारत के आईटी सेक्टर को मजबूत नींव में परिणत किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

साथियों, राजीव गांधी जी का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा हैं। उन्होंने युवाओं को राजनीति और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में शिक्षा, विज्ञान और संचार के देश में अनेक नई योजनाएं शुरू हुई। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और गांव तक विकास पहुंचाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जो भविष्य की राह बनाते हैं वे समय के साथ अमर हो जाते हैं। राजीव गांधी जी एक ऐसा ही नाम है जो भारत के आधुनिक सपनों में आज भी जीवित हैं। तकनीक से जो देश को जोड़ा, युवाओं को जिसने आगे मोड़ा, उस नेता को शत शत नमन जिसने आधुनिक भारत का सपना छोड़ा। साथियों, 21 मई 1991 को एक दुखद घटना में राजीव गांधी जी का निधन हो गया। उनका जाना पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके विचार, उनकी आधुनिक सोच और विकास का सपना आज भी भारत की प्रगति में दिखाई देता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही संकल्प लें कि हम देश की उन्नति, शिक्षा, तकनीक और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसके विचार सदैव जीवित रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। विषय है नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ENT विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
2: श्रोताओ नमस्कार। आपके अपने उस कार्यक्रम का जिसका आप हर गुरुवार को इंतजार करते हैं 12 बजे, आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट लिया गया है, विषय है, वो है नाक कान गला संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं जो एलर्जिक हो सकती हैं, जो जैसे मौसम की वजह से, कुछ धूल की वजह से, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारा शरीर ठीक से नहीं लेता, उनके प्रति रिएक्ट करता है, तो वो बेसिकली एलर्जी होती है। तो दो टेलीफोन नंबर हमारे आपके साथ दिए हुए हैं, 2530135 एक लैंडलाइन नंबर है, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है 94122255575, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपकी जो भी प्रश्न हैं, जो भी जिज्ञासा हैं, जो भी सलाह आप लेना चाहते हैं, जो भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो करिए। आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर नीलम प्रजापति जी। आप वरिष्ठ ENT सर्जन हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में। मैडम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ENT एक छोटा सा मुंह पे एरिया जहाँ हमारी नाक कान और गला एक ही साथ काम करते हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण
3: जी।
2: और देखते हैं कि मौसम कोई भी बदले, चाहे हम सर्दी से गर्मी में आए, गर्मी से सर्दी में जाए, जब परिवर्तन होता है, या फिर गर्मी में भी किसी को जुकाम हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, किसी का गला खराब हो सकता है। और हम भारतीय संस्कृति के ऐसे लोग हैं जो बहुत डिफरेंट खाते हैं
3: जी।
2: सर्दी में अब तो आइसक्रीम भी खाते हैं और गर्मी में जो है गर्म भी खाते हैं। तो अब हमारे श्रोता हमसे कुछ पूछना चाहेंगे उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन जब तक वो जुड़े लाइन के माध्यम से, मैं आपका स्वागत तो कर ही लिया है, जानना चाहूँगा

0: कि ENT संबंधी जो समस्याएं एक व्यक्ति को हो सकती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिन पर उसको ध्यान देना चाहिए, जहां उसकी सावधानी है, जहां उसकी एक विशेष वो बनती है उसमें, तो थोड़ा सा एक ENT सर्जन के
1: जी,
0: नाते आप
1: आज
0: बताइए।
1: की जैसे आपने बोला कि आजकल एलर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम एक नॉर्मल टॉपिक लेके चलते हैं जैसे एलर्जिक रिनाइटिस, इसमें क्या होता है हमारे नाक में हमें एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से हमें कोई रीज़न नहीं पता कि हमें क्यों वो एलर्जी है।
0: जी
1: वो बेसिकली किसी भी चीज़ से हो सकती है। आजकल जब हमारे गेहूं कटते हैं उसका धान कटते हैं तो उसके कारण पॉलन की वजह से हमें वो एलर्जी हो सकती है। इससे बेसिकली क्या होता है आपके नाक से पानी आता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको ऐसा लगता है कि लगातार आपके गले से कुछ रेशा पीछे टपक रहा है जो बहुत ही पेशेंट को इरिटेट करता है
0: जी
1: कि कुछ ना कुछ तो है मेरे गले में। आंखों से पानी आना, खुजली रहना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो रहती हैं। आजकल हमारी इंडियन की जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत लगातार चेंज हो रही है, हम उसे अडेप्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो एलर्जिक रिनाइटिस है ये कहने के लिए एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन ये आपस अपने आप में ही बहुत बड़ा है। इसके कॉज, इसका क्या कारण है, ये क्यों है, क्या नहीं है, इसके लिए काफ़ी पीछे बहुत अभी चल रही हैं जांचें चल रही हैं कि क्या है ये सब।
0: जी जी
1: जी
0: मैडम, आप देखते हैं कि जीवन स्तर बदल रहा है,
1: जी
0: सुविधाएं बदल रही हैं। अब एक वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा लगभग एयर कंडीशन में रहता
1: हाँ जी,
0: है
1: आजकल
0: ना,
1: एसी के कारण।
0: तो हाँ, तो एयर कंडीशन में जो लोग रहते हैं, तो
1: जी
0: वहाँ भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा होगा कि आंखों का पानी सूख
1: हाँ जी,
0: गया, नज़ला की प्रॉब्लम
1: लगातार आ
0: है।
1: रहा है। हाँ जी,
0: हाँ,
1: यूजली
0: तो
1: क्या होता है जब हम एसी में रह रहे हैं तो एसी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है डिहाइड्रेशन करती है। तो मैं बेसिकली ये सलाह दूंगी अगर आप एसी के बीच में रह रहे हैं तो अपने रूम में या कहीं भी जहां आपकी एसी चल रही है तो एक छोटा सा सामान जो किसी में पानी भर के आप रख सकते हो जो आपके टेम्परेचर को थोड़ा ह्यूमिडिफाई करे।
0: जी, मतलब आप
1: हाँ
0: खुले
1: जी,
0: में थोड़ा सा पानी
1: थोड़ा
0: रख
1: सा
0: लें।
1: पानी, लाइक कोई भी बर्तन में आप पानी रख लो, कैसा ही रख लो, ठंडा रखो, गर्म रखो, थोड़ा ह्यूमिडिफाई के लिए, ताकि आपका जो टेम्परेचर जो आपकी बॉडी से वो लेना चाह रहा है एसी। बेसिकली एसी क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से ही टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर करके आपकी बॉडी को कूल डाउन कर रहा है। तो आपको डिहाइड्रेट, चाहे वो धूप से हो रहा हो चाहे वो एयर कंडीशनर से, लेकिन वो आपका बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है,
0: पानी आपका जा रहा है,
1: पानी आपका जा रहा है, चाहे
0: आप
1: बाहर
0: आराम में
1: रहिए
0: भले
1: चाहे।
0: ही
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: और कई बार तो मशीन बैठे रहते हैं, पानी पीने की जो है एक आदत सी छूट जाती
1: छूट
0: है,
1: जाती है कि
0: जो
1: हम
0: प्यास
1: ठंडा
0: है
1: हैं क्योंकि
0: ठंड
1: वो हमारी
0: है।
1: बॉडी डिहाइड्रेट में जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, आजकल मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं मैडम हम एसी में नहीं बैठ सकते, इवन हम जब नहा के आते हैं तो हम पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। तो
0: हाँ, ये भी एक लक्षण है कि थोड़ा सा चेंज हुआ तो
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: दे
1: जैसे
0: छींक
1: ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है उनको छींके पे छींके आ रही हैं, इवन फ्रिज खोल रहे हैं तो छींके आ रही हैं। कुछ भी है, अब नॉर्मल हमारे घर के हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही
0: जी
1: है।
0: मैडम, कुछ श्रोता शायद जुड़ने लगे हमसे।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: स्वागत है। हेलो,
1: हेलो सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: मैं दामिनी बोल रही हूँ, एक लास्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से।
0: दामिनी, अलीगढ़ से। ठीक है, उम्र बता दो बेटा।
1: सर मेरी उम्र 16.5 साल है।
0: बताओ, 16.5 साल में आपको क्या परेशानी हो गई है?
1: सर मेरे कान, दोनों कानों से पानी आता है, वो मैं यदि कोई ठंडी चीज खा लूँ या खट्टी चीज खा लूँ तो तभी पानी आता है, और अब भी गर्मियों में पानी लगातार आ रहा है सर।
0: मैडम आपसे बता
1: जी
0: रही, मैडम
1: बच्चे,
0: बता
1: देखो अगर आपके दोनों कानों से पानी आता है सबसे पहले आप एक ENT, एक अच्छे ENT डॉक्टर को दिखाओ, तो कहीं ना कहीं पानी आने का रीजन आपको ये हो सकता है कि आपके दोनों कानों में छेद हो सकते हैं। तो ये सर, मैंने एक डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने बताया कि पर्दे पर गराब आ चुका है, उनकी दवाई भी खाई मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ पर्दे पे मुझे।
0: क्या आ चुका है? गलाब।
1: गला, मतलब आपके पर्दे खराब हो गए, मतलब उसमें छेद आ गया है। तो बच्चे आपको देखो अगर 16.5 साल में आपको ये दिक्कत है तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप ऑपरेशन कराएं इसका, और ये इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपके नाक में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके दोनों के पर्दों में, अगर दोनों पर्दों में दिक्कत आई है इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं नाक की भी एलर्जी है, क्योंकि नाक कान गला तीनों चीज एक ही ऐसी चीज है जो एक ही साथ को जोड़ती है, एक ही ट्यूब से जोड़ती है, इसलिए एक ही डॉक्टर बनाया गया है नाक कान गले को।
0: हाँ
1: ठीक
0: हाँ
1: है, हाँ
0: तो ये दामिनी कितने दिन से आपको समस्या आई है?
1: सर, ये मुझसे बहुत दिन से होगी, कम से कम 4 साल हो चुके हैं मुझे इस
0: तो
1: प्रॉब्लम
0: सोलह
1: को।
0: साल में से 4 साल, मतलब 12 साल से आपकी, 12 साल जब उम्र थी तब से ही समस्या
1: हाँ
0: है।
1: सर, ये मेरे पहले बचपन में भी हुई थी, जब मुझे दवाई डाल दी थी तो तब तो बंद हो गया था, मगर अब ये दोबारा से प्रारंभ हो गया है।
0: मैं 1 मिनट में मैडम, क्या ऐसी कंडीशन, क्या ये जन्मजात
1: हाँ जी, ये
0: कोई है?
1: जन्मजात से हो सकती है। आजकल मैं सलाह दूंगी जितनी भी यंग मदर्स हैं जो यूजली अपने बच्चे को लेट के फीड कराती हैं तो लेट के फीड ना करें, हमेशा बैठ के और सर ऊपर करके फीड कराएं, क्योंकि जब

0: छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो कान और नाक की जो ट्यूब होती है वो बहुत ही छोटी होती है, थोड़ी वाइडर होती है, तो जो यूजली बच्चा छोटा बच्चा है सक करना नहीं आता है, तो जो वो पान जो भी दूध है पानी है वो बच्चे के पीछे कान के
1: कान
0: पीछे
1: की
0: जा रहा
1: तरफ
0: है,
1: चला
0: जिससे
1: जाता
0: प्रेशर बढ़ रहा है और बच्चे के कान में छेद हो जा रहा
1: है।
0: है।
1: तो अब ये तो थोड़ा सुन के मुझे भी ये कि इस बच्ची की उम्र तो अभी 16 साल
0: सोलह
1: है,
0: साल
1: आपने कहा कि ऑपरेशन कराइए, तो क्या जो समस्या है वो रेक्टिफाइड हो जाएगी?
0: हाँ जी, अगर
1: जी
0: ये नहीं कराएंगे तो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि
1: ओ
0: एक कान का एक ऐसा सिरा है जो हमारे सर के ऊपर सिरे को जोड़ता है, अगर आप बच्चे सर अगर समय से पहले आप नहीं कराओगे तो आपके क्या पता आपको टाइम से पहले चक्कर आने लग जाएं, आपके कानों में घंटी जैसी आवाज आने लगे, आपके नस पे फर्क आ जाए, तो वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अभी आपके कान के पर्दे का जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, तो मेरी सलाह ये है कि आप जाइए और ऑपरेशन
1: एक
0: कराइए।
1: अच्छे डॉक्टर, एक
0: हाँ, अच्छे
1: अच्छी,
0: डॉक्टर से,
1: हाँ,
0: हाँ जी
1: मिलके
0: जी
1: और
0: जी
1: इनकी समस्या का समाधान हो
0: जी
1: सकता है।
0: हाँ
1: बस ये कि अभी पहल तुरंत ही करनी
0: हाँ जी,
1: पड़ेगी,
0: तुरंत इसको अवॉइड ना करें
1: ना करें। ठीक है
0: जी।
1: दामिनी। एक दूसरे श्रोताए, हेलो जी, हेलो। हाँ, शायद लाइन से कट गए उसमें। अब मैडम आपने कहा जैसे फीट कराने की समस्या,
0: जी
1: कुछ बच्चों के हमने देखा होगा कि अक्सर कानों में से वो स्राव आता रहता है,
0: हाँ
1: कुछ
0: जी,
1: बच्चों के नाक भी अक्सर चलती
0: चलती
1: रहती है,
0: रहती है।
1: तो एक बच्चे की जो केयर है उसमें मौसम बहुत काउंट नहीं करता, लेकिन ये क्या थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से
0: हाँ
1: समस्या
0: जी,
1: है?
0: मदर क्या होती है, यूजली थोड़ा सा रात में फीड कराने के लिए लेट के फीड करा देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर है, नाक बंद रहना, थोड़ा एलर्जी कॉम्पोनेंट बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो मुंह से सांस लेता है, उसको नाक से सांस लेना पता ही नहीं, समय के साथ वो नाक से सांस लेता है।
1: जी, एक श्रोता जुड़े, हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार भैया, नाम बताओ।
2: अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ मैं,
1: अर्जुन सिंह जी कहाँ से?
2: मथुरा से।
1: मथुरा से। बताओ समस्या।
2: तो हमारे बच्चे के बचपन से ही नाक में खून निकल जाते हैं खेलते खेलते, स्कूल में भी।
1: कितना उम्र है बच्चे की?
2: बच्चे की उम्र है 9 साल।
1: 9 साल है, ठीक है। मैडम जो नक्सीर जैसे
0: हाँ
1: चलती
0: जी, हाँ
1: है
0: जी,
1: तो की क्या
0: ये आपकी गर्मी में ही चलती है कि हर
1: जाड़ों
0: टाइम
1: में
0: बच्चे
1: भी?
0: के रहती है?
2: कभी कभी भी चल जाती है,
1: कभी
2: 12 महीने 3 3 दिन कभी भी चल जाती है।
0: अच्छा, देखो मेरी सलाह ये है कि आपका 9 साल का बच्चा है तो यूजली क्या होता है, 9 साल के बच्चे में, या जो लड़का है आपका,
2: लड़का है?
0: हाँ जी, तो
2: हाँ
0: लड़के में क्या
2: लड़का।
0: होता है, एक छोटी सी बीमारी होती है जो नाक के पीछे के हिस्से में एक मांस बढ़ जाता है,
1: हाँ
0: ठीक
1: ठीक है,
0: है?
1: सुने ना जी। हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी, जब
1: जी
0: वो नाक से जो मांस बढ़ जाता है उस कारण से बच्चा जब भी कोई ऐसा काम करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, या वो नॉर्मल भी बैठा है तो वो हो जाता है, तो उससे मेरी सलाह है कि आप जाइए, एक प्रॉपर सीटी कराइए नाक का, और उसमें देखिए कि नाक के पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मांस तो नहीं।
2: कहाँ पर कराएं मैडम?
1: वो नाक का सीटी तो जहाँ सीटी स्कैन होते हैं,
0: हाँ
1: एक
0: जी,
1: अच्छे पहले आप ENT सर्जन से मिल लीजिए, जो भी आपके
2: अच्छा
1: आसपास हो, एक अच्छा हॉस्पिटल जरूर देखिए, अच्छा जरूर देखिए। इसमें हम
0: जी,
1: बार बार अपने प्रोग्राम में, चाहे किसी भी समस्या पे बात कर रहे हो, हम इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं जागरूकता की वजह से, कि एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छे से मतलब जो जानकार हो, जो व्यावहारिक हो, किसी सामान्य कोई ऐसी वैसी डिग्रियां लेके ना बैठा हो,
0: जी
1: ठीक है? तो आप
2: ठीक
1: विशेषज्ञ को दिखा लीजिए, आप ENT को, ठीक है
2: ठीक
1: सर? जी। तो अब मैडम जैसे हम उसकी खुजली की बात कर रहे थे, आपने पानी की बात की
0: जी
1: इसमें, तो ये बड़े लोगों की भी, कुछ लोगों की आदत है कि कान खुजाते ही रहेंगे, नाक खुजाते ही रहेंगे,
0: जी
1: तो वो आदत या कुछ समस्या ऐसी है जो प्रोलोंग कर रही है?
0: पहले उन्हें समस्या होती है कि उनको कान खुजाना है, यूजली क्या होता है हमारे कान में वैक्स बनता है जो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो वैक्स बनता है और वो निकलता है, वो भी सब एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन किसी किसी को वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि रोज हमेशा कान में कुछ ना कुछ खुजाने की आदत पड़ जाती है, तो ये है कि बिना मतलब कभी ऐसे कान में कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कान में छेद भी इसलिए पाए जाते हैं, कोई तिल्ली से मार लेता है, कोई चाबी से मार लेता है, तो अननेसेसरी ट्रॉमा ना करें अगर
1: नहीं, कई
0: खुजे।
1: बार तो हमने देखा है कि हम ऑफिसों में काम करते हैं,
0: जी जी
1: हमारे सामने आलपिन जैसी चीज होती है,
0: जी
1: हम उसे कान में भी डाल
0: कान में
1: लेते हैं, हम
0: डाल लेते
1: उसे
0: हैं,
1: दांत में भी डाल
0: जी
1: लेते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: और ये देखते नहीं वो कितनी शार्प
0: कितनी
1: है,
0: शार्प है,
1: मेटल
0: क्योंकि
1: की
0: हमें नहीं पता
1: है।
0: कि कान का पर्दा आपके कान से जो बाहरी स्तर है वो कितना दूर है, तो ये है कि किसी को नहीं पता कि कहाँ पे कितना उसमें है, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़ते हैं।
0: जी।
1: हेलो जी,
2: हेलो,
1: नमस्कार भैया,
2: नमस्कार,
1: नाम
2: मोहम्मद
1: बताइए।
2: मोहम्मद सईद अब्बासी बोल रहा हूँ, बुलंदशहर से। सर कैसे
1: बस
2: हैं?
1: बढ़िया बढ़िया, दुआएं अब्बासी जी।
2: और डॉक्टर
1: हाँ
2: साहब से बात हो सकती है
1: हाँ डॉक्टर
2: क्या?
1: साहब, बिल्कुल बैठिए मेरे
0: हाँ
1: बगल में,
0: जी,
1: आप समस्या बताइए अपनी।

0: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी
0: डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे कान से पानी चलता है।
1: जी।
0: अब मैंने कई बार डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अच्छी तरीके से देखा भी है तो उनको समझ में नहीं आ रहा। मेडिसिन दे देते हैं, खा
1: जी
0: लेता हूँ तो कुछ दिन के लिए टाइम मतलब रुक जाता है,
1: जी जी
0: फिर पानी एकदम से चलने लगता है।
1: अच्छा, कभी आपके डॉक्टर ने बताया है कि कान में कोई छेद है या कुछ इस तरह
0: नहीं
1: से
0: नहीं
1: पर्दे में
0: नहीं
1: कुछ?
0: इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया।
1: कभी एक ना, आप मेरी सलाह है कि आप एक एंडोस्कोपी कराइए। कान की भी एंडोस्कोपी होती है, जो कान का जो है पर्दा कैमरे के थ्रू देखते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमें दिक्कत जो है कान के ऊपरी स्तर में होती है, लेकिन हमारा जो विज़न होता है वो नीचे स्तर में होता है। मे बी आपको
0: हाँ जी,
1: दिक्कत हो कि थोड़ी बड़ी ज़्यादा की लेवल पे हो रही हो, कि आपका कान का रेशा आता है सूखता है। तो एक सीटी, नॉर्मल सीटी कराइए कान का, और एक
0: हाँ वो
1: कान की
0: कराया था,
1: एंडोस्कोपी। हाँ जी, तो कुछ सीटी में आया?
0: वो एम्स में कराया था मैंने, कुछ नहीं आया उसमें।
2: अच्छा, कुछ भी नहीं आया?
0: अब वो ये बोल रहे हैं कि पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, पानी जाता है आपके कान से। हाँ
2: नहीं, डॉक्टर ऐसे तो नहीं बोलेंगे, आप जाइए दोबारा दिखाइए। एक अगर आप
0: नहीं,
2: वहां से संतुष्ट नहीं अब्बासी जी, तो किसी
0: है ना,
2: अपने शहर के डॉक्टर को दिखाइए।
0: वहां पर ना तीन चार डॉक्टर इकट्ठे होके
2: हाँ,
0: उन्होंने
2: वहां
0: मीटिंग
2: ग्रुप
0: की
2: में ही
0: है।
2: स्टडी
0: जी जी
2: होती है,
0: जी जी
2: बड़ी
0: हाँ
2: स्टडी होती
0: मीटिंग,
2: है
0: हाँ
2: जी।
0: उन्होंने बहुत ज्यादा देखा वाली करी, कहने लगे
2: हाँ
0: हमारे को समझ ही नहीं आ रहा ये पानी चल कैसे रहा है इनका। मतलब सफाई वगैरह कर दी थी,
2: हाँ
0: मेडिसिन दे दी थी मेरे को, फिर थोड़ा रिलीफ मिल गया, और
2: हाँ
0: फिर करीब 15-20 दिन बाद फिर वही
2: नहीं तो
0: कंडीशन रही
2: आपने ये
0: उनकी।
2: नोटिस किया कि कोई मौसम विशेष में आता हो किसी?
0: ना ना ना
2: अच्छा
0: ना ना, ना, ना ऐसा कुछ
1: अच्छा
0: नहीं है,
1: जब आप
0: रेयरली टाइम।
1: कभी ऐसे कुछ बाइट ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कि आपने नोटिस किया कि जब पानी आ रहा है, कुछ खाते वक्त पानी आ रहा है, या कहीं
0: नहीं
1: और
0: नहीं नहीं
1: सूजन
0: पहले
1: है?
0: जैसे जैसे लेटा हूँ, सो रहा हूँ, मैं सोते सोते एकदम से पानी चलने लगता है।
1: ठीक है। वो पानी किस कलर
0: पहले
1: का
0: पहले
1: कब?
0: ना व्हाइट कलर था, पहले ना मेरी नोज से चलता था, अब वो नोज से
1: ओके
0: चलना तो बंद हो गया है, अब कान से चलने लगा है।
1: अच्छा, तो देखो
0: ओके
1: आपकी कहीं ना कहीं, तो देखो कान के पर्दे में कोई छेद है। एक बार आप नाक का सीटी और कान का सीटी कराइए। नाक में यूजली क्या होता है, जब हमारे नाक से और कान का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो पानी कान से आ जाता है, और कुछ समय के बाद में कान का जो पर्दा है वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। दवाइयाँ आप
0: अच्छा
1: खाएंगे तो
0: अच्छा
1: आपका कान का पर्दा ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत छेद करके वो आ जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये है कि आपकी, इसका मतलब आपकी समस्या कहीं ना कहीं वो नाक में है।
2: जी, तो
1: जी
2: थोड़ा सा उसको अब्बासी
1: हाँ
2: जी डाइवर्ट करिए और
0: जी
2: उसको अब कान की जगह नाक की तरफ लेके आइए। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा कि पता
1: वो
2: नहीं,
1: भी
2: समझ
1: एम्स
2: में नहीं आया,
1: जैसा।
2: एम्स जैसा। लेकिन
0: एक्चुअली
2: आप
0: ना आप तो जानते हैं, एक्स इतना
2: हाँ,
0: एम्स इतना बड़ा
2: वहाँ
0: हो गया,
2: वहाँ
0: वहाँ
2: बड़ा
0: करने लगे होते
2: बड़ा वो रहता है उसमें। लेकिन हमारी शुभकामना है कि आप जरूर ठीक होंगे और आपको अच्छा फायदा मिलेगा उसमें। मैडम, एक व्हाट्सएप से संदेश मिला है, आप प्रकाश जैन जी हैं, 56 साल उम्र है, लातूर महाराष्ट्र।
1: जी।
2: हमारे कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया समय एप्स पे
1: ओके
2: सुना जा रहा है,
1: जी
2: तो आप इस समय समझिए कि पूरे भारत में आपको सुन रहे लोग
1: ओके
2: हैं। गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने से तकलीफ होती है, गले में खराश हो जाती है, गले के लिए क्या उपाय करें? ये प्रकाश जैन जी जानना चाहते हैं, 56 साल उम्र है,
1: बेसिकली
2: तो पहले तो
1: बहुत
2: कोल्ड ड्रिंक ना पिए। जी
1: ठंडी
2: जी
1: चीज़ों का परहेज करें।
2: जी जी
1: देखो, अगर किसी को किस चीज़ से एलर्जी है तो वो
2: हाँ
1: है, उसके लिए कुछ है नहीं, ब्लड
2: जी
1: में एलर्जी है वो, तो हम उसमें
2: हाँ
1: कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गर्मियों में मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने से, क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आप गर्मी से एकदम ठंड की तरफ में आ रहे हो, तो ज़्यादा चिल्ड ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाली भी पी सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, कि गला ना खराब हो तो मैं कहूँगी कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज़ें अवॉइड करें।
2: थोड़ा अवॉइड
1: हाँ
2: करिए, थोड़ा
1: जी
2: कम ठंडी पी
1: जी
2: लीजिए। एक जीके पारासर जी हैं, परमार जी हैं, गांधीनगर गुजरात से लिख रहे हैं कि कान में खुजली आती रहती है, कान की सफाई भी अच्छा लिख रहे हैं कि बहुत से लोग सफाई से डरते हैं, चाहे
1: जी
2: दांतों की हो, चाहे कान की हो, चाहे नाक की हो, लेकिन ये लिख रहे हैं कि क्या करवाई जा सकती है क्या है
1: हाँ
2: इसमें?
1: जी, खुजली होना एक अलग चीज़ है, और कान में कुछ होना, मैल होना, गंदगी होना, सफाई उसकी होगी जब मैल गंदगी होगी। अगर
2: हाँ
1: खुजली है तो उसकी सफाई नहीं होगी।
2: हाँ
1: उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली क्या करो, एक घर में जो पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन के नाम से, जो व्हाइट कलर की पहले चलती थी छोटी सी, आप उसे लीजिए। आपकी जो सबसे लिटिल फिंगर है, छोटी फिंगर है, उसमें आपको और डिप कीजिए, और अपने कान के बाहरी स्तर पर लगाइए, बिल्कुल अंदर नहीं हाथ डालना है कान के अंदर, बिल्कुल कोई ईयरबड्स यूज़ नहीं करना, सिर्फ बाहर की तरफ डालिए। और प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है, कोई भी तेल गर्म करके, लौंग जो भी हम डालते हैं वो ना डालें,
2: बहुत
1: उससे
2: सारी
1: आपके
2: जो
1: पर्दे में,
2: परंपरा
1: हाँ जी,
2: हाँ
1: उससे आपके
2: खरीदना
1: पर्दे में छेद होने की पूरी पूरी संभावना होती है। बेसिकली वेसलिन लीजिए, या हल्का सा सरसों का तेल ले लो, वो भी
2: हाँ।
1: हल्का सा, बस आपको बाहरी स्तर पर लगाना है।
2: अब यहाँ कुछ श्रोताओं का कहें या कुछ व्यक्तियों का, जैसे
1: जी
2: हम ख्याल कहते हैं आपने अभी कहे, कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ हम परंपरा से करते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी ने की, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, तो अब हमें क्या होगी? जैसे आंखों में
1: जी
2: काजल लगाना।

0: हाँ जी
1: तो क्या ऐसा लगता है कि भाई दादी नानी को समस्या अगर उनको हुई होगी तो हमें तो नहीं पता?
0: जी हाँ जी। और दादी नानी के खाने पीने की चीज़ें और हमारे खाने के वातावरण बहुत ही डिफरेंट है।
1: सही
0: उनका
1: बात,
0: वातावरण, हमारा वातावरण, उनके खाने, पहले लोग घी अच्छे से खा लेते, आज के लोग घी नहीं खा
1: नहीं
0: सकते
1: खा
0: हैं।
1: पा रहे जी,
0: तो
1: सही बात।
0: एलर्जी तो है,
1: हाँ, चीजें बदल रही हैं
0: बदल रही
1: वैसे
0: है मौसम,
1: आप।
0: बदल, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हमारी आगे जनरेशन आएगी, उनमें और दिक्कत
1: शायद
0: होगी।
1: इसका ये भी है कि जो चीज़ों से हमारा एक्सपोजर नहीं है, पहले इतना बाहर हम रहते थे कि हर मौसम में कोई
0: जी
1: कोई फसल कट रही है तो कोई हमारे
0: बाहर
1: आसपास
0: जा रहे
1: फूल
0: हैं,
1: हो रहे हैं,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: हम एक्सपोजर के तरह एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन होता
0: जी
1: रहता
0: जी
1: था,
0: हाँ जी।
1: तो एलर्जिक नहीं
0: बेसिकली
1: होते थे।
0: यही है
1: हाँ
0: कि आप एक्सपोजर, आपको मिल रहा है तो आपकी बॉडी वो इम्यून हो चुकी है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: टाइम होने में समय लगता है।
1: एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो हेलो, चलिए। तो अब इसमें जैसे नेचुरल वैक्सीनेशन की बात
0: जी
1: चलती है, उसमें एक्सपोजर नहीं है, अब हम बच्चों को इतना हाइजीनिक उसमें
0: रिस्ट्रिक्ट
1: रखते
0: करके रखते
1: हैं,
0: हैं
1: तो ये भी एक, क्या आप लगते हैं कि जो आउट एक्टिविटी है, बच्चा
0: जी।
1: पढ़ने जाए फिर घर से बाहर थोड़ा खेल ले,
0: हाँ जी
1: उसमें सर्दी गर्मी का अगर वो आनंद ले पाता है, तो पेरेंटिंग के स्तर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी जरूरी है?
0: वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को हमेशा इंडोर गेम्स में ना लगा के रखें, हमेशा बाहर रखें, हमेशा बच्चे को मोबाइल ना दें, मोबाइल से उसकी आंखें, तो जैसे पता ही है कि आंखें में इफेक्ट आता ही आता है। बच्चे को बाहर रखें, बाहर रहेंगे तो उनको पॉलन से, उनको बटरफ्लाई से, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, उन सब से उनको रहेगा, तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो, उन सब से एक्सपोजर उनको मिलना है।
1: जी जी
0: तो मेरा
1: जी
0: यह है कि बच्चा बाहर भी खेले।
1: हाँ, मतलब
0: जी
1: एक उसको नेचुरल
0: जी
1: स्टेमिना
0: जी
1: बनना
0: हाँ जी।
1: चाहिए,
0: क्योंकि
1: हम
0: आफ्टर ऑल बच्चे को बाहर जाके
1: सफाई
0: काम
1: और
0: करना ही है,
1: हाइजीनिक के नाम पे हम उसे बंद नहीं कर
0: बंद नहीं
1: सकते,
0: कर
1: तो
0: सकते
1: उसको,
0: हैं।
1: उसकी नेचुरल उसको
0: नमस्कार,
1: क्यों क्यों वो करे। हेलो, बताइए भैया।
2: नमस्कार जी। गिरीश
1: नमस्ते, नाम बताओ।
2: है भैया, मथुरा से बोल रहा हूँ।
1: मथुरा से, क्या नाम बताया?
2: गिरीश, गिरीश
1: गिरीश। गिरीश जी बताइए ना, उम्र बता दीजिए और समस्या।
2: 40 साल है, मैं छींकता हूँ तभी जुकाम हो जाता है, कभी भी छींक लेता हूँ और छींक ज्यादा आती है।
1: ओके, छींकें आ रही हैं, तो वही एलर्जी के ना।
0: हाँ जी, ये आपको एलर्जी कॉम्पोनेंट है। आप एक नॉर्मल, एक छोटा सा टेस्ट है, सीरम आईजी लेवल, आप वो कराइए, उसमें आपके कितना आईजी लेवल आपका इंक्रीज हो रखा है वो कराइए, उससे आपको पता चलेगा कि एलर्जी कॉम्पोनेंट क्या है आपका। उसके लिए आपको मे बी स्प्रे यूज़ करना पड़े कुछ समय के लिए, तब
1: इसमें
0: वो
1: अब
0: स्प्रे।
1: जैसे मैडम, जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, शहरों में काम भी कर रहे हैं, कम
2: छींकते
1: इकोनॉमी,
2: समय जुकाम हो जाता है।
1: जुकाम हो जाता है आपको ना?
0: हाँ जी
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: हर मौसम में रहता है, सर्दी गर्मी बारिश,
2: हर मौसम में कोई सा भी हो।
1: तो फिर आप एलर्जिक हैं, आप थोड़ा सा दिखाइए अच्छे डॉक्टर
0: जी जी
1: को, ठीक है?
2: कहाँ पर खाना होगा?
1: कोई अच्छा डॉक्टर जो आपको, हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, लेकिन सबसे आपके सरकारी अस्पताल है वहाँ आप संतुष्ट नहीं है, आपके आसपास हो, और आपके शहर में भी बहुत अच्छे अस्पताल है जिसका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो भी आपके बीच में है, सिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, मैडम से भी मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है? मैडम, ये ललितपुर से संतोष नामदेव जी हैं, आप लगते हैं मेरा एक दोस्त है जिसकी उम्र 38 वर्ष है, उसे एक साल में 4 से 5 बार कम से कम उसका कान पक जाता है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर मूंगफली का सेवन करने से ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, 2-3 दिन वो रहता है और फिर अपने आप सूख जाता है, कई डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन संपूर्ण इलाज नहीं हो पाया, ये समस्या जन्म से है, इसके निवारण के लिए क्या करूं? मतलब एक जन्म चाहिए
0: बेसिकली
1: होता
0: इसके
1: है
0: कान में
1: फिर।
0: छेद है, यूजली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, कान सूख
1: हाँ
0: जाता है, उसको अवॉइड कर देते हैं। तो
1: हाँ
0: कृपया करके इस चीज़ को अवॉइड ना करें।
1: मतलब
0: दवाई का काम है कान को सुखाना, ना कि कान के पर्दे को भरना। ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कान का पर्दा नहीं भरेगा। जब भी
1: और अब
0: आपको,
1: तो इनकी उम्र भी 38 साल हो गई
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: तो
0: करा
1: अब तो कम से
0: सकते
1: कम
0: हैं, अब तो कम से कम करा
1: करा
0: सकते
1: दीजिए।
0: हैं जी।
1: तो नामदेव जी, अब आप अपने दोस्त को सलाह दीजिए, 38 साल मतलब स्वयं वयस्क हैं, निर्णय
0: जी
1: ले सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अपनी समस्या बताएं, निश्चित तौर पे अब विज्ञान इतना बदल गया है
0: बदल
1: कि
0: गया।
1: आपको समाधान मिलेगा। हेलो जी,
2: हेलो,
1: नमस्कार,
2: राधे राधे साहब,
1: राधे राधे भैया, नाम बताओ।
2: मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम, गांव सुनरख बिंद्रावन।
1: अच्छा, सुनरख वृंदावन से बोल रहे हैं, वेद प्रकाश जी बताइए क्या समस्या?
2: सर, मेरे गाय नजला चलता रहे है, बंद नहीं होता है ये 12 महीना।
1: हाँ डॉक्टर साहब, ये नज़ले की समस्या तो लोगों को है आजकल, शायद क्या साइनस और
0: मौसम,
1: नज़ला एक ही बात
0: हाँ
1: है?
0: जी, साइनस नज़ला एक ही बात
1: हाँ,
0: है।
1: तो पुराने लोग इसको नज़ला बोलते हैं
0: हाँ,
1: आजकल,
0: यूजली
1: साइनस।
0: नज़ला बोल देते हैं। जी।
1: हाँ, तो बताइए क्या है?
0: देखिए, बस ये है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, पहले तो आप नॉर्मल एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आपकी पूरी प्रॉपर आपकी

0: इन्वेस्टिगेशन होगी जिसकी वजह से आपको नज़ला है, जिसमें सीटी आएगा कि साइनस में क्यों दिक्कत तो नहीं है जिस कारण से नज़ला हो रहा है, प्रॉपर स्प्रे चलेगा आपका जिसकी वजह से आप ठीक हो जाओगे, और थोड़ा अवॉइडेंस जिससे आपको दिक्कत है वो थोड़ा कम करें, चाहे वो पानी से हो, चाहे इवन आजकल मटके के पानी से भी, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं कि मटके के पानी से भी दिक्कत हो रही है लोगों को,
1: हाँ, जबकि पहले नहीं,
0: पहले मटके के पानी से ऐसा कुछ
1: मटके
0: था
1: का
0: नहीं।
1: पानी हम
0: जी
1: पीते थे, सही
0: हाँ जी
1: बात है। ठीक है, दिखा लीजिए इसमें वेद प्रकाश जी, हाँ, इसको आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और बार बार हो रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, तो आप कर लो। मैडम एक ये नासिर शेख जी हैं, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार सर्दी होती है और नाक लाल हो जाती है, इसका क्या इलाज हो
0: ये
1: सकता है?
0: टिपिकल एलर्जिक सिम्टम्स है कि आपकी नाक लाल हो जाती है और आपको बार बार छींकें आ रही हैं और बार बार सर्दी हो रही हैं। सलाह है कि एक छोटा सा नॉर्मल सा टेस्ट है, सिर्फ IgE लेवल आपको कराइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना एलर्जिक कॉम्पोनेंट है आपके ब्लड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाइयाँ चल जाएंगी तो
1: जी,
0: ठीक हो जाएगा।
1: इसी तरह की समस्या अभिषेक लिख रहे हैं, 24 साल की उम्र है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, मुझे कौन सी जांच या इलाज से ज़रूरत
0: हाँ
1: है?
0: जी,
1: तो ये
0: सेम
1: वही,
0: सीटी स्कैन कराइए जो कि हमारे
1: हाँ,
0: नाक का है, और सेम सीरम IgE लेवल है जिससे हमें अपने सारे एलर्जिक कंपोनेंट हमें पता चलेंगे।
1: जी,
0: जी
1: एक श्रोता और जुड़ रहे हैं उससे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार साहब,
1: नमस्ते भैया, नाम बताइए।
2: मेरा नाम तो हेमंत है, मैं धौली का हूँ, मथुरा से बोल रहा हूँ
1: हेमंत जी धौली प्यार से, बताइए समस्या।
2: जी। सब सर्दी हो गर्मी हो, सब मेरी नक्की जल जाती है सब।
1: नक्की नक्की, हाँ,
0: जी
1: नक्सी
0: उम्र
1: जो,
0: आपकी सर कितनी है?
2: मेरी सब 52 है।
0: 52 ईयर्स है सर। 52 ईयर्स में नक्सी चलना, दो रीज़न हो सकते हैं कि आपका BP हायर साइड पे तो नहीं रह रहा है, कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, ठीक है,
1: ठीक है,
0: प्रॉपर BP चेक कराइए, एक तो ये रीज़न हो सकता है। एक नाक के यूजली बच्चों में भी बड़ा होता है, और इस उम्र में आके बड़ों के नाक के पीछे भी मांस बढ़ जाता है, तो नाक का मांस बढ़ना थोड़ा कम हो सकता है लेकिन BP की समस्या हो सकती है, तो आप BP चेक कराइए और BP की दवाइयाँ रेगुलर खाइए।
2: ये कहाँ पे होगा? मैं
1: क्या आपका ये चेक,
2: जिला अस्पताल है।
1: हाँ, जिला अस्पताल कर लिए, धौली प्याऊ रहते हैं, वहाँ भी डॉक्टर है, और आप तो हाईवे पे है, आप सिम्स भी जा सकते हैं। अभी हमने हेमंत जी एक नक्सीर पर पूरा आधा घंटे का कार्यक्रम किया था, शहर के बड़े वरिष्ठ सर्जन हैं जो है, आपने सुना होगा, तो उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई कि
0: जी
1: नक्की से लोग घबरा जाते हैं,
0: घबरा
1: नाक
0: लेते
1: से
0: हैं
1: खून आता है, अगर ये खून नाक से ना के ऊपर
0: सर में। हाँ
1: सर
0: जी
1: में
0: हाँ
1: आ गया
0: जी
1: होता
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: बहुत
0: जी हाँ जी,
1: समस्या हो
0: बहुत
1: जाती
0: समस्या
1: है,
0: हो जाती है।
1: तो इससे घबराए नहीं,
0: हाँ
1: बीपी
0: जी
1: हो सकता है, ये बात सही कह रही मैडम, 52 ईयर वो है, तो आप इसको एक तो बीपी चेकअप करवा लीजिए और नाक का सीटी करवा लीजिए, ठीक है,
2: अच्छा
1: हाँ, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए, समस्या आपकी दिखा लीजिए, इसे घबराइए मत। मैडम सुरेश राठौर हैं, आप लिख रहे हैं, मेरे माँ के कान में सीटी बजती, आपने कहा था ये थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई,
0: ये उम्र ज्यादा
1: समय
0: हो
1: पे
0: गई है।
1: ध्यान नहीं दिया,
0: हाँ जी हाँ जी
1: और चक्कर भी आते हैं, उपाय बताएं इसमें।
0: ठीक। अगर कान से सीटी आ रही है और चक्कर आ रहे हैं, अगर कान में छेद नहीं है तो एक अलग चीज है, अगर कान में छेद है तो वो उस छेद के कारण हो रहा है, लेकिन अगर कान में छेद नहीं है तो उम्र के कारण आ सकता है जिसकी वजह से नसों पे दबाव आ चुका है, तो अगर उनको सुनाई देने में भी दिक्कत है, अच्छा एक अच्छा हेयरिंग एड लगवाइए जिससे वो ठीक हो जाएंगे, सीटी की आवाज़ भी आने कम हो जाएगी।
1: जी, ओल्ड एज में मैंने ये बड़ी समस्या है
0: जी
1: बुजुर्गों की, कोई जैसे
0: जी
1: सीटी, ये सीटी की बात कर रहे हैं, कोई घंटी की बात
0: हाँ
1: कर रहे हैं,
0: जी
1: कोई अलग अलग तरह से बताता है कि मेरे ऐसा हो रहा है, और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी समझ में नहीं आता कि इनको क्या हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है
0: हाँ जी, ये
1: बुजुर्गों के
0: जेन्युइन
1: लिए।
0: प्रॉब्लम है बुजुर्गों के लिए, जेन्युइन प्रॉब्लम है। यूजली समय के साथ में हमारी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, वो सब कम हो जाती है, हमारी नसें कमजोर होने लग जाती हैं। अगर हम उन्हें बोलेंगे आप मशीन लगा लीजिए तो थोड़ा वो अवॉइड करते हैं कि मशीन लगा लीजिए, कि क्या बोल रहे हैं, तो मशीन लगाना भी एक इलाज है जिससे आपकी सीटी की आवाज़ कम हो
1: जिसको
0: जाएगी।
1: अवॉइड करते हैं
0: हाँ जी
1: अक्सर
0: हाँ
1: लोग जो
0: जी
1: है, तो जो एड हमारे पास है, घर के जो देख रेख करने वाले जो लोग हैं
0: जी
1: उनको भी देखना चाहिए
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: अगर
0: हाँ
1: कोई
0: जी
1: बुजुर्ग कुछ कह रहा
0: कह
1: है
0: रहा है
1: तो
0: तो
1: हम
0: प्लीज।
1: उसको एक अच्छे
0: हाँ
1: डॉक्टर
0: जी हाँ
1: पास
0: जी
1: ले जाएं, जो
0: जरूर
1: चीज़ें हैं समझाएं, तो वो ठीक
0: जी,
1: रहेगा।
0: क्योंकि
1: और
0: सीटी बजने की एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद महसूस करेगा, वो किसी को बता नहीं सकता, कोई और सुन नहीं सकता है,
1: वो घबराहट भी होती है,
0: घबराहट भी होती है,
1: घबराहट,
0: इवन उसको छोटी छोटी चीज़ से, जब वो सो रहा होगा एकांत में सो रहा होगा तो वो नहीं सो पाएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत
1: और
0: है।
1: वो जब वो बता रहा होता कोई बुजुर्ग,
0: जी
1: तो उसके चेहरे के भाव देखिए, वो समस्या से बड़ा वो भाव व्यक्त
0: भाव
1: करता
0: कि
1: है
0: मैं सो
1: कि
0: नहीं पा रहा,
1: हाँ,
0: रात
1: कि
0: भर शव
1: मेरी
0: शव की
1: समस्या
0: आवाज़ आई है मेरे
1: को
0: कान
1: आप
0: में।
1: समझिए,
0: जी
1: मेरी
0: जी जी
1: समस्या पे आप ध्यान
0: जी
1: दीजिए,
0: जी
1: और बाकी लोग उसको नजरअंदाज
0: करते हैं।
1: तो हमें ये
0: एक सुनाई का टेस्ट है, पीटी जिसको बोलते हैं, वो कराइए, उसमें आपको पता चल जाएगा।

0: की कितनी क्षमता कम हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाई चलेंगी, हियरिंग एड है तो हियरिंग एड ऐड हो
1: जी
0: जाएगा।
1: जी समय समाप्त हो रहा है कुछ चलते चलते, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हो सकती हैं और हम बहुत सारे प्रश्न भी आए, बहुत सारी समस्याएं हमने ली भी, लेकिन एक ENT के संबंध में जो एक डॉक्टर सलाह देता है व्यक्ति
0: जी
1: को, चाहे वो खान पान की, रहन सहन की या देख रेख की, वो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समराइज कर
0: जी
1: दें।
0: मेरा यही कहना है कि अगर आपके कान में छेद है, पानी है या कुछ भी है, सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, चक्कर है, इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि कान का हिस्सा दिमाग से जुड़ता है तो सीधे दिमाग पे असर करेगा। सेम इसी तरह से हमारे नाक का है, नाक का हिस्सा भी हमारे दिमाग में जुड़ता है, तो सारी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, चाहे नज़ला है, बार बार आँखों से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, कान में पानी आ रहा है, तो जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, क्या पता एक अच्छी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है।
1: जी, एक आजकल, पहले तो आयुर्वेद में तो उसे विरुद्ध आहार बोलते थे, लेकिन आजकल फैशन में है कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी खा
0: कुछ
1: लेते
0: भी खा
1: हैं,
0: लेते हैं
1: तो ये कितना हमारे ENT,
0: जी।
1: मतलब विशेषकर गले की अगर
0: गले
1: समस्या
0: की
1: हो।
0: समस्या है कि मेरे पास आते हैं कि मैडम मेरा गला बहुत खराब हो गया, मैं कुछ भी बाहर का खाता हूं तो गला, आपको पता है कि बाहर की चीजें कैसे बनती हैं, तो ये दिक्कत है, क्योंकि पहले का वातावरण शायद ये नहीं था कि ये सब चीजें लोग खाते थे, तो इसलिए पहले का वातावरण में सबसे
1: शुद्धता
0: ध्यान दी
1: थी,
0: शुद्धता
1: लेकिन
0: थी,
1: अब
0: आज की
1: उसको
0: डेट में नहीं है
1: हम देखते हैं कि हम अपने घर में मेंटेन नहीं कर पा रहे,
0: जी
1: क्योंकि चीज़ें ज़्यादातर घर में भी बाहर से आ
0: हाँ
1: रही
0: जी
1: हैं,
0: हाँ जी
1: और वो किस रूप में आ रही हैं,
0: जी
1: जब चीज़ें हम रिसर्च पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें कई बार घबराहट भी होती है,
0: घबराहट है हाँ जी
1: तो
0: हाँ जी
1: बहुत सावधानी है खाने
0: जी
1: पीने।
0: हाँ
1: और उसमें एक बार, जो चूँकि हम ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, छोटे बच्चों को फीडिंग के लिए एक बार और आप अपने मुँह से बताइए
0: हाँ जी
1: कि
0: मेरी सलाह ये है सभी माताओं से कि जब भी अपने बच्चे को फीड कराएं, हमेशा बैठ के फीड कराएं और थोड़ा सा ऊपर करके फीड कराएं, क्योंकि ट्यूब बहुत छोटी है, बच्चा बहुत नाजुक है, अगर बच्चे के शुरुआती दिनों में ही उसके कान से पानी आना शुरू हो गया तो समस्या बहुत बढ़ सकती है। बस लेट के फीड ना
1: हाँ,
0: कराएं,
1: मतलब उसका जो सिर
0: सर
1: वाला
0: है
1: हिस्सा है
0: थोड़ा सा
1: थोड़ा
0: ऊपर कर
1: ऊंचा
0: लिए,
1: कर
0: बैठ
1: लें,
0: के
1: पैर
0: आराम
1: के
0: से,
1: नीचे ले कर
0: हाँ
1: लें
0: बच्चा
1: उसमें।
0: उस वैसे भी सो जाएगा, माताओं को लगता है कि हम लेट के फीड कराएंगे तो बच्चा सो जाएगा, बच्चा अगर आप कराएंगे तो वैसे भी सोएगा
1: जी, तो थोड़ा अपने
0: जी
1: आराम, इसीलिए माँ को त्याग की मूर्ति भी कहते हैं, तो अपने
0: जी जी
1: आराम
0: जी
1: पे थोड़ा कम ध्यान दें, बच्चे के स्वास्थ्य पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैडम, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, श्रोता हमसे जुड़े, आपने जानकारी दी, इतनी सुझाव दिए, निश्चित तौर पे हमारे श्रोता इसको अगर अमल में लाएंगे तो
0: जी
1: काफ़ी कुछ उनको फ़ायदा होगा। और एक चलते चलते वही सलाह कि आप किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न
0: नज़रअंदाज
1: करें।
0: ना करें
1: कई बार जब हमारी बॉडी में कोई भी समस्या आती है, चाहे किसी भी लक्षण के
0: जी
1: रूप में, ये आज हम ENT की बात कर रहे हैं, कभी और की भी बात करते हैं, तो हर बार सलाह यही देते हैं कि कोई भी रोग का आना हमारे लिए एक तरह से
0: जी
1: सूचना है,
0: हाँ जी
1: तो उसको हल्के में न ले जाए, और हर चीज़ का इलाज है,
0: समस्या
1: डॉक्टर
0: का
1: को
0: हाँ
1: दिखाए।
0: इलाज
1: कुछ
0: है
1: लोग
0: हाँ
1: मैडम डर जाते हैं कि
0: डर जाते
1: दिखाएंगे
0: हैं
1: तो शायद
0: हाँ
1: समस्या
0: सबसे बड़ी हाँ, यही
1: बाहर
0: दिक्कत है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आजकल हमें कुछ ना कुछ निकल जाएगा,
1: निकल
0: तो इसे ना
1: जाए।
0: घबराएं, कुछ बड़ी समस्या होने से पहले कोई छोटे में ही निकल जाए तो बेटर होगा
1: जी,
0: जी
1: और श्रोता एक जानकारी आपको और दे दें कि इस रविवार 12:30 बजे से हम एक अपना जो पुराना कार्यक्रम जो बंद था, आपके पत्र आपके फोन, उस पर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आप इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे सुनते हैं तो उसमें भी आप हमें सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। बाकी आज आप जुड़े इसके लिए, और मैडम आप आई इसके लिए,
0: जी थैंक
1: धन्यवाद आपका,
0: यू
1: नमस्कार।
0: जी।

0: डॉक्टर। विषय था नाक कान एवं गला रोग संबंधी समस्याएं एवं समाधान। विशेषज्ञ थी डॉक्टर नीलम प्रजापति, सलाहकार ईएनटी विभाग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव।

पर कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल, आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का

0: की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल, आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं रवि जोशी।
2: बाके बिहारी की बाकी मरोर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा,
4: बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कलाकार रवि जोशी के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रज लोक गीतों का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत का। कलाकार हैं रवि जोशी।

0: रचना का शीर्षक है मन। मन तो मन है।
1: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है FM 102.2 MHz पर। आज के कलाकार थे रवि जोशी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता

0: की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संवेद स्वरों में देशगान, जिसे प्रसारित किया जाएगा अपराह्न 1:10 पर। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें होगी चर्चा, विषय होगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस एवं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। साथ ही आप सुनेंगे काव्य पाठ, कवित्री होंगी हेमलता उपाध्याय। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रेशमा अग्रवाल। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंदित सकेंगे फिल्म संगीत का। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00।

संध्या 5:30 पर युवा भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा राजीव गांधी पुण्यतिथि एवं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस विषय पर। संध्या 6:10 पर संवेद स्वरों में आप सुनेंगे देशगान। 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, कृषि क्षेत्र में GI का महत्व जानकारी देंगे सुधीर अग्रवाल और इनसे बातचीत करेंगे OP सिंह। संध्या 6:45 पर फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में देश हमारो क्रम के अंतर्गत तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की जानकारी देंगे वार्ताकार मुक्ता चतुर्वेदी। संध्या 7:05 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:00 श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइट्स आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 श्रोता साथी सुनेंगे रूपक, अष्ट सखाओं द्वारा गोवर्धन लीला वर्णन। लेखक होंगे रमेश चंद्र राजा चौबे, प्रस्तुति दिनेश गोस्वामी की। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ठुमरी दादरा गायन आप सुनेंगे। ठुमरी राग खमाज दादरा में भजन भी आप सुनेंगे।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देशगान, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं रेशमा अग्रवाल।

अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा ही होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों आप कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छी ही होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। चलो अच्छा ही है, तो आप देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, आज की चर्चा के साथ। मानव सभ्यता का इतिहास केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक उत्कर्ष, विकास और प्रगति की गौरव गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहनों यह संघर्षों, हिंसा, युद्धों और मानवीय त्रासदी का भी मौन साक्षी रहा है। समय के प्रभाव में मानव समाज ने साम्राज्यवादी विस्तार, वैचारिक टकरावों और सत्ता संघर्षों के अनेक रूप देखे हैं। पर आधुनिक युग में यदि कोई संकट सबसे अधिक जटिल, व्यापक और चिंताजनक रूप में उभरा है, तो वह है बहनों आतंकवाद। यह केवल हिंसा, विस्फोटों या रक्तपात का पर्याय नहीं है, बल्कि भय, असुरक्षा और अस्थिरता के माध्यम से मानवता, सामाजिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर सुनियोजित प्रहार करने वाली एक विनाशकारी प्रवृत्ति है। समकालीन विश्व में आतंकवाद की प्रकृति और स्वरूप दोनों में बहनों व्यापक परिवर्तन देखने को आए हैं। यह अब किसी एक देश, क्षेत्र, समुदाय अथवा विचारधारा तक सीमित समस्या नहीं रह गई है, बल्कि वैश्विक

और तकनीकी क्रांति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय और बहुआयामी स्वरूप प्रदान कर दिया है। आज आतंकवाद केवल सीमा पार हमलों या प्रत्यक्ष हिंसक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर हमलों, डिजिटल कट्टरपंथ, दुष्प्रचार और वैचारिक युद्ध के रूप में वैश्विक शांति और सुरक्षा के गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। भारत भी बहनों लंबे समय से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववादी गतिविधियों जैसी चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और विकास प्रक्रिया को प्रभावित किया। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवर्ष 21 मई को यानी आज के दिन ही भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। यह घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती भी थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने तथा समाज में शांति और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के प्रमुख उद्देश्य हैं कि आतंकवाद और हिंसा के प्रति समाज को जागरूक बनाना, युवाओं को कट्टरवाद और उग्रवादी विचारधाराओं से दूर रखना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा शांति के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना, आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। बहनों, यह दिन हमें उन निर्दोष नागरिकों की भी याद दिलाता है जिन्होंने आतंक की विभीषिका झेली है, और साथ ही उन वीर जवानों का भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज के दिन सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा से लड़ने तथा मानव जीवन व मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प शामिल होता है। आज के दिन हम न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं, बल्कि यह भी प्रण करते हैं कि चाहे दुश्मन जितना भी क्रूर हो, भारत अब चुप नहीं रहेगा। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन जब बात भारत माँ की रक्षा की हो तो शौर्य ही हमारा धर्म बन जाता है। जय हिंद, जय भारत। तो बहनों, अब इसी के साथ हम सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
0: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
0: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की व्यथा को समेट, नहीं तो अपनेपन से हारेगा, मर जाएगा स्वयं सर्प को अगर नहीं मारेगा। बहनों, अभी हमने चंद पंक्तियों में मन की बात की। अब आप सोच में पड़ गई होंगी कि आज हम मन की बात क्यों कर रहे हैं। बहनों, आज हम बात मन की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको जो काव्य पाठ सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मन। तो चलिए, आप देर न करते हुए लेते हैं आनंद काव्य पाठ का, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं हेमलता उपाध्याय।
3: रचना का शीर्षक है मन। मन तो मन है, मन का क्या है, मन की एक अद्भुत दुनिया है। मन तो मन है, मन का क्या है, मन की एक अद्भुत दुनिया है। मन के कारण वेवश हैं सब, मन की गति का क्या कहना अब। मन के कारण वेवश हैं सब, मन की गति का क्या कहना अब। मासूम है ये बच्चे जैसा, क्या खबर इसे है जग कैसा। मासूम है ये बच्चे जैसा, क्या खबर इसे है जग।

कैसा, कभी हट करता कुछ पाने की, एक चाह पे ही मिट जाने की। कभी हट करता कुछ पाने की, एक चाह पे ही मिट जाने की। ना जाने कुछ ना अपना है, यह जग एक झूठा सपना है। ना जाने कुछ ना अपना है, यह जग एक झूठा सपना है। बीती यादों की दुनिया में खोया रहता है ये हरदम। बीती यादों की दुनिया में खोया रहता है ये हरदम। कभी रो देता कभी मुस्काता, इसकी खुशियाँ ही इसके गम। कभी रो देता कभी मुस्काता, इसकी खुशियाँ ही इसके गम। आज़ाद परिंदे के जैसे खुद ही उड़ता फिर थम जाता। आज़ाद परिंदे के जैसे खुद ही उड़ता फिर थम जाता। मंजिल का पता न हो चाहे, नई उम्मीदें हो नई राहें। मंजिल का पता न हो चाहे, नई उम्मीदें हो नई राहें। तड़पे खुद ही संभले, नहीं कोई सुने इसकी आहें। तड़पे खुद ही संभले, नहीं कोई सुने इसकी आहें। छोटा सा है आशाएं बड़ी, संघर्ष करे ये घड़ी घड़ी। छोटा सा है आशाएं बड़ी, संघर्ष करे ये घड़ी घड़ी। मन तो मन है, मन का क्या है, मन की एक अद्भुत दुनिया है। मन तो मन है, मन का क्या है, मन की एक अद्भुत दुनिया है। यह मेरी दूसरी रचना है जिसका शीर्षक है नारी। नारी सृष्टि की परिभाषा, इससे ही जन्मी हर आशा। जल थल नभ और पवन अग्नि मिलकर सब बने, पंच तत्व से ही नारी का कोमल कठोर तन। जल थल नभ और पवन अग्नि मिलकर सब बने, पंच तत्वों से ही नारी का कोमल कठोर तन। झांसी की रानी हो चाहे हो वो मदर टेरेसा, नारी शक्ति का परिचय है कहता है इतिहास भी ऐसा। कभी कल्पना बनकर चमकी आसमान में, सीने में किया स्वराज सभी के। कभी कल्पना बनी चमकी आसमान में, सीने में किया स्वराज सभी के। दिल पर देश की छोटी सुषमा जी ने, नारी सृष्टि की परिभाषा, इससे ही जन्मी हर आशा। निर्मल जल गंगा सी पावन, सहन शक्ति सीता के जैसी। निर्मल जल गंगा सी पावन है, सहन शक्ति सीता के जैसी। इंदिरा गांधी सी कर्मठ, मीरा की भक्ति गीता जैसी। इंदिरा गांधी सी है कर्मठ, मीरा की भक्ति गीता जैसी। नारी के स्वरूप अनेक, जिसमें से राधा भी एक हैं। घर से लेकर राजनीति तक एक नारी से परचम लहराया। घर से लेकर राजनीति तक एक नारी ने परचम लहराया। भारत की पवित्र भूमि पर देवी का स्थान है पाया। भारत की पवित्र भूमि पर देवी का स्थान है पाया। वेदों शास्त्रों में भी देखा नारी की महिमा अपार है। अनसुईया सावित्री जैसी नारी ही ग्रंथों का सार है। वेदों शास्त्रों में भी देखा नारी की महिमा अपार है। अनसुईया सावित्री जैसी नारी ही ग्रंथों का सार है। स्त्रियों की वाणी भी कहती आदि नारी अनंत। यत्र पूज्यते नारी रमन्ते देवता तत्र, यत्र पूज्यते नारी नमन्ते देवता तत्र। और अंत में मेरी सबसे प्रिय रचना जिसका शीर्षक राधा के प्रियवर। राधा के प्रियवर हे मुरलीधर, सुन भी लो ये अरज हमारी। दोनों कर जोरे करती है विनती प्रभु ये दासी तुम्हारी। राधा के प्रियवर हे मुरलीधर, सुन भी लो ये अरज हमारी। दोनों कर जोरे करती है विनती प्रभु ये दासी तुम्हारी। धन्य हुई मैं भक्ति जो दी, पर काहे को मन में ये प्रीति जगाई। पहले तो प्रेम जगाया हृदय में, फिर काहे अखियां तरसाई। धन्य हुई मैं भक्ति जो दी, पर काहे को मन में ये प्रीति जगाई। पहले तो प्रेम जगाया हृदय में, फिर काहे अखियां तरसाई। याद करे मन भोला सा बचपन, जाने कहां दिया हमने बिताए।

याद करे मन भोला सा बचपन, जाने कहाँ दिया हमने बिताए, खोए रहे इस भवसागर में आधी उमरिया व्यर्थ गवाए, खोए रहे इस भवसागर में आधी उमरिया व्यर्थ गवाए, लगन लगी है प्रभु दर्शन की कोई जतन अब काम न आए, लगन लगी है प्रभु दर्शन।

0: लगन लगी है प्रभु दर्शन की, कोई जतन अब काम न आए, कोई भी कृपा कैसे भी करो प्रभु पीर विरह की सही न जाए, कोई भी कृपा कैसी भी करो प्रभु पीर विरह की सही न जाए, धर्म न जानूं कर्म न जानूं सुमिरन मन मेरा करता ही जाए, धर्म न जानूं कर्म न जानूं सुमिरन मन मेरा करता ही जाए, पाप और पुण्य का भेद भला मानव मन कैसे जान ये पाए, पाप और पुण्य का भेद भला मानव मन कैसे जान ये पाए, भूमि में अपनी ही जन्म दिया क्यों फिर दे दी क्यों ऐसी विदाई, भूमि में अपनी ही जन्म दिया क्यों फिर दे दी क्यों ऐसी विदाई, प्रभु आए बसो या तो हरिगढ़ में या निज धाम को ले बुलाई, धन दौलत मांगू ना प्रभु जी चरणन रज सर माथे लगाऊं, धन दौलत मांगू ना प्रभु जी चरणन रज सर माथे लगाऊं, तुम ही से नेह लगा मेरे मन को प्रेम से प्रभु जी तुमको बुलाऊं, तुम ही से नेह लगा मेरे मन को प्रेम से प्रभु जी तुमको बुलाऊं, एक नजर बस मोहे निहारो सौ जन्मों का फल मैं पाऊं, एक नजर बस मोहे निहारो सौ जन्मों का फल मैं पाऊं, नाम तुम्हारा जपती रहूं इन चरणन की रज में मिल जाऊं, नाम तुम्हारा जपती रहूं इन चरणन की रज में मिल जाऊं, आए बसो या तो हरिगढ़ में या निज धाम को ले बुलाई, राधे राधे।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ जिसका शीर्षक था मन और नारी। काव्य पाठ को प्रस्तुत कर रही थी हेमलता उपाध्याय। बहनों, आज के दिन ही हर साल 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है, जो सभी से संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने में अपना योगदान देने का आग्रह करता है। इस दिन को अक्सर विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शांति, विकास और स्थिरता के लिए इस खाई को पाटना आवश्यक है। सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों की हमारी समझ को गहरा करने पर बहनों हम चार लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और ये लक्ष्य किस कैसे हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है संस्कृति के शासन के लिए टिकाऊ प्रणालियों का समर्थन करें। दूसरा है सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं का संतुलित प्रवाह सुनिश्चित करें। अगला है संस्कृति को सतत विकास के ढांचे में एकीकृत करें। और अगला है मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा अन्य संस्कृतियों को अपनाना हमें अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करता है, और यह संतुष्टि बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से प्राप्त होती है। हम अन्य संस्कृतियों को कैसे अपनाते हैं? तो बहनों, इसकी शुरुआत उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करने से होती है जो हमसे अलग हैं, यानी भिन्न हैं। अपने मतभेदों को अपनाने का एक अन्य तरीका विभिन्न संस्कृतियों और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और आपसी समझ विकसित करना है। जब हम अन्य संस्कृतियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण भी शामिल है। कई लोग यह भी मानते हैं कि सांस्कृतिक अंतर को कम करने से गरीबी उन्मूलन में मदद मिल सकती है। बहनों, यूनेस्को सदस्य देशों और समाज के सदस्यों को इस दिवस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कार्यक्रम विश्व भर में आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में संगीत कार्यक्रम, शैक्षिक संगोष्ठी, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां शामिल हैं। बहनों, हम सभी इनमें कुछ तरीकों से भाग ले सकते हैं, जैसे किसी कला प्रदर्शनी या अन्य संस्कृतियों को समर्पित संग्रहालय का दौरा करें, किसी अन्य धर्म के बारे में जानें, एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म देखें, किसी दूसरी संस्कृति की संगीत

परंपरा को सुनें, किसी दूसरी संस्कृति से संबंधित खेल खेलें, किसी दूसरी संस्कृतियों के पारंपरिक उत्सवों के बारे में जानें, विविधता और समावेश के लिए काम करने वाले किसी संगठन के साथ स्वयं सेवक के रूप में जुड़ें और कोई दूसरी भाषा भी सीखें। और इस तरह से बहनों हम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़कर विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस को मनाने के उद्देश्य को सार्थक कर सकते हैं। और अब समय हो चला है आपके मनोरंजन का, तो भला फिर क्यों देर करें, लीजिए प्रस्तुत है यह प्यारा सा देशभक्ति गीत।

चलते चलते कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, तो वो हैं इस तरह। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ स्वीकार कीजिए नमस्कार, रेशमा अग्रवाल का नमस्कार।

बहनों, अब हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पर इसी कार्यक्रम में।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और मुर्तुजा की जुगलबंदी में फिल्म साथिया के इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत AR रहमान का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म साजन के इस गीत को। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: News. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan with its long
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों

0: का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
3: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
2: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
3: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ

0: दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये

0: अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत

अभी आपने सुना विशाल ददलानी और संजय लीला भंसाली को फिल्म बाजीराव मस्तानी के इस गीत के लिए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त

अभी आप आनंद ले रहे थे श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में फिल्म सिंघम के इस गीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म साजन की बाहों में के इस गीत को। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की जुगलबंदी में फिल्म साथी के इस गीत को। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित को। फिल्म साजन की सहेली के इस गीत के लिए गीत को लिखा मजरूह ने और संगीत उषा खन्ना का था। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फ़ोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फ़ोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव हमारे टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फ़ोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फ़ोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पिन कोड नंबर है 281003। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे आपसे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री एनएन दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की, ये वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो, तो वो सिचुएशंस वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था, और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी।
0: Okay.
1: एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया, और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस, और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े, और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में, और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
0: बिल्कुल
1: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और इतना
1: बड़ा जी
0: कि सब जान,
1: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
0: जी,
1: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला बीएसएफ के बटालियन

संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल

0: के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी।
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जे एन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन जो ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे।

0: या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी,
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया, ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा है,
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा,
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ।
1: okay.
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा।
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया,
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा
1: जी।
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011 2342 1084 और 2342 1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले, सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना रेडियस मीडिया

0: इन तीनों नर्व उड़ गई
1: अच्छा
0: और बोन्स पूरी शेटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
1: अच्छा,
0: मेरे साथ पिस्टल भी थी। तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
1: अच्छा,
0: रही बात पैर में जो गोली लगी तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
1: अच्छा।
0: कमेंडेशन
1: जी जी
0: मैं
1: जी,
0: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा
1: जो छाती
0: था।
1: पर लगता है।
0: जी जी जी उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
1: अच्छा,
0: और वो मेरे वाइटल पार्ट जो कार्डिक एरिया
1: जी
0: है
1: जी,
0: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत
1: अच्छा।
0: एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मुझे दिख रहा था
1: जी,
0: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
1: जी,
0: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है बह के बाहर आता
1: जी,
0: है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया।
1: जी, आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं। मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर में?
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था
1: जी,
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल बचाया।
0: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
1: अच्छा।
0: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है और फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
1: जी जी जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी नहीं हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई, और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
1: जी,
0: रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर वॉट? बोले कि You created the history and Ghazi Baba has been killed, main accused of Indian Parliament attack and whole country, whole nation and BSF is proud of you and BSF team. तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया। सही
0: तो नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी.
0: तो फाइनल

0: फतेह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो जाता है।
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ही वाज अ ड्रीम चेस फॉर एवरी फोर्सेस।
1: बिल्कुल,
0: ही वाज अ हॉट केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
0: मोर देन 9 इयर्स वैली में 1994 से 2001 तक।

0: दिसंबर
1: 2001
0: बिल्कुल,
1: तो उसने तो अटैक की पराकाष्ठा पे था इंतहा बिल्कुल कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
0: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
1: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
0: जी,
1: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतने बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
0: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
1: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल
1: देश का सब मस्तक ऊंचा हुआ
0: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है, क्योंकि ये
1: क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है
0: बिल्कुल,
1: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के
0: बिल्कुल
1: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
0: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
1: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
0: जी,
1: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे
0: जी।
1: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
0: डगमगाए जी,
1: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा
0: बिल्कुल।
1: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
0: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
1: बटालियन का हेड था
0: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
1: लीड कर रहा था मैं, चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
0: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
1: खुद के रहने से
0: जी
1: मोराल बड़ा अप होता है
0: बिल्कुल,
1: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
0: मौत के मुंह में घुस गया
1: और घुसे वो
0: बिल्कुल,
1: गाजीबाव के माथे में घुसना कोई सिंपल।
0: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
1: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
0: मिलता नहीं,
1: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
0: जाने
1: की खुद को कोसते
0: बिल्कुल,
1: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
0: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी
0: जी,
1: बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी,
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे, तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैच
1: बच्चन,
0: हाँ अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है,
0: रखी है वो आपकी यादगार।
1: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है
0: और
1: एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल।
1: है
0: सर एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते,
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं, या तो
1: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या

0: आप शहीद
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
0: दो ही कैटेगरी होती है, मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा। हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने
1: बिल्कुल
0: एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है। हाई सर, मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है
1: जी।
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच
1: सर। देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है।
2: देश मेरे, मेरी शान है तू।
1: और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: जी चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।
2: उसने भुलाया होगा हो के मजबूर।

तस्वीर हटाई होगी, है हर तरफ मुझको।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए। अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था।
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे, जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे, और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फर्वर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियां वो

0: सुनाते थे,
1: बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल,
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल,
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है
0: जी। सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी,
1: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी।
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
0: जी,
1: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी
1: सरकारी,
0: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा,
1: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा
1: मेरे दिल से लगा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
0: कोर एरिया है
1: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं
0: जी। सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक
0: जी। सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन

0: आदेश के लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी
1: बिल्कुल।
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
1: ओके।
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को ट्रेजेडी हुई थी देश में
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये, डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है, नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं
1: बिल्कुल,
0: प्रेमी हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए, आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चरण से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और अब सुनिए युवा साथियों
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित को भी आपने सुना। फिल्म थी साजन की सहेली, बोल मजरू के थे, धुन तैयार की थी उषा खन्ना ने।

शान को अभी अपना सुना फिल्म थी सांवरिया। गीत समीर का था, धुन तैयार की थी मोंटी ने।

साधना सर का मधुश्री के गाए साथिया फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक और पायलट थे जिन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक दो कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी माता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पदभार संभाला और 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र

के भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1989 के चुनाव में अपनी हार तक सेवा की और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और दिसंबर 1990 में अपनी हत्या से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। यह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू गांधी परिवार से थे, जिसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। उनके बचपन के अधिकांश समय में उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय, गांधी जी ने एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल, धोनी स्कूल, फिर यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। राजीव गांधी 1966 में भारत लौटे और सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइंस में पेशेवर पायलट बन गए। 1968 में इन्होंने सोनिया मैनो से विवाह किया और दंपत्ति अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ दिल्ली में बस गए। 1970 के दशक के अधिकांश समय में उनकी मां प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई संजय सांसद रहे। इसके बावजूद राजीव गांधी जी राजनीति से दूर रहे। 1980 में संजय की विमान दुर्घटना के मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने अपनी मां के आग्रह पर अनिच्छा से राजनीति में प्रवेश किया। अगले वर्ष उन्होंने अपने भाई की अमेठी संसदीय सीट से चुनाव जीता और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य बने। अपने राजनीतिक प्रशिक्षण के तहत राजीव को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया और 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनकी माता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। भारतीय सेना की एक कार्रवाई थी जो कि ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। उस दिन बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगले कुछ दिनों में उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई जब कुछ संगठित भीड़ ने दंगे किए, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में काफी नरसंहार हुआ। उसी दिसंबर में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बड़ा बहुमत हासिल किया और 541 में से 414 सीटें जीती। राजीव गांधी का कार्यकाल भोपाल त्रासदी, बोफोर्स कांड, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम जैसे विवादों से भी घिरा रहा। 1988 में इन्होंने मालदीव में तख्ता पलट दिया, जिससे PLOTE जैसे उग्रवादी तमिल समूह नाराज हो गए। उन्होंने हस्तक्षेप किया और फिर 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिसके परिणाम स्वरूप लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ELM LTT के साथ खुला संघर्ष शुरू हो गया, जिसके चलते उनकी पार्टी 1989 में चुनाव हार गई। राजीव गांधी 1991 के चुनावों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। चुनाव प्रचार के दौरान LTT के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। 1991 में भारत सरकार ने राजीव गांधी जी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। 2009 में आयोजित इंडिया लीडरशिप्स कॉन्क्लेव में राजीव गांधी जी को मरणोपरांत आधुनिक भारत के क्रांतिकारी नेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। निसंदेह कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। उनकी पुण्यतिथि पर

दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। ये दिन देश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने, शांति और एकता को मजबूत करने तथा उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। ये दिवस समाज को याद दिलाता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का ही नहीं बल्कि मानवता, विकास और सामाजिक सद्भाव का भी बड़ा खतरा है। इस दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हुई हत्या से जुड़ी है, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक गहरा आघात थी। और इसके बाद आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र चेतना विकसित हुई। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार ने 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस घोषित किया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और हिंसा के खिलाफ मजबूत संदेश दिया जा सके। यह दिन हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है कि समाज में शांति, सहिष्णुता और विश्वास को कैसे मजबूत किया जाए। आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन चुका है और सीमाओं से परे जो मानवता को प्रभावित करता है। भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें कई बार निर्दोष नागरिक और सुरक्षा बल प्रभावित हुए हैं। और इन घटनाओं में सामाजिक सौहार्द, आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस लड़ाई में समाज की भागीदारी की भी आवश्यकता है। आतंकवाद के पीछे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, वैचारिक कट्टरता और बेरोजगारी जैसे कई कारण होते हैं। जब समाज के कुछ वर्ग मुख्य धारा से अलग महसूस करते हैं तो वो चरमपंथियों के प्रभाव में आकर्षित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है, जिससे भय, अविश्वास और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक सुधार भी जरूरी है। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है, जिसमें खुफिया तंत्र, आधुनिक तकनीक, कठोर कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस किसी भी खतरे का मुकाबला करती हैं और भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ये साबित करती है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारा देश युवा वर्ग देश है और युवा ही देश का भविष्य है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। शिक्षा संस्थानों में शांति और एकता के मूल रूप से बढ़ना जरूरी है और ये दौर सोशल मीडिया का है, जिसमें कोई भी गलत सूचना से बचाव के लिए डिजिटल साक्षरता युवाओं को चरमपंथी विचारों से दूर रखने में मदद कर सकती है। इसीलिए उन्हें संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आतंकवाद वैश्विक नेटवर्क के जरिए फैलता है, इसलिए इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बेहद जरूरी है। भारत कई देशों और संगठनों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा करता है और वित्तीय नेटवर्क पर भी रोक लगाने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक ढांचे की मांग करता रहा है।

साथियों, आज राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी

राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस ये संदेश देता है कि शांति, सहिष्णुता, सामाजिक एकता किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब समाज में विश्वास और भाईचारा होता है तो चरमपंथी विचार कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत उपाय है। ये दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये दिन हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम हिंसा और नफरत को अस्वीकार और शांति, विकास तथा भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जिससे एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके।

सोनू निगम और राधा श्री राम के गाय बॉस द फॉरगेटन हीरो फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 102 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। जी बजने को कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर

0: प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओहो यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और आप प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम होगा। इनसाइट्स प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा रात 9:45 पर, और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय पर चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी कृषि क्षेत्र में जीआई जियोग्राफिकल इंटीमेशन का महत्व, इस विषय पर सुधीर अग्रवाल से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा आज संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा आज सायं 6:45 पर। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में देह समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी। तीर्थ स्थल निमिषारण्य के विषय में वार्ताकार होंगी मुक्ता चतुर्वेदी।

देशगान का समय रहेगा। संध्या 6:10 और रात 8:20 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 8 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर। चित पर संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15। आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रूपक अष्टशाखाओं द्वारा गोवर्धन लीला वर्णन। आलेख रमेश चंद राजा चौबे का होगा, प्रस्तुति दिनेश गोस्वामी की। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज श्रोता सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के गाय ठुमरी और दादरा। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

गोपाल रंजन सिन्हा की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना

0: के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैया, खेत की माटी बहुत ही जरूरी है हमारी खेती के काज, और माटी का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तभी हमारी खेती अच्छी होगी। तो खेती की माटी की जांच भी हमें समय समय पर करानी चाहिए, और बाकी जो आवश्यकता है वही के अनुरूप अपनी खेती को चुनाव करना चाहिए। अब बात आए मिट्टी की, जो हमारी उर्वरता है या कैसे हम बढ़ा सकें, तो भैया या के काज आवश्यक है कि हम जैविक खाद डालें, गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या हरी खाद मिलावें, या में मिट्टी में नमी बढ़े और सूक्ष्म जीव बढ़े, या की मात्रा 2-3 टन प्रति एकड़ हर साल है सके। फसल चक्र एक ऐसी प्रणाली है या के आधार पर अगर हम खेती करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी खेती अच्छी होगी और माटी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। एक ही खेत में एक बार एक अगर हमने कोई फसल उगाई है तो बदल के दूसरी बार, यानी दलहनी फसलन, मूंग, उड़द, चना जरूर या में लगाना चाहिए, जाकि जड़ बैक्टीरिया और नाइट्रोजन को हमारी खेत की मात्रा में बढ़ावे है और हमारी खेत की माटी के लिए उपयोगी हो। हरी खाद हमें अपने खेत में उगा सकें, रैचा, सनई या लोबिया 40-45 दिन जब ऊंची है जाए तो वह मट्टी में पलट के और वह जोत दें, तो जाते नाइट्रोजन की संख्या जो मात्रा है हमारी खेती में बढ़े। संग ही संग पुआल, पत्ता, घास से जो या हम खरपतवार जो हो, या तो हमारे सड़वे पर या कि जो खाद बने, या से हमारी खेत की माटी अच्छी हो। भैया, ज़्यादा गहरी जुताई थे हमारे जो मिट्टी के जो हमारी मित्र जीव हैं वे मर जा में, तो भैया जीरो टिलेज या कम जुताई ऐसी स्थिति हमें रखनी चाहिए जैसे हमारे मित्र जीव हैं इन्हें बने रहें, जाते हमारी मिट्टी की संरचना भी बनी रहे। मिट्टी की जांच करानी चाहिए और वही के अनुसार हमें अपने उर्वरक को चुनाव करना चाहिए। बायोफर्टिलाइजर, गौमूत्र, गुड़, बेसन से बनो जीवामृत, एजोटोबैक्टर कल्चर, ये सब हमारी खेती में बहुत ही उपयोगी है सके। और सबसे बड़ी बात, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करनी है, अपनी मिट्टी को अच्छा बनाना है। और भैयाओ, अगर हमारी माटी में केंचुआ दिखाई देवे शुरू है जाए तो समझो कि हमारी माटी का स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छो है रहो है। तो भैयाओ, ये तो बात रही माटी की उर्वरता बढ़ाए के संबंध में। आज हम आपको भेंटवार्ता क्रम में एक जानकारी दिवाई रहे हैं कृषि क्षेत्र में GI भौगोलिक संकेतक को महत्व, जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं OP।

0: किसान भाइयों, किसी भी फसल के लिए अच्छी किस्म हमें अगर मिल जाए, अच्छी तैयारी हो जाए, तो बहुत कुछ हमारा काम आसान हो जाता है। तो धान के लिए जो जीआई धान की हम बात करते हैं, वो क्या है और कैसे फायदा पहुंचाता है? सुधीर अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, वरिष्ठ किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। ये अपनी जानकारी और अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुधीर जी बताइए जीआई के इसके बारे में,
1: सब
0: धान के।
1: किसान भाइयों ने मेरी राम राम। आपको मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जीआई

0: क्या होता है। जीआई एक तरह का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो कि विदेशी संस्थाओं द्वारा सब मिलजुल के ग्रांट करते हैं कि कौन से एरिया में हमको जो है अमुक तरह का उत्पाद मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं, हमारे मथुरा के पेड़ा को जीआई मिला हुआ है, कहीं की साड़ी को जीआई मिला हुआ है। इसी तरह से विश्व के बाजार के खरीदारों के लिए हमारा जीआई मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के 30 जिले बासमती के
1: जी,
0: पंजाब पूरा हरियाणा, 8 जिले हिमाचल के, 2 जिले जम्मू कश्मीर के और हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड संपूर्ण। इतना एरिया में जो धान पैदा होगा बासमती, वो सब जीआई की कैटेगरी में आएगा। जैसे बासमती धान में आता है टाइप 3 370, एचवीसी 19, सियासा 30, रणवीर बासमती, ये तो हमारी पुरानी समय की बासमती की प्रजातियां हैं। उसके बाद जो है आता है PB1 पूसा बासमती 1, 1509, 1692, 1985, 1847, 1718, 1121, 1885, 1979, फिर उसके बाद जो है आता है 1460 और 1637 और उसके बाद आता है 1886 और उसके बाद आता है 1401, 1406। ये सब प्रजातियां हमारी बासमती की हैं और विश्व के बाजार में जो भी खरीदार है हमारा जीआई देखने के बाद वो धान खरीदता है। पर इसमें हमको सरकार को से भी आग्रह करना है, हमको जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी आग्रह करना है, हमको जो है एपीडा से भी आग्रह करना है कि हम इस एरिया के जहां बासमती धान पैदा करते हैं, जीआई क्षेत्र है, वहीं के धान को एक्सपोर्ट किया जाए। क्योंकि इसमें जो है कुछ गड़बड़ियां ये हो रही हैं, अब तक होती आई हैं कि 6-7 जिले तो राजस्थान के हैं और पूरा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और केरला है। वहां जो है बीज गुरुवर जो है ऑफ साइड में अपना जो है धान का बीज बासमती का गैर फसल में उगवा लिया और क्या कहते हैं अप्रैल के महीने में उसको यहां ले आए। उसके कारण क्या हुआ कि यहां फ्यूजी वायरस आ गया और उसमें गुणवत्ता नहीं होती, क्योंकि वहां जो है बासमती उगाने की किसानों को जागरूकता नहीं है, जानकारी का अभाव है। क्योंकि यहां तो हम सैकड़ों वर्षों से, ये जो जीआई का एरिया है वहां सैकड़ों वर्षों से बासमती उगाते आ रहे हैं, तो बासमती की तकनीक हम लोगों के सबके रग रग में है और उन्होंने कभी बासमती देखा नहीं। तो वो तो जैसे मोटा धान उगाते हैं जो उगाते हैं
1: उस क्षेत्र में होता
0: उस क्षेत्र में जैसा होता है, तो जैसे मोनोक्रोटोफॉस डालेंगे वो और क्या कहते हैं आपका क्लोरोपोरीफॉस डालेंगे, जो लाल रंग के निशान वाले पेस्टिसाइड हैं, GTD पाउडर आता है वहां उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है, कृषि में उपयोग नहीं होगा। पर पता नहीं वो लोग कहां से ले आते हैं GTD पाउडर, वो अनाप शनाप प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है भारत सरकार को चाहिए कि जो GI क्षेत्र का धान है उसको एक्सपोर्ट कराएं और इन एक्सपोर्टरों पर भी पाबंदी लगाएं कि गैर बासमती एरिया से बासमती को लाकर एक्सपोर्ट न करें। और GI क्षेत्र, क्योंकि पाकिस्तान देखिए छोटा सा 22 मुल्क का राज्य, हमारे हरियाणा के बराबर का राज्य, और वो जो है मेंटेन कर रहा है अपनी GI को, उसके कारण हमसे चौगुने दामों में उसका पाकिस्तान का बासमती बिक रहा है और उसके बाद तो पूरे विश्व को नहीं खिला सकता। तो हमारा तो इतना बड़ा एरिया है 5-6 राज्यों का कि हम तो कितना भी जितनी डिमांड आएगी विदेश से उतना बासमती पैदा करके और शुद्ध बासमती, बढ़िया वाली बासमती, सुगंधित बासमती पैदा करके वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
1: प्राकृतिक रूप से बासमती जिन एरिया में होता रहा, जब हिंदुस्तान एक था तो कुछ एरिया पाकिस्तान का भी उसमें था, तो उसमें यही है कि पंजाब है, हरियाणा है, आपका उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर से लेके पाकिस्तान का ये वाला एरिया, यहाँ GI रूप में बासमती होता रहा है एरिया में, तो उसको उस रूप में मान्यता मिले और उसका संगठन बना के यहाँ के प्रोडक्शन को ही बाहर भेजा जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं?
0: जी
1: जी जी। तो इसमें किसानों के संगठन की भी आवश्यकता है,
0: किसानों के संगठित

0: होने की बड़ी आवश्यकता है। और बीज वालों का भी संगठन होना चाहिए कि गैर जीआई क्षेत्र का धन उनको न मिले।
1: जी जी जी। और उससे फिर ये भी है कि जो शुद्ध चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं, आगे चल करके उसमें जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां भी हमारी प्योरिटी जब बाहर भेजेंगे तो उसमें किसान को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा।
0: हमारे वैज्ञानिक इतनी मेहनत से बासमती की वैरायटी बना रहे हैं, वो वैरायटी जब ही तो कारगर होंगी कि वो जीआई क्षेत्र में पैदा हों। जो हमारा जो है जीआई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, केवल इतने एरिया में बासमती पैदा होगा और वो परचेज होके जाएगा, क्योंकि देश के कहीं भी हिस्से में बासमती पैदा हो रही है उसको जो है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाए या लोकल मार्केट में खाने के लिए पैदा किया जाए,
1: एक्सपोर्ट के लिए इस वाले एरिया का होना चाहिए। तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग में, संगठित मार्केटिंग में होना चाहिए। तो इसमें अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इस बात को तो गवर्नमेंट भी मानेगी।
0: गवर्नमेंट तो मानने को तैयार है। कुछ जो है
1: बीच के
0: लाभ लोग जो हैं
1: जी, जी, जी।
0: वो जो है अपने निज स्वार्थ के लिए गैर बासमती एरिया की बासमती को हमारी बासमती में मिला देते हैं और उसका हम आजा हम किसानों को होता है। जब कहते हैं ओहो कंसाइनमेंट वहां का फेल हो गया, जब कंसाइनमेंट फेल हो गया तो हमारा मद्दी दर पे धान खरीद
1: जो, जो जो मतलब रिजर्व करते थे उनको भी नुकसान हो जाता,
0: उन्हें नुकसान हो जाता है। हमने तो मेहनत से क्या कहते हैं प्राकृतिक ढंग से बासमती धान पैदा किया और एक्सपोर्ट होगा, उसने से धान पैदा किया हम उत्तर प्रदेश के किसानों ने, और जब क्या कहते हैं वहां से दूसरी राज्यों का धान जो है गैर बासमती एरिया जीआई एरिया का धान आ जाता है उसको मिला के एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर देता है तो हम लोगों को कहता है कंसाइनमेंट फेल हो गया।
1: तो उसमें बात यही आती है कि वो चीज तो ठीक होती है लेकिन नुकसान उन एक्चुअल लोगों को हो जाता है जो बासमती का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा संगठित होने की आवश्यकता
0: जी,
1: है। जी जी जी सुधीर जी आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभय भैया जानकारी ले रहे कृषि क्षेत्र में जीआई भौगोलिक संकेतक को महत्व, जानकारी दे रहे प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे ओपी सिंह। अब भैया आपको सुनवा में है यह ब्रज।

0: ऐसी कृपा करो श्री राधे। घनश्याम शर्मा मधुप के स्वर में आप आनंद ले रहे या ब्रज लोक गीत को। और भैया आपको जानकारी देवा में है पशु के बाह्य परजीवी से है वाले रोग एवं उपचार के संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश गोयल।
1: पशु में पाए जाने वाले विभिन्न अंत परजीवी रोगों को हम उनके कारक परजीवियों के आधार पर विभाजित करते हैं। पशुओं के विभिन्न परजीवियों को उनके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोशीय एवं बहुकोशीय परजीवियों में विभाजित किया गया है। एक कोशीय परजीवी में परजीवी आते हैं, जबकि बहुकोशीय परजीवी में हेलमिंथ एवं आर्थ्रोपोड परजीवी आते हैं, जिनको कि आगे चलकर क्रमशः ट्रेमेटोड, सिस्टोड, निमेटोड आदि में विभाजित किया जाता है। जिनमें ट्रेमेटोड से होने वाले रोग में क्रमशः पर्णकर्मियों का शरीर चपटा होता है एवं शरीर में केवल एक खंड होता है। इनके अंडे सामान्यतः परपोषी के मल के साथ उत्सर्जित होते हैं तथा उपयुक्त नमी और गर्मी पाकर इनसे प्रथम लार्वा निकलता है। इनमें जीवनव्रत में मध्यवर्गी परपोषी किसी एवं एक जाति का घोगा होता है, हालांकि द्वितीय पर मध्यवर्ती वर्ती परपोषी अन्य घोगे या अनेक प्रकार के पृष्ठवंशी भी हो सकते हैं। विभिन्न ट्रेमेटोड रोगों को पशुओं के संक्रमित होने वाले अंगों के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये अंगों से विष चिपक जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही कई परजीवियों के लार्वा विभिन्न अंगों में घूमते रहते हैं और इस प्रकार उनको हानि पहुंचाते रहते हैं। चूँकि ट्रेमेटोड परजीवियों के जीवन व्रत में घोंगे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं इनसे होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि या तो इन घोंगों को खत्म किया जाए या फिर पशुओं को इनके संपर्क में आने से रोका जाए। इन परजीवी रोगों से बचाव के लिए उपाय अपना सकते हैं। पहला, संक्रमित पशुओं को पहचानकर उनके स्वस्थ पशुओं से अलग किया जाए एवं उनको उचित इलाज दिया जाए। पशुओं को घोंगों के लिए उपयुक्त आर्द्र चारागाह, तालाब या मंद गति से बहने वाले नालों के किनारों पर चलने से रोकना चाहिए। जल निकास की अच्छी व्यवस्था

होनी चाहिए तथा गोगो को आवाज़ देने वाली वनस्पति को काट देना चाहिए। संक्रमित चारागाहों से सूखी घास नहीं बनानी चाहिए। गोगो को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना आवश्यक है। इनके अतिरिक्त सिस्टोड परजीवी उभयलिंगी अंत परजीवी कृमि होते हैं। उनका शरीर चपटा लंबाकार तथा कायगुहा या पोषण कालवीन होता है। ये परजीवी अधिकांशतः पशुओं को भोजन नल में पाए जाते हैं तथा इनके अंडे गोबर के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इन अंडों में एक गोल या अंडाकार भ्रूण होता है। यह अंडा मध्यवर्ती परपोषी में जाकर विभिन्न जातियों के परजीवियों के अनुसार मेटासिस्टोड अवस्था बनाता है। यह मेटासिस्टोड अवस्थाएं पशुओं के लिए संक्रमित होती हैं तथा कई बार जब पशु इन परजीवियों के लिए मध्यवर्ती

सकती है तथा कई बार जब पशु इन परजीवियों के लिए मध्यवर्ती परपोषी की तरह रहते हैं तब ये मेटासिस्टोइड अवस्था ही उनके लिए हानिकारक होती है। ये सिस्टोइड परजीवी वयस्क अवस्था में अधिक हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु इनकी लार्वा अवस्थाएं पशुओं में विभिन्न बीमारियां करवाती हैं। वयस्क अवस्था में एक पशु के साथ भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे कि पशु को दिया जाने वाला भोजन पूर्णतः उसके विकास में काम नहीं आता एवं उसका उत्पादन घट जाता है और पशुपालक को पशु से पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पशुओं में इन परजीवी से होने वाली विभिन्न रोग हैं गिड, सिस्टिस, सर्कोसिस आदि। सिस्टोइड परजीवियों से होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए उपाय अपनाना आवश्यक है। पशुओं को जहाँ संभव हो खुले में चरने से रोकना चाहिए तथा उन्हें स्वस्थ चारा एवं जल देना चाहिए। बाड़े में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो मध्यवर्ती परपोषियों का अनुबुलन कर दिया जाए। गोगों को नष्ट करने के लिए आर्थोपेड मध्यवर्ती पशुओं को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। साफ सफाई, मांस परीक्षण तथा जन चेतना के द्वारा इन रोगों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है। पशुओं के टिमेटोड परजीवी पाए जाते हैं, जिनमें टिमेटोड परजीवी अखंडित कृमि होते हैं, जिनकी आकृति प्राय बेलनाकार एवं दीर्घ मूर्त होती है। ये कृमि जानवरों के विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं एवं वहाँ रहकर ये पशु को हानि पहुँचाते हैं। इनका जीवन व्रत प्रत्यक्ष होता है या फिर उसमें किसी मध्यवर्ती परपोषी की आवश्यकता हो सकती है। ये परजीवी पालतू पशुओं की सभी जातियों में पाए जाते हैं तथा इनको पाए जाने वाले अंगों के आधार पर विभाजित किया जाता है। पशु की भोजन का नाल में पाए जाने वाले विभिन्न नेमेटोड परजीवी यहाँ रहकर पशुओं का रक्त चूसते हैं या उनके साथ भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। ये परजीवी पशु के जीवन के लिए खतरा ना होकर उससे होने वाले उत्पादन को कम कर देते हैं और लंबे समय तक इलाज न मिलने की अवस्था में पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालक के लिए बेकार हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पशुओं के अन्य अंगों में पाए जाने वाले टिमेटोड परजीवी, इनमें निमोनिया, अंधापन, अंगों में गांठ बनना, अंगों का नष्ट होना आदि अवस्था उत्पन्न करवाते हैं एवं इस प्रकार जानवरों के उत्पादन को कम करते हैं या भारी संक्रमण की अवस्था में उनकी मृत्यु भी संभव है। इसके नियंत्रण हेतु विभिन्न जानकारियों का होना आवश्यक है। रोगी पशु को सामान्यतः पशुओं से दूर कर देना चाहिए एवं उचित इलाज करना चाहिए। जीवन व्रत में मध्यवर्गीय परपोषी उपलब्ध है तो उसे नष्ट करना चाहिए या पशु को उसके संपर्क में आने से रोकना चाहिए। भोजन नाल को परजीवियों के लिए चारे एवं चारागाह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं कोशिश करनी चाहिए कि पशु इन परजीवियों की संक्रामक अवस्थाओं के संपर्क में ना आए। पशुओं की समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा इन परजीवी रोगों के लिए जांच की जानी चाहिए। पशुओं की समय समय पर एंथेलमेटिक दवाओं द्वारा विशेषज्ञ की सलाह पर डीवर्मिंग भी किया जाना अति आवश्यक है। पशुओं में आर्थोपेड परजीवी से होने वाले रोग विभिन्न हैं। ये परजीवी सामान्यतः पशु के शरीर पर बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं तथा पशुओं का रक्त एवं अन्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन परजीवों का महत्व उनका विभिन्न रोगाणुओं के मध्यवर्ती परपोषी के रूप में होता है। जब ये परजीवी पशु का रक्त चूसते हैं उस समय उनमें उपस्थित रोगाणु पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके साथ ही कई आर्थ्रोपोड जैसा कि किलनी, जू, पिस्सू आदि अगर ज़्यादा संख्या में पशु पर पाए जाएं, तो उसमें रक्ताल भी करवा सकते हैं। कुछ मक्खियों के लार्वा पशु के शरीर पर घाव को सड़ा भी सकते हैं जिससे पशु की मृत्यु हो जाना आवश्यक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के नाइट परजीवी पशुओं की त्वचा पर संक्रमण करवाते हैं जिससे कि शीघ्र खुजली होती है एवं पशु की खाल खराब हो जाती है जिससे पशुपालक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। विभिन्न आर्थ्रोपोड परजीव के नियंत्रण के लिए कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं जिससे कि इन कीटों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही इन कीटों के लिए ये छिपने की जगह इनके आवास एवं उनके प्रजनन स्थलों को नष्ट कर देना चाहिए या इन स्थानों पर कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। खाली मैदानों को जोतना अथवा जला देना चाहिए एवं आर्द स्थलों पर एवं नस्तियों को नष्ट कर देना चाहिए।
नई जगह से पशु को

0: आयात करने से पहले उनकी जांच इन बाह्य परजीवियों के लिए कर लेनी चाहिए एवं संक्रमित चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। उपयुक्त बातों को अमल में लाकर हम इन परजीवियों पर रोक लगा सकते हैं, साथ ही इसमें फैलने वाले अन्य रोगों को भी कम कर सकते हैं। पशुओं के प्रोटोजुआ परजीवी रोग भी पाए जाते हैं। प्रोटोजुआ पशुओं के शरीर में भोजन नाल, त्वचा, मांसपेशी अथवा रक्त में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजुआ पशुओं की कोशिकाओं के अंदर या बाहर मिल सकते हैं। प्रोटोजुआ एक कोशिका जीव होने के कारण आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं एवं शीघ्र सूक्ष्मदर्शी की मदद से भी देखे जा सकते हैं। इन प्रोटोजुआ परजीवियों से होने वाले विभिन्न रोग जैसे थैलेसीरियोसिस, अमीबियोसिस आदि हैं। किसी भी प्रोटोजुआ रोग के नियंत्रण करने से पहले उसके कारक परजीवी के जीवन वृत्त एवं पशु के शरीर में पाए जाने के स्थान के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर परजीव का जीवन वृत्त परोक्ष है तथा उसके मध्यवर्ती परपोषी का नियंत्रण कर हम उस प्रोटोजुआ संक्रमक पर रोक लगा सकते हैं, जैसा कि विभिन्न रक्त प्रोटोजुआ के जीवन में किलनी अथवा मक्खियों की विशेष महत्ता है। अतः इनके संक्रमण को हम इन मध्यवर्ती परपोषियों को कीटनाशकों के प्रयोग से नष्ट करके रोक सकते हैं। इस प्रकार पशुओं की आंतों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रोटोजुआ परजीवी जैसे कि ऑक्सीडीसी का जीवन वृत्त प्रत्यक्ष होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती परपोषी की आवश्यकता नहीं होती है। इन परपोषी परजीवियों का नियंत्रण सफाई व्यवस्था में सुधार कर आधारित होता है तथा इसके लिए पशुओं को भीड़भाड़ से में नहीं रखना चाहिए। बाड़ों को नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। इनको स्वच्छ आहार देना चाहिए तथा सबके अलावा विभिन्न प्रोटोजुआ संक्रमण का नियंत्रण हम विभिन्न रासायनिक दवा द्वारा भी कर सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीडीसिया के लिए एम्प्रोलियम एवं सल्फा दवाएं आदि, ट्रिपनोसोसिस के लिए क्यूनेपायरमिन, सुरामिन आदि। पशुओं में किलनियों की रोकथाम के लिए जैविक वैक्सीन बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इसी प्रकार थिलेरिया रोग के लिए रोकने के लिए भी रक्षा वैक्टी वैक्सीन भी बहुत उपयोगी पाई गई है।
1: अब भैया जानकारी ले रहे पशु के बाह्य परजीवी से है बारे रोग और उनके उपचार के संबंध में जानकारी दे रहे डॉक्टर राकेश गोयल। यही के संग भैया आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है गए समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीपक गोस्वामी ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

रचन साजन मिश्रा और कविता कृष्णमूर्ति को भी आपने सुना। फिल्म थी सुरसंगम, शब्द रचना बसंत देव की थी, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नौशाद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म थी गुड्डू। इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में श्रोताओं को दबाव में है जानकारी। तीर्थ स्थल नैमिषारण्य के विषय में वार्ताकार हैं मुक्ता चतुर्वेदी।
1: भारतवर्षस्य तीर्थो उत्तम तीर्थ नैमिषारण्य नमस्तुते निस्तिथ्यसली नित्य लीले नित्य धाम नमस्तुते धन्याचा नैमिषारण्य तीर्थ ज्ञान दे मुक्तिदायक। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। यहाँ की पवित्र भूमि पे सर्वत्र देवी देवतन की लीलन को संबंध है। भारत की धरा पे जन्म लेवे वारे मानव धन्य है जो भगवत परायणता दैवीय स्थलन के गुण ग्राहक सदाचार आस्तिकता और सात्विकता ते संपन्न है। कलयुगे यदि वांछित सदगति कुलस्य गति परमार्थतः वसतु नैमिषारण्य प्रति मानव भजतु पदाम्बुज। भारतवर्ष में सनातन धर्म मानवे बारे मानवन के लिए तीर्थाटन प्रभु आश्रित है मोक्ष प्राप्त करवे की सीढ़ी है। भक्त और भगवान को मिलन है। कहो गयो है कि अन्यंत्र हितकम पापम तीर्थ मासाद्य नश्यति तीर्थे गुणत पापम ब्रज लेपो भविष्यति। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण में तीर्थ यात्रन को बड़ो ही महत्वपूर्ण वर्णन है। नैमिषारण्य तीर्थ सनातन धर्म के प्रमुख 10 तीर्थन में से एक है। यह तीर्थ भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता सांस्कृतिकता को तीर्थ स्थान तथा बीतराग सत्य महात्मन की तपश्चर्या की पावन भूमि है। जहाँ की पवित्र रज के कण कण में

भक्ति वैराग्य शक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित होवे, याई पुण्य भूमि की पवित्र रजते प्रेरणा पाए के यहाँ 28,000 ऋषियन को व्यास से सूत जी ने महाभारत और पुराणन की कथन को अमृत पान करायो। या तीर्थ को नीमसारण कहें। नीमसारण पवित्र तीर्थ लखनऊ शहर व हरदोई के पास गोमती नदी के किनारे भगवान विष्णु के चक्र द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह सीतापुर जिले में स्थित है। पुराणन में वर्णित या तीर्थ की प्रसिद्धि सर्वप्रथम मानव जन्म की उत्पत्ति हेतु महात्मा मनु व शत्रुपा ने याई पूर्ण धरा पे 33,000 वर्षन तक कठोर तप कियो और याई पवित्र धरा पे भयानक राक्षस वृतासुर को वध ऋषि दधीची ने अपनी हड्डिन को ब्रज बनाएवे हेतु देवतन को दान कर दीनी और 12 पुराण के अनुसार यहाँ निमिष मात्र में ही भगवान ने राक्षसन को संहार कियो। याई लिए यह स्थान नेमिसारण पवित्र तीर्थ कहलायो। या पावन मोक्षदायक तीर्थ स्थान के बारे में कहो जाए कि राक्षसन के अत्याचारन ते त्रस्त देवन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ो। 4 दिशाओं में डोलतो भयो विष्णु चक्र याई धरा पे बढ़ते थे के पाताल में प्रवेश कर गयो और पाताल ते एक प्रबल जलधारा की सृष्टि भई और यह स्थान जलमग्न है गयो। घबराए भय देवंत के द्वारा प्रार्थना करवे पे श्री ललता जी ने वह जलधारा के बेग को रोको और वह चक्र को वहीं स्थापित कर दियो। चक्र की नेमी याई अरण्य में गिरी जाते यह तीर्थ चक्र तीर्थ या नेमी सारण तीर्थ कहलायो। या कलयुग के प्रभाव ते मुक्त या दिव्य धरा पे महाभारत के युद्ध के बाद भगवान ने युधिष्ठर को दर्शन दे कृपा लाभ करायो। याई तीर्थ भूमि पे वेद व्यास जी ने 4 वेद 10 शास्त्र और 18 पुराणन की रचना कीनी। भगवान सत्यनारायण की कथा नेमिसारण तीर्थ स्थान ते ही शुरू भई। कहो जाए के लवकुश ने याई स्थान पे रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ को घोड़ा पकड़ो। याई तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि ऋषिगण सब तीर्थन में उत्तम तीर्थ खोजते भए कैलाश धाम व विष्णु धाम पार करके याई निमिष वन में पधारे और यहीं उत्तम तीर्थ बतायो, क्योंकि 4 चीज धर्म अर्थ काम मोक्ष मानव के हाथ व विष्णु भगवान के पास चक्र शंख गदा पद्म हैं, जो मानव के संकट दूर कर प्रभु की प्राप्ति करामे। बलराम जी ने याई तीर्थ पे यज्ञ करके दर्शन प्राप्त कियो। नेमिसारण स्थित चक्र कुंड गोलाकार है। याई लिए या गोलाई अनादि काल में या में श्रद्धालु स्नान करके अष्टकोण यज्ञ कुंड में लाभ प्राप्त करें। या सनातन संस्कृति को उद्भव स्थल तीर्थवर नेमिस विख्याता अति पुनीत साधक प्रदाता। या तीर्थ स्थल पे श्रद्धालु अनेकन मंदिरन को दर्शन कर पुण्य के भागी बने। यहाँ पे ललता मंदिर ऋषि दधीची मंदिर व्यास गद्दी हनुमानगढ़ी देव देवेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर रुद्रावर तीर्थ पंचप्रयाग अक्षयवट आदि दर्शनीय मंदिर हैं। या भूमि पे कहो है कि प्रथम नेमी पुण्यम चक्र तीर्थ च पुष्करम अन्येषां च तीर्थानां ख्या नास्ति महितते। या तीर्थ यात्रा के लिए वाहन सुविधा हर समय उपलब्ध रहें। दोपहर बंद रह के यहाँ के देवालय सुबह और शाम नियमित समय पे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहें। या नेमिसारण तीर्थ पे होटल और धर्मशाला खान पान की समुचित व्यवस्था यात्रियों को मिले। या क्षेत्र में प्रतिवर्ष

0: फागुन अमावस्या ते पूर्णिमा तक मेला लगे। श्रद्धालु 84 कोस व 1 कोस की शक्ति अनुसार परिक्रमा लगाए के पूर्ण के भागी बने। सच्चे मन ते तीर्थ यात्रण से ईश्वर दर्शन कर श्रद्धालु ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है वे पे आत्मोद्धार के संग संग ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करवे को सौभाग्य पावे या नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक भाव में परिवर्तित है जाए। मानव को सुख और शांति तीर्थ स्थलन पे प्राप्त होवे। तीर्थ स्थानन पे दर्शन कर मानव स्नान दान जप आदि करके लोक और परलोक दोनों सुधारे। नए नए वातावरण ते मानसिक शांति आध्यात्मिकता सांस्कृतिक और नए नए वातावरण ते मानसिक शांति मिले और ज्ञान की वृद्धि होवे। ईश्वर में ही समस्त सृष्टि समाई है। या लिए तीर्थ यात्रण की परिक्रमा सृष्टि परिक्रमा को सौभाग्य श्रद्धालु पाए लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होवे जाते आत्म ज्योति परम ज्योति में विलीन है जाए। या कलकाल के भवसागर में अनेकन कष्टन ते ग्रस्त मानव को इन तीर्थ यात्रण ते अनेक विध फल प्राप्ति जैसे पाप निवृत्ति सुख संचय देव कृपा प्राप्ति ते मोक्ष पुण्य सरोवरन के जल में पान स्नान दान जप आदि करवे ते ईश्वर की अप्रत्याशित कृपा प्राप्ति होवे। चारित्रिक विकास सामाजिक समन्वय राष्ट्रीय एकता अलग अलग संस्कृति भाषा परिधान आदि को ज्ञान आदि अवर्णनीय लाभ प्राप्त हो में। अतएव साधारण भाषा में भक्त बिना भगवान नाय और भगवान बिना भक्त नाय और इन दोनों के बिना तीर्थ नाय। नैमी सारण तीर्थ तुम चदर्शन चक्रे उद्भव तीर्थ हरे नारायण सही तव महिमा देवस्य गीयते मुहुर मुहुर तत्र काहि मनः शक्ति इस्तवने मानुषस्य च तव तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। नैमिषारण्य महातीर्थम परम निर्वाण कारकम सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब काम बंदी वेद पुराण गण कहहि विमल गुण ग्राम याते को कहे सकहि नैमिषारण्य तीर्थस्य प्रवाहु कलुष पुंज कुंजर मृग राहु। ऐसे तीर्थन को बारंबार प्रणाम।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे जानकारी मुक्ता चतुर्वेदी पे थे तीर्थ स्थल नैमिषारण्य के विषय में। यज्ञ संघ आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए हैं।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनते हैं। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी और कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपके हमारे इस केंद्र से कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं, अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड 281003। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: वर्ग आयोग के अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च

0: शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
1: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते हुए उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के हैं, भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
2: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
3: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं, जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
0: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल

0: इनका संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को ले रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना। फिल्म थी पारस मणि, गीत असद भोपाली का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णमानंद, सत्यमानंद, बुढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, ग्राम शिरटे जिला सांगली से हनुमत शिंदे, संगीता शिंदे, टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, सीटी छाबड़ा, मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और कुमार टीकेश साहू, ग्राम थरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या अन्नू गोस्वामी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांत

तेज रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, पिपिरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, धनत्री की भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि, नोकेलाल वर्मा, काशी निवास नागपुर से प्रकाश रामभाड़े, भारती जाह्नवी वैष्णवी और हर्षल रामभाड़े,

0: दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। छत्रपति जी संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर। मलकापुरा से नारायण इंकले, राजकुमार, आशीष, सोपान ताईवड़े। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजयन विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश वैद्य, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी, अंकिता। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती कैवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर। बलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन। सोंगा ममरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। मोथला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ठोकर फिल्म का गीत। गीत साजन देहलवी का है, धुन तैयार की है श्याम जी घनश्याम जी ने।
1: खुद गर्द है।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म थी ठोकर, धुन तैयार की थी श्याम जी घनश्याम जी ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए प्रेस रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जी उस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराहा मथुरा, नेत्रपाल सिंह नगला विजयी राया, भजनलाल कुमार राया महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र संचौलिया जिला जालौन से, पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, सदुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद कला रेवाड़, गांव चौलदा पाकपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया, मजटू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर, सतना एमपी से उमंग माही मलिक, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर प्रमोद प्रदीप एमेकर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव अनसुईया जाधव पवन राजे जाधव, छत्रपति जी संभाजी नगर से मंगेश इंग्लेस संध्या इंग्लेस स्वराज विराज, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े कमड़ा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े, बघेरा दुर्ग से सतोष संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, अजमेर शरीफ से सैयद आलम बेगम गुलनास, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार संचौलिया अर्थर दर्श सार्थक अलौकिक चंदौलिया, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा, काटा रोड महाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेश सुषमा परिधि मायरा सुरेश, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्ट नीलम भट्ट नितिन पलक गीतू निहारिका हार्दिक वंश भट्ट समस्त भट्टा परिवार, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति।

विपिन देव कुमार और कुमार जायसवाल, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी दिल्ली, पम्मी प्रिया हर्षिता और निशांत ध्रुव, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता नेहरू चौक पैठा से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता ओम यादव, सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता यादव, तालुका निवासा कुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास, हरिभाऊ बिडवे, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जलादुर छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, प्रमला बंछोर, डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता और रानी मुकेश कुसुम, लखनऊ ऐशबाग से आपका संदेश, जेल रोड छाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, प्रकाश निषाद बल्लू और तरुण यादव हैं। और ये अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में नीला आकाश फिल्म का गीत। गीत राजा मेहती अली खां का है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

नीला आकाश फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत दिया मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहता मौला चौखंटी बुलंदशहर से बहुत मोहम्मद सईद अब्बासी, रिजवान, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और जान अबान और समस्त अब्बासी परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रमेश, सर्वा देशमुख, कुमारी पड़ाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कनगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रमलिका, विश्ववर्धन, विघ्नेश। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। आडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। बरबड़ बकाल बुलठाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या, जय हागे। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर, समस्त रामेकर परिवार। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत, इनके साथी सुरेश चौरसिया। कल्याण मुंबई से किशोर हेबराले, सुजाता, प्रतीक हेबराले। गढ़वे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे, कल्पनाताई, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता और रियांश लोखंडे। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम और इनके सभी परिवारिकजन। शाहनगर यवतमाल से राहुल, मनमर, सरला, विशाल, रोशनी तथा बेबी प्रियांशी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानचंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डगू भविका सिक्का। 7:15 पे ये संदेश कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर। ग्राम

आंदूर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा विशाल वानखेड़े, मोताला महाराष्ट्र से राज गवई राजवीर गवई, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, आरनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल, पद्मटा के नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बासवानी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी ने। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

जयदेव के संगीत निर्देशन में जानेसार अख्तर की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी प्रेम पर्वत।

लता मंगेशकर के गाए कालीचरण फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

रिफत सरोश की शब्द रचना भी आपने सुनी तरलोक कपूर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला देशकांड।

0: जी कपिल कुमार की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं द ग्रेट कैम्बला फिल्म के कुछ गीत। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है RD बर्मन ने।
1: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, और ये अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में द ग्रेट कैमला फिल्म का अगला गीत।

एक ही फिल्म से करकम में इस समय श्रोता सुन रहे हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए द ग्रेट केपलर फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा

0: बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है।

0: अनि के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना। फिल्म थी काली टोपी लाल रुमाल, गीत मजरू का था, धुन तैयार की थी चित्रगुप्त ने। और आइए अब सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में साहिर की शब्द रचना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है अमानत।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म थी अमानत, बोल साहिर के थे, धुन तैयार की थी रफ़ी ने।

मधु के बोल अभी आपने सुने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म थी मेला, धुन तैयार की थी आर डी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही आज का सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था बांडा में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल ये स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत सारे कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें तो टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, ये हम कलर कोड वार्निंग के देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है,

0: हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लेखे लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है। तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है। किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से, दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
0: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें, तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
1: ठीक, हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निकल टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
0: अगर शहरों की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
1: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
0: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
1: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
0: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें, तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें, तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
1: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए,

0: डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे येस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा सा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है, तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुटपा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट

0: करते रहते हैं, हम जो जो परिस्थिति है, जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, अगले 7 दिन तक हम बताए हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: reassuring, because what happens is that if there is inflation goes up, then Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee will be encouraged to come in and will look at interest rates and see in what way it can be tweaked. So one has to wait and watch to see what kind of final action the Reserve Bank of India will take. But there's no doubt the Reserve Bank of India will be closely engaged with what is really happening on the price front.
1: Yeah, we will know what the Reserve Bank of India decides, you know, when it convenes its MPC next month in June. But on that note, Mr. Ekki Bhattacharya, thank you so much for joining us on Akashwani's Insights program.
0: Thank you very much for having me.
1: That was a discussion on the UN report on India's strong economic growth, key highlights. Listeners, you can listen to this program again on our YouTube channel, News on AIR Official, and on our mobile app, News on AIR.
2: Insights.
3: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Shakti Singh. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
5: सॉफ्टवेयर कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत लीजिए सुनिए रूपक अष्ट सखाओं द्वारा गोवर्धन लीला वर्णन। वाचक स्वर है श्री कृष्ण शरद का और इसके प्रस्तुत करता है दिनेश प्रकाश गोस्वामी।
6: ब्रजभूमि को भगवान श्री हरि ने गोलोक से भूतल पर अवतरित होने हेतु सृष्टि के आदिकाल में भेजा था। इसी के साथ गोलोक की परम पुनीता कृष्ण प्रिया यमुना और श्री गिर गोवर्धन को भी ब्रजमंडल जाने की आज्ञा दी। शास्त्रों के अनुसार एक बार गोलोक में गोलोकनाथ और महाशक्ति श्री राधा ने महाराज का विचार किया। विचार के साथ ही श्री कृष्ण के हृदय प्रांत से सौम्य तेज निकलने लगा और देखते ही देखते वह पर्वत का आकार धारण करने लगा। यही गोवर्धन भारत के पश्चिम में स्थित शालमली द्वीप में द्रोणांचल पर्वत के यहाँ उत्पन्न हुआ। वहां से पुलस्त ऋषि द्वारा भारतवर्ष में लाते समय पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ब्रजमंडल में स्थित हो गया।
7: आज यह गिर पर्वत मथुरा नगर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन गोपालपुर गाँव जो वर्तमान में जतिपुरा नाम से जाना जाता है में मुखारबिंद के ऊपर श्रीनाथ प्रभु का मंदिर है, जिसमें अष्ट सखा कीर्तन गान की सेवा करते थे, जिनमें चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, छीत स्वामी, नंददास, कुंभनदास और गोविंद स्वामी संगीत वेत्ता एवं भक्त कवि थे।
6: इन अष्ट सखाओं में एक सखा चतुर्भुजदास भी थे। कहा जाता है एक बार गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी गोपालपुर में श्री गोवर्धन धरण की सेवा करने को प्रातःकाल अपनी बैठक से पधारे, तब चतुर्भुजदास को आज्ञा दी कि
7: तू अप्सरा कुंड के ऊपर जाइयो और रामदास भीतरिया से कहियो कि तुमको श्री गोसाई जी बुलाए रहे हैं और फूल मिले तो लेते आइयो।
6: चतुर्भुजदास ने रामदास भीतरिया से श्री गोसाई जी के बुलाने की बात कही। उसी समय रामदास श्री गिरिराज ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर को चले गए और चतुर्भुजदास फूल बीनते बीनते श्री गिरिराज की कंदरा में भूल से चले गए।
7: चतुर्भुजदास ने श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री स्वामिनी जी सहित भीतर कंदरा में विराजे देखे। चतुर्भुजदास ने दर्शन करके दंडवत की। गोवर्धन नाथ जी ने पूछा, तुम प्रातःकाल कहाँ से आए हो? कृपानाथ, मोकू श्री गोसाई जी ने फूल लेवे को भेजो है, सो मैं यह कंदना में भूलते आए गयो हूँ।
6: श्री गोवर्धन नाथ जी चतुर्भुजदास की
2: इस बात को

0: सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, तू कछु मान ले। चतुर्भुज दास ने विनती की, कृपानाथ आपकी आज्ञा होए तो मैं नित्य लीला कीर्तन गायन करूं। तब गोवर्धन नाथ जी ने मुस्कराते हुए आज्ञा दी कि लीला गायन करते हुए जगत को आनंदित करो।
1: फिर श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी अपने ब्रज भक्तों सहित कंदरा से बाहर आए और पर्वत के ऊपर मंदिर में पधारे। उस समय की शोभा का वर्णन चतुर्भुज दास जी ने इस प्रकार किया है।
2: गोवर्धन गिर सघन कंदरा रैन निवास की ओ पिय प्यारी, उठ चल भोर सुरत रंग भीने, नंद नंदन वृषभान दुलारी।
1: चतुर्भुज दास फूल लेकर श्री जी के मंदिर पहुँचे और श्री गोसाई जी को विधि पूर्वक समाचार सुनाया। श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तू धन्य है जो तेरे ऊपर श्री नाथ जी की कृपा है।
0: श्री गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक सुदी परिवार को की जाती है। उस दिन राजभोग के बाद प्रभु श्री गिरिराज महाराज की पूजा और अर्चना की जाती है।
1: तब अष्ट सखा के कवि कुम्मन दास का ये पद गाया जाता है।
0: गोवर्धन पूजन चलेरी गोपाल, मत गयंद देख जिय लज्जित, निरख मंद गति चाल, ब्रज नारिन पकवान बहुत कर, भर भर लीने थाल, अंग सुगंध पहर पट भूषण, गावत गीत रसाल, बाजे अनेक बैंड रवसों मिले, चलत विविध सुरताल, ध्वजा पताका छत्र चमर धर, करत कुलाहल ग्वाल, बालक वृंद चहु दिस सोहत, मानो कमल अलिमाल, कुंभन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन, गोवर्धन धर लाल, गोवर्धन पूजन चलेरी गोपाल।
2: गिरिराज पर्वत गोबर का बनाया जाता है, उसमें श्री गिरिराज जी का अभिषेक और पूजन होता है। उस समय चतुर्भुज दास जी का ये पद गाया जाता है।

0: राष्ट्र सखाओं ने गोवर्धन पूजा का अपनी पदावलियों में अनूठे रूप में वर्णन किया है। इस संदर्भ में परमानंद दास जी का ये पद अत्यंत प्रचलित है।
1: गोधन पूजे, गोधन गावे, गोधन के सेवक संतत हम, गोधन को ही माथ नवावे। गोधन मात पिता गुरु गोधन, गोधन देव जाहि नित ध्यावे। गोधन कामधेन कल्पतरु, गोधन पे माने सोई पावे। गोधन खिरक खोर गिर गहवर, रखवारो घर बन जहाँ छावे। परमानंद भामतो गोधन, गोधन को हम पुण्य भावे। गोधन पूजे, गोधन गावे।
0: श्री गोवर्धन प्रभु के अन्नकूट अरोगने का वर्णन अष्टशाप के कवि कृष्णदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस पद में किया है।
1: अरोगत आपुन पर्वत रूप, वे देखे जो मांग लेते हैं, चौदह भुवन को भूप। बड़ भागी हैं नंद जसोदा, जिन पायो हर सूत। लाल देख आतुर धाई ले ओधन पायस पूत। मिट्यो भाग जान्यो जब सुरपत, बाढ़ो है अति कोप। कृष्णदास गिरवर कर धार्यो, इंद्र महोच्छव लोप। अरोगत आपुन पर्वत रूप।
2: अन्नकूट के दर्शन के समय कीर्तनकार महाकवि सूरदास का ये पद गाते हैं।

0: अष्ट सखा के भक्त कवि चित स्वामी चौबे ने इंद्र मान भंग का पद सुंदर शैली में वर्णित किया है।
1: सब गोकुल को जीवन गोपाल लाल प्यारो, सुंदर मुख निरखत ही नयन चैन पावत अति, गोपी ग्वाल आँखें को तारो, रूप की निधि काम की सिद्धि जानत सब, प्रेम की विधि धेनु सेन साज के ग्रह आवत समारो, छीत स्वामी गिरवरधर अपने कर कोमल नख, राख लियो गोवर्धन गोवर्धन।

भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अल्पायु में एक उंगली पर 7 दिन तक गिरिराज पर्वत उठाकर इंद्र की प्रलयंकारी वर्षा से ब्रज की रक्षा की थी। इस लीला से संबंधित नंददास जी का ये पद कीर्तनकार गाते हैं।

ठाकुर जी के अन्नकूट दर्शन और इंद्रमान भंग की रचनाओं के उपरांत श्री गोवर्धन प्रभु की थाली में विशेष दो आरती मंदिर के आचार्य करते हैं। उस समय आशीष का गोविंद दास रचित यह पद गाया जाता है।

0: पुष्टमार्ग में कीर्तन प्रणाली को सर्वोपरि महत्व दिया गया है, जिस प्रकार से मर्यादा मार्ग में वैदिक मंत्रोच्चार से परमात्मा की स्तुति और पूजा पद्धति का विधान है,
1: ठीक उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में कीर्तनों से पूर्ण लीला पुरुषोत्तम के विग्रहात्मक स्वरूप की प्रातःकाल जगाने से लेकर शयन पर्यंत की अष्टयाम सेवा नित पदों और वर्षोत्सव के कीर्तनादि से की जाती है।
0: श्रीमद् वल्लभाचार्य और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने निज भक्त कवियों को कीर्तन सेवा प्रदान की थी। ये ही आठ कीर्तनकार अष्टछाप के कवि हुए, जिन्होंने प्रभु की साक्षात लीला का अनुभव किया, वर्णन किया और प्रभु कृपा से कीर्तनों के गायन के रूप में उसे साकार किया।
1: इसी प्रकार पुष्टि मार्ग में आए अष्टछाप से इतर भक्त कवियों ने भी नित्य कीर्तनों द्वारा प्रभु की गोवर्धन आदि लीलाओं का सुंदर गुणगान किया है।

0: अभी आपने सुना सॉफ्टवेयर कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत रूपक अष्ट सखाओं द्वारा गोवर्धन लीला वर्णन। गायक स्वर थे रमेश चंद्र राजा चौबे और कृपानाथ चतुर्वेदी के। वादक कलाकार थे पखावश पर परमानंद शर्मा, इसरास पर गजाधर पाठक, क्लर्नेट पर मदनलाल वर्मा, बांसुरी पर मोहन श्याम पचौरी, हारमोनियम पर राधेश्याम शर्मा और वायलिन पर थे बच्चामल चांदवानी। वाचक श्री कृष्ण शरद, प्रस्तुति दिनेश प्रकाश गोस्वामी की थी।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के गाई ठुमरी और दातरा। ठुमरी राग खमास में निबद्ध है और दातरा के अंतर्गत भजन। सबसे पहले सुनते हैं ठुमरी राग खमास में।

उप शास्त्रीय संगीत में भी श्रोता उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर

के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।